सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ। भूल का फल। रात में वर्षा हुई थी, सवेरे रोज से अधिक चमकीली धूप निकली। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, भरपेट पिया, फिर घास सूंघ कर फुदक गया। गीली नम भूमि पर उसे कूदने में बड़ा मजा आया और वो चौकड़ियां भरने लगा। पहले माता के समीप उछलता रहा और फिर जब कानों में वायु भर गई तो दूर की सूझी। माँ ने कहा, बेटा दूर मत जा, कहीं जंगल में भटक जाएगा। वो थोड़ी दूर निकल गया था। उसने वहीं से कह दिया, मैं थोड़ी देर में खेल कूद कर लौट आऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। माता मना करती रही, लेकिन वो तो दूर जा चुका था। उसे अपनी समझ पर बहुत अभिमान था और माता के मना करने पर उसे झुंझलाहट भी आई थी। वो कूदने में मस्त था, चौकड़ी लगाने में उसे रास्ते का पता ही नहीं रहा। उसने जंगल को देखा और ये सोचकर कि थोड़ी दूर तक आज जंगल भी देख लूं, आगे बढ़ता गया। सचमुच वो जंगल में भटक गया और इसका पता उसे तब लगा जब वो कूदते उछलते थक गया। जब उसने लौटना चाहा तो उसे रास्ते का पता ही नहीं था। वो कटीली घनी झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढने के लिए भटकता ही रहा। अरे तू तो बहुत अच्छा आया, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। पास की झाड़ी से एक बड़ा सा भेड़िया ये कहता हुआ निकल पड़ा। बकरी के बच्चे को ना तो उत्तर देने का अवकाश मिला और ना रोने का। उसे केवल मन में यही बात याद आती रही, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहूं सुभाए, लहे उ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए।
1: जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ, भूल का फल। अब से ठीक बाद आप सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि, मंडल एक, सूक्त 123। और अक्षय निधि के ठीक बाद सुनिए भक्ति संगीत। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। सरदार सिंह रेवा भाई राणा की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। सुनो कहानी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर। अग्नि समाधि मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपको सुनवाएंगे। स्वर होगा कार्यक्रम में रानी राय अखबार का। कला कल्लोलिनी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 9 बजे, उस्ताद अली अकबर खां पर आधारित। कार्यक्रम में स्वर होगा स्वाति गिरी और दीपक नेमा का। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम हमारा विशेष कार्यक्रम कछुआ दिवस पर।

सुबह 10 बजे का समय होगा आज परिक्रमा का। हिंदुस्तान हमारा ये कार्यक्रम सुनी सुबह 10:30 पर। रास बिहारी बोस की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। शब्दों के शिल्पकार ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। आज का कार्यक्रम आधारित होगा सुमित्रा नंदन पंत पर। युग प्रवर्तक विवेकानंद ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न समसामयिक कार्यक्रमों का।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 123 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं उषा और छंद है त्रिष्टुप।
2: प्रथु रथो दक्षिणाया अयोज्यैनम देवासो अमृतासो अस्थुहु कृष्णा दुदस्था दरिया विहायाश्चिकित्संति मानुषाय क्षयाय। इन कुशल देवी उषा का विस्तृत रथ जुत करके तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर विराजमान हो गए हैं। ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उषा मानवों के सुखदायी निवास के निमित्त प्रयत्नशील होकर भयंकर काले अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाशमान हुई हैं। पूर्वा विश्वास्माद् भुवना दबोधि जयंती वाजम बृहती सनुत्री उच्चा व्यक्ष्यद्युवति पुनर्भूरोषा अगन प्रथमा पूर्वहूतौ। संपूर्ण प्राणियों से पहले देवी उषा जागती हैं। यह प्रचुर दानदात्री देवी उषा ऐश्वर्यों की जनयित्री हैं। यह बार बार आने वाली चिर युवा देवी उषा सर्वप्रथम यज्ञ करने के निमित्त प्रथम स्थान पर विराजमान होती हैं और ऊंचे स्थान से सबको देखती हैं। यदद्य भागम विभजासी नृभ्य उषो देवी मर्त्यत्रा सुजाते देवो नो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय। हे कुलीन देवी उषा, मनुष्यों की पालन कर्त्री, आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का योग्य भाग प्रदान करती हैं, उस समय दान के प्रति प्रेरित करने वाले देव सूर्य के अभिमुख हमें पाप रहित बनाए। गृहं गृहमहना यात यच्छा दिवे दिवे अधिनामा दधाना सिशा संति द्योतना शश्वदागा दग्र मग्र मिद भजते वसूनाम। हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उषा प्रतिदिन आगमन करती हैं। कीर्ति को धारण करने वाली देवी उषा प्रतिदिन घर घर जाती हैं तथा धनों के श्रेष्ठ अंश को ग्रहण करती हैं। भगस्य स्वसा वरुणस्य जामि रुषः सुनृते प्रथमा जरस्व पश्वा स दघ्या यो अघस्य धाता जयेम तम दक्षिणया रथेन। हे सुभाषिणी उषे, आप भगदेव और वरुण देव की बहिन हैं। ऐसी आप देवों में सर्वप्रथम स्तुति करने योग्य हैं। बाद में जो पापात्मा शत्रु हैं उन्हें हम पकड़ें और आपके द्वारा दक्षता पूर्वक प्रेरित रथ से पराभूत करें। उदीरताम सुनृता उत्पुरंधी रुदग्नयः शुशुचानासो अस्थुः स्पार्हा वसूनी तमसाप गूढ़ाविष्कृणवन तुषसो विभाति ही। हमारे मुख स्तोत्र गान करें, प्रखर विवेक बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, प्रज्वलित अग्नि ज्वलनशील रहे, तब उनके निमित्त तेजस्वी उषाएं तमसाच्छादित वांछित धनों को प्रकट करें। अपान्य देत्यभ्य न्यदेति विशुरूपे अहनीसम चरेते परीक्षितोस्तमो अन्या गुहा करद्यौदुषाः शोषु चतारथेन। विपरीत रूप रंग वाली रात्रि और देवी उषा क्रमशः आती और जाती हैं। एक के चले जाने पर दूसरी आती हैं। इन भ्रमणशीलों में से एक रात्रि अंधकार से सबको आच्छादित कर देती है और दूसरी देवी उषा दीप्तिमान तेज रूप रथ से सबको प्रकाशित करती हैं। सदृशी रद्य सदृशी ऋदु श्वो दीर्घम सचन्ते वरुणस्य धाम अनवद्यास्त्रिंशतम योजनान्ये कैका क्रतुम परियन्ति सद्यः। आज ही के समान कल भी ये उषाएं यथावत आएंगी। ये पवित्र उषाएं वरुण देव के व्यापक स्थान में देर तक रहती हैं। एक एक देवी उषा 30-30 योजनों की परिक्रमा करती हुई नियत समय पर कर्म प्रेरक सूर्य देव से आगे आगे चलती हैं। जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णा दजनिष्ट श्वितीचि ऋतस्य योषा न मिनाति धामा हर हर निष्कृत माचरन्ति। दिन के प्रारंभिक काल को जानने वाली गौरवर्णा तेजस्विनी देवी उषा काली रात्रि के काले अंधकार से उत्पन्न होती हैं। ये स्त्री रूपी देवी उषा सत्यव्रत को न त्यागती हुई प्रतिदिन निश्चित समय पर आती और नियम पूर्वक रहती हैं। कन्येव तन्वा शाशदानाम एषी देवी देवमिय क्षमाणम संस्मयमाना युवती पुरस्तादाविर वक्षांसि कृणुषे विभाति। हे देवी उषे शरीर के स्वरूप को प्रकट करने वाली कन्या के समान ही आप भी अभीष्ट कामना पूरक पति रूप सूर्य देव के पास जाती हैं। पश्चात नव युवती के समान मुस्कराती हुई कांतिमती होकर अपने प्रकाश किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकट रूप से प्रकाशित करती हैं। सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा विस्तन्वम कृणुषे दृशे कम भद्रा त्वमुषो वितरम व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशंत। माता द्वारा सुशोभित की गई नव युवती के समान रूपवती ये देवी उषा अपने प्रकाश किरणों रूपी शारीरिक अंगों को मानो दिखाने के लिए प्रकट हो रही हों। हे उषे, आप मनुष्यों का कल्याण करती हुई व्यापक क्षेत्र में प्रकाशित रहें। अन्य उषाएं आपकी तेजस्विता की समानता नहीं कर सकेंगी। अश्ववतीर गोमतीर विश्ववारा यतमाना रश्मिभिः सूर्यस्य परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उषासः। अश्वों और गौओं से युक्त सबके द्वारा आदर योग्य सूर्य देव की किरणों से अंधकार को दूर भगाने में प्रयत्नशील तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वाली उषाएं दूर जाती सी दिखती हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाती हैं। ऋतस्य रश्मि मनु यच्छमाना भद्रम भद्रम ऋतुमस्मासु धेहि उषो नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्युहु। हे देवी उषे, सूर्य देव की रश्मियों के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अंतरंग में कल्याणकारी कर्मों की प्रेरणा प्रदान करें। आप आवाहित किए जाने पर हमारे अभिमुख प्रकाशमान रहें। हमें और ऐश्वर्यवानों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 123 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलम त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: 100 पतवारों वाला जहाज। कल्पना कीजिए 100 चप्पुओं वाला एक विशाल जहाज जो हजारों साल पहले एक भयंकर समुद्री तूफान से लड़ रहा है। एक प्राचीन ऋग्वेद में दर्ज राजा तुग्र के पुत्र राजकुमार भुज्जू की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक साहसी नौसैनिक अभियान का नेतृत्व करते समय भुज्जू का विशाल जहाज एक भीषण चक्रवात की चपेट में आ गया और बीच समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब लहरें उन्हें निगलने ही वाली थीं, तब जुड़वा देवताओं अश्विनों ने अपनी नाव के साथ उतरकर उनका चमत्कारिक बचाव किया। यह पौराणिक कथा सिद्ध करती है कि वैदिक काल का भारत न केवल समुद्र में उतरता था बल्कि वे दोष रहित मजबूत और विशाल जहाजों का निर्माण भी करते थे जो पूर्वी और पश्चिमी महासागरों को पार करने में सक्षम थे। उत्तर जीविता की यह हजारों साल पुरानी महाकथा भारत के समुद्री गौरव के उदय का प्रतीक है।
0: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: प्रेम जिस मन को छू लेता है फिर समय स्थान और दूरियों की सीमा उस पर बेअसर हो जाती है। ऐसे ही कुछ मन हुए जो महकते रहे अपनी मिट्टी की खुशबू से, जो जुड़े रहे अपने देश अपने वतन से। जिस धरती पर जन्म ले जीवन की पहली सांस उन्होंने ली, वो देश उनकी सांसों में ता उम्र बसा रहा। तमाम दुनियावी कामयाबी के बीच भी अपना वतन उनके भीतर धड़कता रहा। उसकी समृद्धि, उसका विकास, उसकी आजादी उनके जीवन का लक्ष्य था। ऐसे कई देशप्रेमी हुए जो रहे तो विदेशी धरती पर, लेकिन उनकी चिंता और चिंतन अपने देश को लेकर ही रहा। गुजरात के काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव कंथारिया, यहां 10 अप्रैल सन 1870 को एक ऐसी ही विभूति ने जन्म लिया जिसने 7 समंदर पार रहकर भी अपने देशप्रेम और त्याग की अनूठी मिसाल पेश की। नाम था सरदार सिंह राणा। रावा भाई और कुलजी बा की संतान सरदार सिंह राणा शुरू में तो धूली के स्कूल में पढ़े। उनके पिताजी केवल 4th पास थे, किंतु बहनों के आग्रह पर सरदार सिंह राणा को आगे पढ़ने का रास्ता मिल गया। धूली स्कूल के बाद वे अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में अध्ययन के लिए पहुंचे। यहां उनके सहपाठी थे मोहनदास गांधी। 1891 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के लिए अनुमोदित हुए। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से हुई। उनसे वे इतने प्रभावित हुए कि होम रूल आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। पूना में 1895 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। पूना में अपना अध्ययन समाप्त कर वे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन में उनकी मुलाकात सुविख्यात क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के साथ हुई। देशभक्तों की ये त्रिपुटी पूरे लंदन में अपनी गतिविधियों के लिए बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गई। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सन 1900 में दादा भाई नौरोजी के साथ भी हुई। वीरचंद गांधी, जो कि स्वामी विवेकानंद के साथ शिकागो की धर्मसभा में भाग लेने अमेरिका गए थे, उनसे हुई मुलाकात ने सरदार सिंह राणा के मन में उथल पुथल मचा दी। वे पुरानी परंपरा तोड़कर परिवर्तन की नई भूमि तैयार करने में जुट गए। परिवर्तन की ये भूमि उनके लिए केवल विचार, जीवन, रहन सहन आदि के लिए ही नहीं थी, बल्कि वे तीव्रता से महसूस करने लगे थे कि भारत में बहुत जल्द राजनीतिक सत्ता बदलनी चाहिए और देश स्वाधीन होना चाहिए।

सरदार सिंह राणा लंदन में बार एट लॉ की परीक्षा दे चुके थे, पर उसका परिणाम आने में अभी 3-4 महीने का समय और था। काम के बगैर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये 4 महीने कैसे काटे जाएं और उसका खर्च किस तरह से निकाला जाए, वे यही सोच रहे थे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था, उसने कुछ और ही सोच रखा था। इन्हीं दिनों पेरिस में एक विश्व व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें खंबात के एक झवेरी जीवनचंद उत्तम चंद ने अपनी दुकान लगाई थी। व्यापारी को अपनी दुकान के लिए एक ऐसे दुभाषिये की जरूरत थी जो फ्रेंच और अंग्रेजी में लोगों से बात कर सके। सरदार सिंह ने सोचा कि समय काटने के लिए ये अच्छा अवसर है और आर्थिक लाभ भी हो जाएगा, इसलिए वो पेरिस चले गए। उनके व्यवहार, उनके भाषा कौशल और ईमानदारी से सेठ जीवनचंद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी दुकान का पूरा काम सरदार सिंह को सौंप दिया। वे स्वयं बंबई रवाना हो गए। सेठ के साथ रहते हुए सरदार सिंह राणा जवाहरात की पहचान करने और उसकी बिक्री के कौशल में पारंगत हो गए। उनकी कुशलता और व्यापार में रुचि देखकर जीवनचंद ने उन्हें वकालत का धंधा छोड़कर जवाहरात का व्यापार करने की सलाह दी। शुरू शुरू में सरदार सिंह राणा एक कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते रहे और बाद में सफलतापूर्वक उन्होंने अपना स्वतंत्र व्यापार स्थापित कर लिया। पेरिस में ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस व्यापार से उन्होंने प्रभूत धन कमाया। इससे वे विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों की मदद करने लगे। सरदार सिंह का बचपन गरीबी में बीता था, इसलिए आर्थिक समृद्धि की चाह भी उन्हें थी। दूसरे हीरे जवाहरात के व्यापार में बहुत स्वतंत्रता थी। पेरिस में उनका निवास भारतीय नेताओं के लिए संपर्क स्थल बन गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से पेरिस आए, तो सरदार सिंह ने उन्हें अपनी ओर से 5 लाख रुपए और पेरिस में रहने वाले भारतीयों की ओर से 27 लाख रुपए एकत्रित करके दिए। ये था उनका शिक्षा और भारत के प्रति प्रेम। भारत के प्रतिभाशाली युवकों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्होंने स्कॉलरशिप देना भी आरंभ किया। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर इसी शिक्षा वृत्ति के तहत इंग्लैंड पढ़ने आए थे, जहां उन्होंने अपने शोधपूर्ण अध्ययन में महत्वपूर्ण पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर की रचना की, जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। इसकी कुछ प्रतियों को सरदार सिंह राणा ने गुपचुप तरीके से पौंडीचेरी के रास्ते भारत भेजने की व्यवस्था की, जो बाद में देश भर में पहुंची। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सरदार सिंह राणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैडम भीकाजी कामा के साथ उन्होंने 18 अगस्त सन 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया।

सरदार सिंह राणा अपने 50 वर्षों के विदेश प्रवास में फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में पारंगत हो गए थे। इसका प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ा। हर देश के ग्राहक उनसे प्रसन्न होकर जाते थे। अपनी व्यापारिक कुशलता से उन्होंने पेरिस में रहने वाले तमाम भारतीय व्यापारियों और भारतीयों को एक सूत्र में बांध लिया था। और जो लोग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से अलिप्त थे, उन्हें भी सरदार सिंह ने इस धारा से जोड़ा। वे एक कुशल वक्ता भी थे और लेखन में भी उनकी रुचि थी। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैपी इंडिया का उन्होंने फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के अखबार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वे फ्रेंच भाषा में एक लेखमाला लिखा करते थे, जिसका शीर्षक था भारत में अंग्रेज। पेरिस से निकलने वाले भिकाजी कामा के वंदे मातरम और बर्लिन से निकलने वाले तलवार पत्रों में वे नियमित लेखन करते थे, जो बाद में गुप्त रूप से भारत पहुंचाए जाते थे। सरदार सिंह ने फ्रेंच भाषा में अपनी डायरी भी लिखी थी, जिसमें 1901 से 1947 तक की नियमित गतिविधियों का वर्णन है। ये डायरी आज उनके परिवार के पास सुरक्षित है, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के अनेक अनछुए पहलुओं का वर्णन है। विश्व युद्ध के समय सन 1911 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें निष्कासित कर मार्टिनिक्यू भेज दिया। पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर रोक लगाकर उसे सीमित कर दिया गया। सन 1914 में अपने पुत्र और सन 1931 में अपनी जर्मन पत्नी की मृत्यु के बाद वे बेहद दुखी और निराश हो गए। विश्व युद्ध की गतिविधियों के कारण पेरिस में भी भारतीय स्वाधीनता के प्रेमियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। अंततः सन 1947 में भारत के स्वाधीन होने के बाद वे अपना व्यापार समेटकर सन 1955 में भारत लौट आए। यहां बीमार होने और पक्षाघात के कारण 25 मई सन 1957 को वेरावल के सर्किट हाउस में उनका निधन हो गया। जिस मिट्टी में उन्होंने पहली सांस ली, जिसकी स्वाधीनता के लिए वो हजारों मील दूर रहकर भी आजीवन अनथक प्रयास करते रहे, उसी स्वाधीन देश में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मन में परम संतोष और आंखों में देश के सुंदर भविष्य के असंख्य बिंब लिए वो हमसे विदा हुए।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह से आज हम ढूंढ कर लाए हैं कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का ये दुर्भाग्य ही था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे नशे का चस्का लग गया, जिसका फल ये हुआ कि मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में अब उसे आनंद नहीं आ रहा था। किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही होती थी। एक जटाधारी महात्मा विराज जाते थे और भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे और तिल तिल चरस के दम लग रहे थे। बीच बीच में भजन भी हो जाते थे। मजूरी धूतरी में वो स्वर्ग सुख कहाँ था। चिलम भरना अब पयाग का काम हो गया था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलम पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति छाई रहती थी। वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए किसी दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर जब उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल दिखता। जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है तो वो गुस्से से भर जाता। वो जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने उसको वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त में था। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना और लकड़ियां चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू तो वो ऐसे पोंछता था कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम नहीं थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो कमतर लोगों पर रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। इसलिए जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंता का कारण बनता जा रहा था। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती थी। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता था और कभी पुर हाँकता था। जो काम सामने आ जाता जुट जाता था मेहनत से। हंसमुख था, श्रमशील था, विनोदी था, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए वो कभी ना करता ही नहीं था। किसी ने कुछ कहा तो अच्छा भैया कह के दौड़ जाता था। इसलिए गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट नहीं हुआ था, जब महतो को ये रिद्धि न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थी। तो पयाग किस गिनती में था? हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह नहीं था। परंतु अब ये समस्या दिन बर दिन बढ़ रही थी। उस पर ये विपत्ति थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उतनी पतिपरायण, उतनी सेवाशील और उतनी तत्पर नहीं थी। उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास हो गया था। पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन करे और साधु सेवा में लगा रहे। एक दिन की बात है, रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे, दम लगाकर आता हूँ। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने के लिए? ऐसी चाट बची है तुम्हें, तो काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों आजकल कोई बाबा नहीं मिल रहा क्या? जाकर चिलम भरो, और क्या काम है तुम्हें? पयाग ने भी त्योरी चढ़ा ली, भला चाहती है तो पैसे दे दे।

तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया। पयाग उस दिन घर से निकल गया। रात के 9 बज गए थे। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा। समझता होगा कि मनाने आएगी। मैं क्यों जाऊं? मेरी बला से। जब दूसरे दिन भी पयाग नहीं आया तो अब रुक्मिन को चिंता हो गई। गांव भर छानाई उसे। चिड़िया किसी अड्डे पर नहीं मिली। लेकिन उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक उसकी आंख नहीं लगी। शंका हो रही थी कि सचमुच पयाग विरक्त तो नहीं हो गया। फिर उसने सोचा, प्रातः काल जाकर पत्ता पत्ता छान डालूंगी, होगा किसी साधु संत के साथ, और नहीं मिला तो थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही हुआ था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा सा घूंघट और शर्मीली चाल। रुक्मिन का कलेजा तो धक से हो गया। वो एक क्षण हतप्रभ होकर खड़ी होकर देखती रह गई। तब बढ़कर उसने अपनी नई सौतन को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, कहां से लाए हो जी इसे? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी बस। क्या करते हो, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है, पयाग ने तिरछी चेतावनी देकर कहा। तुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल को लाया हूँ। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है, रुक्मिन ने कहा। पयाग ने जवाब दिया, चल मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी। ला कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ देख तो, 4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पयाग में चाहे कोई गुण हो या ना हो, ये तो मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 महीने तक तो किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, लकड़ियां तोड़ती, चारा काटती, उपले पाथती और बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो वो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वो सौत को कोई काम नहीं करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या हुआ, है तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। पूरे गांव में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था। पर सत्संगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और वो अपनी नीति की सफलता पर खूब प्रसन्न था। एक दिन नई बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे ना जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो ना। रुक्मिन ने स्नेह से कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाओगी, भीतर का काम किए जाना, बाहर के लिए मैं हूँ। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़कियों की दशा अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे और कोई पूछता नहीं। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती तो घर की मालकिन थी। अब सिलिया भी मजूरी करेगी, मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी नहीं थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की किवाड़ लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, तो किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वो इस काम को कर सकती है। वो यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर की रात ही चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज भी सिलिया
अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस तो रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है तू? सिलिया ने मिनी डर होके कह दिया, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घूमर घूमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने हो गए, बहुत हो गया। रुक्मिन ने प्यार से कहा, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। सिलिया ने बोला, तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं, किसके गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली। पैसे क्यों नहीं देंगे? बिगाड़ करती हूँ क्या? तू नहीं मानेगी लगता है। सिलिया ने भी कह दिया, मैं बैठकर नहीं खाऊंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ गया और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने देना, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने, बहुत है। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी, रुक्मिन ने बोला। और सिलिया बीच में बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहारी, रोटी पानी, पीसना कूटना कौन नहीं करता? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में खट पड़ गई है, मुझसे अब सारा काम नहीं होता। पयाग ने कहा, हाँ तो तू बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, क्या कहेगा संसार? संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐप करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई, खूबसूरत औरत थी और यौवन भी भरपूर। गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए नहीं उठ रहा था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली थी। ये गट्ठा 12 आने में बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ खरीद लिया और 4 आने भी बच गए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से बाजार नहीं जाने दूंगी, इससे फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर ये सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों बाद उसे स्वादिष्ट वस्तु मिली थी, बहुत प्रसन्न हुआ। पयाग भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। तो पयाग ने कहा, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे तो होंगे, देना मुझे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया रे। रुक्मिन तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी, मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही अच्छा लगता है। पैसे खाने पीने के लिए होते हैं कि गाड़ने के लिए? सिलिया ने भी हंसकर जवाब दिया। पयाग ने भी आज्ञा दे दी, अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में अब संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने जाती, जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह। वहां से लौटकर भी वो बिगार नहीं बैठती थी, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती। पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया कि वो किसी तरह हिलाए नहीं हिल रही थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना और तेज धूप, उसने सोचा नहाकर बाजार जाएगी। घास द्वार पर रखकर वो तालाब चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया।
सिलिया जब नहाकर लौटी तो उसे घास कम लगी। उसने रुकमिन से पूछा तो रुकमिन ने कह दिया, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू कर दी, जिसने मेरी घास छुई उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, आंखें फूट जाएं। लगातार सिलिया गाली दे रही थी। रुकमिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया भी वहां पर सिर धुनकर रोने लगी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सबको खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ी क्यों लाती है, सवेरे क्यों उठती है, पैसे क्यों लाती है। पड़ोसियों की सहानुभूति से वो वंचित हो रही थी। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम हो गया, घास ना हुई सोना हो गया। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया था। शाम को जब थका हुआ लौटा तो उसने सिलिया से कहा कि ला कुछ पैसे दे, दम लगाऊंगा, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखकर रोने लगी। पयाग तो घबरा गया, क्या हो गया, क्यों रोती है, कौन मर गया? अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा, मैं अपने घर जाऊंगी, सिलिया ने जवाब दे दिया। अरे कुछ तो बोल, गांव में किसी ने कुछ कहा? सिलिया ने रो रो कर सारी कहानी सुना दी। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, वो तो झल्लाया ही था। ये कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुकमिन पानी भरने गई थी, वो अभी घड़ा रख भी नहीं पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा। मारते मारते उसे बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गाली उसे देती, पयाग हर गाली पर उसे और मारता। रुकमिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती, वाह रे तेरा दीद, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देखी। औरत का है को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। रुकमिन ने कुछ नहीं सुना, बस बोलती चली गई। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुकमिन की जबान नहीं थकी, वो लगातार रट रही थी। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला रहा था और आ आकर 2-4 लात जमा देता था। पर रुकमिन तो अब जैसे पत्थर हो गई थी, अब उसे चोट ही नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ, रुकमिन उठकर निकल गई, आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। सिलिया खाना बना रही थी, उसने जाते देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ नहीं बोला। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसका किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मुढ़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग जला लेता था और उसी मुढ़ैया पे जाके रहता था। चैत के अंत तक यही नियम था और आजकल वही दिन तो चल रहे थे। फसल पकी हुई थी, 2-4 दिन में कटाई हो गई। पयाग ने 10 बजे रात तक रुकमिन की राह देखी, समझा कि पड़ोसिन के घर चली गई होगी रुकमिन, इसलिए खा पीकर उसने लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले, रुकमिन आए तो खोल देना, मना जुना कर थोड़ा खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। सिलिया बोली, न जाने वो कब आएगी, मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली थोड़ी ले जाएगा, डर किस बात का। फिर रुकमिन भी तो अभी आएगी, तू रह, आता हूँ। सिलिया ने अंदर से दरवाजा बंद किया, पयाग खेत में चला गया। अचानक सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जला ली है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी, उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ, कौन है, कौन आग जला रहा है। ऊपर उठती ज्वालाओं ने अपनी जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मुढ़ैया में आग लगी है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मुढ़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी, मढ़ैया के चारों ओर एक हाथ पे हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे खेत को भस्म कर देगी। गांव तबाह हो जाएगा और इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वो भी जल जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, लपटे तो बढ़ रही है। अब विलंब करने का समय नहीं था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया।
कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर वो बेतहाशा मुढ़ैया की ओर दौड़ा। मेढ़ों में जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेत से होकर भागा जा रहा था। ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी। वो ऐसे भाग रहा था जैसे तेज घोड़ा उड़ रहा हो। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य था। उसकी आंखें मढ़िया पर लगी थी, दाहिने बाहिने कुछ नहीं सूझ रहा था, दम फूल रहा था, ना पांव थक रहे थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मुढ़िया के पास पहुंच गया। मुढ़िया के पास कोई नहीं था। किसने ये काम किया, ये सोचने का मौका नहीं था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ। वो क्रोध का समय नहीं था, लेकिन ज्वाला कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, दाहिनी ओर लपकती और कभी बाई। पयाग गांव की ओर भाग गया। ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई अग्नि यज्ञ हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। एक बार एक मूठ उठाकर अलग करके वो गिर गया। सारा हाथ जल गया उसका। हाथ पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी। अगर भय था तो यही कि मढ़िया का वो केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था वो ना चल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मढ़िया उसके ऊपर आ गिरती, अग्नि समाधि में मग्न कर दी थी उसको। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से लड़ने में लगा था। पयाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग रोक नहीं पा रहा था। अग्नि की क्रूर लीला उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी कि अचानक एक स्त्री सामने के वृक्ष से दौड़ती हुई आई और पयाग के पास पहुंच गई। ये रुक्मिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़िया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों में ले लिया और उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया। रुक्मिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर पहुंच गई, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध नहीं थी कि मढ़िया के बाहर निकल आए। वो मढ़िया के लिए वहीं गिर गई। उसके बाद कुछ देर तक मढ़िया हिलती रही, रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही और फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया। सारी देह चल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा, पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुक्मिन की अध जली लाश पड़ी थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांक लिया और खूब रोया। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो बचा नहीं। कुछ तो आग ने जला दिया और जो कुछ कसर थी वो शोक अग्नि ने पूरी कर दी और बन गई उनकी अग्नि समाधि।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों, अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहाँ उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया के चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से 2 सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थी। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नृत्य की पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधियां में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द ट्रेडिशन।

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसे में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण, ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी साज पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी महर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी
2: पम पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक।
3: जोसेफ एमिन लंदन की सड़कों से आजादी के सपने तक का सफर। अगस्त 1751 में जोसेफ एमिन नाम का एक व्यक्ति लंदन के वापिंग बंदरगाह पर उतरा, जिसके पास संपत्ति के नाम पर केवल चार शर्ट और चार मोटे अंत वस्त्र थे। वे दोहरी मार झेला हुआ एक शरणार्थी था जो पहले फारसी अत्याचारियों से बचकर कलकत्ता भागा।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स के जमाने से पहले से मौजूद है और आज भी हमारा साथी बनकर इस धरती पर यानी लगभग 22 करोड़ सालों से इस धरती का हिस्सा है। यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले से ये जीव धरती पर मौजूद है, हमारी संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी कहानियों का एक महत्वपूर्ण किरदार भी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कछुए की। अब प्रश्न ये उठता है कि कछुए पर आज बात करने का क्या उद्देश्य है। आज है विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और भी इस बारे में आपसे चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, वर्तमान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। आपने भोपाल के वनस्पति जगत पर PhD की है तथा पर्यावरण और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। सर, स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: कार्यक्रम में सबसे पहला विचार या प्रश्न यही उठता है, ये कछुआ दिवस मनाने का इतिहास क्या है और आखिर ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है?
5: देखिए, कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। ये अमेरिका में कुछ संस्थाएं थी जो कछुओं के संरक्षण पे 80 और 90 के दशक में काम कर रही थी।
4: अच्छा।
5: काम करते करते उनको यह एहसास हुआ, डाटा कलेक्शन करके उन्होंने पता लगाया कि कछुओं की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक इस पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और विधिवत रूप से 23 मई को ये

0: को निकाल दिया, हटा दिया वहां से जी, तो बाकी जो इकोसिस्टम वो भी कलेप्स हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: पहले जो किले बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनमें एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाया जाता था जैसे की स्टोन स्पेसिस कहते थे, और यदि उसको हटा लिया जाए तो दीवार समेत छत भी भरभराकर नीचे गिर जाती थी। तो वो शब्द उपयोग किया जाता है ऐसी प्रजातियों के लिए जो कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे जंगल में टाइगर होता है, या कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें बरगद का पेड़ होता है। तो ये इसी प्रकार से कछुआ, चाहे वो समुद्र का पानी हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, दोनों के लिए की स्टोन स्पीसीज है, इसलिए इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिवस का मनाया जाना प्रारंभ किया गया।
1: तो सर, मतलब ये कीस्टोन स्पीशी जो है तो वो क्यों बनता है, आखिर कारण क्या है, वो ऐसे क्या काम है उसके, या उसकी क्या गतिविधियां ऐसी हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है इकोसिस्टम की कड़ी में?
0: देखिए, एक तो यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से सोचें
1: जी,
0: तो कछुआ सर्वभक्षी प्राणी है, माने वो वेजिटेरियन भी है, वो इंसेक्ट्स भी खाता है, वो सड़ी गली चीजें भी खाता है, वो जीवित चीजें भी खाता है। तो जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा काम कह सकते हैं आप, जो काम नगरपालिका सफाई का शहरी क्षेत्रों में करती है वो काम पानी के अंदर कछुआ करता है।
1: अच्छा,
0: और पानी की तमाम ऐसी गंदगी जो मांस के रूप में होती है,
1: अच्छा,
0: उनका भक्षण करके, और इवन जो दूसरे जंतु मल का विसर्जन करते हैं पानी में, उनका भक्षण भी कर लेता है। तो एक तो बहुत ही अच्छा बड़ा सफाई कर्मी
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: दूसरा, इकोसिस्टम में जो अन्य जंतु हैं उनका बैलेंस बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कोरल रीफ हैं उनकी रक्षा करने में कछुओं का बहुत बड़ा योगदान।
1: तो सर, अब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कछुओं की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे इनका हम महत्व समझ सकते हैं?
0: विशेषताओं के साथ साथ ये भी स्मरण रखें कि हम किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कछुओं के बारे में, ताकि उनको जागरूकता हो, या कछुओं के संबंध में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो उनसे सीधे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनमें जागरूकता है। तो देखिए, कछुए का एक तो विशेषता यह होती है, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हों या नदियों में पाए जाने वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलते हैं
1: जी।
0: उनको ज्ञान रहता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: एक तो महत्वपूर्ण बात यह हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कछुए का जीवन काल बहुत बड़ा होता है, यानी वो उस इकोसिस्टम में काफी साल तक बना रहेगा
1: जी।
0: दो बातें हुई। तीसरी बात यह हुई कि वो तालाब की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो मछलियां हैं, जो मेंढक है, जो क्रस्टेशिया हैं, जो घोंगे हैं, और जो अन्य प्राणियों का मृत मांस है, उनको सफाई करता रहता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: आप अपने आप समझ सकती है कि इकोसिस्टम में कछुए कितना बड़ा योगदान निभा रहा
1: है। जैसे हम यदि भूमि पर देखें तो गिद्ध है या कौवे हैं या लकड़बग्घे हैं जो सड़ा गला मांस या इस तरह की चीजें खा के और हमारे इकोसिस्टम को साफ रखने का काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, वही काम कछुआ भी करता है।
0: बिल्कुल, कछुआ उसी तरह का काम करता
1: जी। तो सर, बात यह आती है कि क्या कछुआ जो होता है उसमें अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं?
0: निश्चित रूप से, कछुए को हम तीन तरह की प्रजातियों में बांटा जाता है अमूमन। कछुए का एक तो ये है कि ऐसे कछुए जो मैरीन वाटर में, यानी सी वाटर में, यानी समुद्री जल में, खारे पानी के वाटर में, पानी में पाए जाते हैं, एक प्रजाति हो गई समुद्री प्रजाति, उनको सामान्यतया टर्टल इंग्लिश में बोला जाता है
1: जी।
0: ठीक। अब इसके बाद दूसरी प्रजाति हुई जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी जो हमारे नदियों में पाया जाता है मोस्टली, या बड़े बांधों में पाया जाता है, उसमें पाए जाने वाले उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो दूसरी प्रजाति ये हो गई।
1: अच्छा।
0: तीसरी प्रजाति हो गई फ्रेश वाटर मार्स टर्टल, यानी जो थोड़ा कीचड़ में भी रह लेते हैं, ऐसे कछुए। ये तीन प्रजातियां हैं, उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन।
1: अच्छा अच्छा।
0: जो कि ताजा पानी में रहते हैं उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन। अब इसमें आप मोटे तौर पे यदि हमको बच्चों को समझाना हो तो मोटे तौर पे बच्चों को सिर्फ दो बातें बताना चाहिए, एक टर्टल, एक टॉर्टाइज। टर्टल जो समुद्र में और खारे पानी में या मीठे पानी में रहता है, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज सामान्यतया स्टॉर्टाइज के लिए यूज किया जाता है जो पूरा जीवन काल पृथ्वी पर गुजारता है, टेरिस्ट्रियल होता है, धरातल पर रहता है, पानी में नहीं जाता। तो ये मोटे तौर पे, ये वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मैंने तीन तरह में विभाजित कर दिया, समुद्री कछुए, फ्रेश वाटर कछुए और मार्स वाले मर्ड वाले कछुए, और यदि हम बिल्कुल साधारणीकरण कर दें उसका तो दो कछुए होंगे, एक होगा टर्टल और दूसरा होगा टॉर्टाइज जो कि भूमि पर।
1: अच्छा, तो सर जो टॉर्टाइज है जो भूमि पर रहता है वो पानी में भी रहने के का अभ्यस्त होता है ना सर?
0: नहीं, उसने अपने आप को ढाल लिया है जमीन पर रहने के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो पानी में नहीं रहता, पानी का बिल्कुल अभ्यस्त नहीं रहता। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो कछुओं का विकास हुआ है, जो विकसित हुए हैं कछुए, इनको भी रीढ़धारी प्राणियों में गिना जाता है। एक अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होते हैं, तो ये कशेरुकी प्राणी होते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इनका जो विकास हुआ है ये उभयचर से हुआ है, एम्फीबियन से हुआ है, जिसका उदाहरण हम मेंढक समझ सकते हैं।
1: अच्छा,
0: मेंढक जैसे धरती पे भी काफी आराम से रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, तो कछुओं का, कछुओं के जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं, उनका विकास, विकास के क्रम में विकसित हुए हैं वो उभयचर से।
1: अच्छा, तो सर मुझे अब इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं कछुओं की?
0: देखिए, पूरे आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 300 के आसपास प्रजातियां पूरे विश्व में कछुओं की पाई जाती हैं।
1: अच्छा,
0: जिसमें समुद्री कछुए भी शामिल है और पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाले समुद्र कछुए भी शामिल है।
1: जी,
0: हमारा जो भारत देश है उसमें जो कछुए पाए जाते हैं वो लगभग 30 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छा, हमारे भारत देश में
1: जी,
0: और 30 से लगभग सभी प्रजातियां जो हम छोड़ दें, हमारे कुछ असम वाली प्रजातियां छोड़ दें, उड़ीसा वाली प्रजातियां छोड़ दें, तो फ्रेश वाटर की काफी सारी 30 प्रजातियां लगभग हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
1: अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि एक उभयचर प्राणी है जो कछुआ है, और कशेरुक है यानी कि जिसकी मेरुदंड होती है।
0: जी हाँ।
1: तो सर एक बात यह भी आती है कि बहुत ही जिज्ञासा रहती है हमको भी और बच्चों को भी कि उसकी वो शेल होती है, जो उसका कवच है, वो क्या है सर? वो हड्डी है या मांस है या ये क्या चीज है जो उसकी रक्षा करता है?
0: हाँ, ये आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। उसके पहले हम थोड़ा सा धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: शेल के बारे में तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर ये बताऊंगा कि पहले जब लोहे का आविष्कार करके ढाल नहीं बनाई गई थी, तो जो योद्धा लोग थे जो युद्ध में जाते थे वो तलवार के साथ जो ढाल का उपयोग करते थे उसके उसी शेल का उपयोग,
1: कछुए की शेल,
0: कछुए की शेल का उपयोग करते थे। और रासायनिक संगठन मुख्यतः इसका कैल्शियम कार्बोनेट और उसी से मिलते जुलते अन्य चीजों का होता है, जिससे हमारा कैरोटीन, हमारा ये बना होता है, नाखून वगैरह बने होते हैं उससे बना हुआ होता है। हम आते हैं भारतीय संस्कृति में कछुआ, हमारे धर्म में कछुआ और हमारे आध्यात्मिक जीवन में कछुआ। आध्यात्म की बात जब आती है तो गीता के 5वें अध्याय के एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है, अपने कवच के अंदर समेट लेता है, इसी तरह से जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके ध्यान लगाता है वो सच्ची ध्यान की ओर अग्रसर हो।
1: क्या बात है, मतलब कछुए का उदाहरण गीता में भी है,
0: ऋग्वेद में भी है।
1: अच्छा,
0: ऋग्वेद में भी गीता का दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है। मगर एक और दूसरी बात है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी वैज्ञानिकता को धर्म से जोड़कर समझाने का एक प्रयास है कि विष्णु के जो दशावतार हैं उसमें एक कच्छप अवतार भी है, कूर्मावतार भी है। उसकी कहानी है, हम यदि संक्षेप में आज के दिन उस कहानी को याद करना चाहें कि जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन क्या, हम हर तरह का, जैसे हमारा वैचारिक मंथन करते हैं तो विचार निकल के आते हैं, हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो भी एक तरह का मंथन है। तो इसी तरह से मंथन शब्द जो है वो एक तरह से वैचारिक चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है, मथना। तो भाई इंद्र परेशान हुए, उनका बहुत सारी चीजें छिन गई उनसे, तो वो भगवान विष्णु के पास आए कि मैं क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो असुर और सुर माने देवता और राक्षस दोनों ने समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। उन्होंने समुद्र को मथने के लिए क्या करा जाए, तो आधार बनाना पड़ेगा मटका जैसा,
1: जी बिल्कुल,
0: तो और दूसरा होगा मथानी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत था
1: जी,
0: उसका बनाया आधार यानी मटका जैसा बनाया
1: जी,
0: और वासुकी नाग थे उनका बनाया रस्सा
1: जी,
0: और मंथन हुआ
1: जी।
0: तो अब ये हुआ कि वो जो पर्वत था उसका कोई आधार नहीं था, वो पर्वत शने शने समुद्र में डूबने लगा
1: जी।
0: तो सब देवता और असुर दोनों ने प्रार्थना करी विष्णु भगवान से, तो कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने तब कूर्मा उतार लिया, कछुए का उतार लिया, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे उठा लिया और उसको डूबने से बचा लिया, इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। तो दरअसल देखिए कोई भी पुराणों में जो कहानियां आई है या हमारे संदर्भ है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता लिए हुए होते हैं कि एक तो मंथन करेंगे आप तो ही कुछ अमृत मिलेगा, अमृत पाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मथानी लेके दही ले लें, मतलब वैचारिक मंथन करेंगे तो ही आपको कुछ मिल पाएगा। दूसरा ये भी हमको पता चलता है कि हमारे पुराणों में पहले से इस बात का उल्लेख है कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है
1: जी
0: वो जल से हुई है। जैसा आपने अभी कहा 25 करोड़ साल पहले कछुआ पाया जाता था, इसका मतलब हमारे पास इस बात के पहले भी कहीं ना कहीं चिंतन करके हम इस बात को अपने सामाजिकता में ला चुके थे कि कछुआ बहुत पुराना जीव है।
1: जी सर, ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हुआ, पौराणिक संदर्भ हुआ। तो इसी से मिलती जुलती एक बात यही आती है कि कहा जाता है कि कछुओं की बहुत उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, तो कितने इनका जीवन काल होता है सर?
0: देखिए अब ये इसमें भी कछुए की उम्र को लेके भ्रांतियां हैं। मैं स्पष्ट करूं आपको कि एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, एक अध्ययन हुआ था, एक कछुआ वैज्ञानिक आधार पर 152 वर्ष का पाया गया था। कछुए जीते हैं, काफी लंबी आयु जीते हैं, कैप्टिविटी में भी जीते हैं और खुले क्षेत्रों में भी जीते हैं, मगर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है 152 वर्ष का कछुआ है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों संरक्षण किया जाए, देखिए ये भी एक मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों कछुए का संरक्षण किया जाए। कल को मनुष्य अपनी आयु 152 साल करना चाहता है
1: जी,
0: निश्चित रूप से जीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे जीन्स की। यदि कछुए का उसे 152 साल वाले कछुए का जीन सुरक्षित रहता है तो हम उन जीन्स को मनुष्य के जीन्स के साथ मिलाकर, ये जीन टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का युग आ गया है, चल रहा है, तो यदि हमने किसी प्रकार से हमारा जीन में परिवर्तन कर देंगे तो मनुष्य भी बड़ी आसानी से 152 साल जी पाएगा। तो इसलिए भी कछुए का संरक्षण करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव चलता फिरता है जिसकी आयु 152 साल वैज्ञानिक रूप से प्रूफ की
1: जी। ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही सर। तो यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, क्या सर ये कछुए के दांत नहीं होते?
0: आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया
1: जी,
0: कछुए के दांत नहीं होते, मगर उसका जो मुंह के अंदर जो संरचना होती है वो काफी कठोर होती है खाने के लिए। दूसरी बात क्या कि मैंने आपसे कहा है कछुए का भोजन क्या होगा, मेंढक होगा, मछलियां होंगी, कुछ क्रस्टेशियंस होंगे, कुछ घोंगे होंगे
1: जी,
0: और इसके बाद मृत मांस होगा, सड़ा हुआ मांस होगा। तो इन सबको चबाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कछुओं के दांत नहीं पाए जाते, ये सही बात है।
1: तो सर इनका मैंने सुना है कि इनकी हृदय गति भी बहुत धीमी होती है सर?
0: निश्चित रूप से, ये अच्छी बात है। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। एक कछुआ होता है के बारे में अध्ययन किया गया, 2 साल बिना खाए पिए जीवित रहा, उसको कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया। यानी जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ज्यादा आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा हम वार्धक्य आ जाता है, हमारे बुढ़ापा आ जाता है, तो चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है इसलिए हम खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है। तो कछुए के साथ यही बात है कि वो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। एक और बात आपको बताऊं मैं कि कछुए भी हम जो आसपास जगत देखते हैं, हमारा जंतु जगत, उसमें एक तो मनुष्य और दूसरा पक्षी, इनका शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है
1: जी,
0: ये समतापी हैं। जैसे हमारे मनुष्य का जीव तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्थिर है। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो हमारे शरीर का तापक्रम गिर के 90 हो जाए और गर्मी आने लगे तो 101 हो जाए, स्थिर रहता है। परंतु कछुआ ऐसा जीव है जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सर्दी में कछुए पानी के बाहर आकर बास्किंग करते हैं, उसको तकनीकी भाषा में, वन्य प्राणी की भाषा में बास्किंग कहते हैं, आगे धूप सेक के अपना तापक्रम, शरीर का तापक्रम बढ़ाते हैं। और गर्मियां आती हैं तो वो सामान्यतया पानी में ही रहते हैं, बाहर आके बास्किंग नहीं करते, पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कछुए ऐसे होते हैं जिसका मैंने आपको बताया ना टर्टलटाइस, वो हाइबरनेशन एक तरह से सर्दियों में खाना पीना बंद कर देता है।
1: अच्छा,
0: या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उसका खाना बहुत कम हो जाता है।
1: यानी सर तपस्वियों का जीवन है, इसीलिए तपस्वियों जैसा उनकी आयु भी है,
0: आयु भी है, वैसे ही उनका जिसको हम कहेंगे चयापचय की दर या मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, इसलिए उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा
1: जी। सर एक प्रश्न मेरा मन में ये भी आ रहा है कि जो जलीय कछुए हैं क्या वो मछली की तरह पानी में ही सांस ले लेते हैं या उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है?
0: बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा
1: जी।
0: इस प्रश्न को मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमें समुद्री कछुए जो होते हैं, जो मैरीन टर्टाइल कहलाते हैं, वो हम पांच कछुओं की बात करेंगे।
1: अच्छा जी,
0: ठीक है। पहला कछुआ होता है समुद्री कछुआ, बोलते हैं ग्रीन टर्टल। अब आपने सांस रोकने की बात करी, ग्रीन टर्टल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 5 घंटे तक सांस रोके रहता है पानी।
1: क्या बात,
0: समुद्री कछुआ है। दूसरा टर्टल है ओलब रिडले टर्टल, ये बड़ा खबरों में रहता है पूरी दुनिया में, क्यों रहता है मैं आपको भी बताता हूँ। नहीं, तीसरा है हॉकबिल कछुआ, ये समुद्री कछुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा है लैदरी टर्टल, इसको शेर कछुआ कहते हैं।
1: और
0: विशेषता क्या है, शेर कछुआ क्यों कहते हैं, इसका वजन 1000 किलो के आसपास होता है, बड़ा भारी कछुआ होता है।
1: अच्छा, तो सर ये मतलब समुद्र में इतना बड़ा
0: कछुआ पाया जाता है। और फिर इसके बाद है लॉगर हेड कछुआ, ये लॉगर हेड कछुआ लगभग विलुप्ति के कगार पे है, कम मिलते हैं। ये 5 तरह के प्रमुख कछुए हैं जो समुद्र में मिलते हैं। तो अब मैं आपको जो ओलिव रिडले टर्टल, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारे भारत के हिंद समुद्र तट पे पाया जाता है, उड़ीसा में खास तौर से। तो ये कछुआ काफी बड़ी संख्या में, ये ग्रुप बना के, समूह बना के रहते हैं। कछुआ अकेले रहने वाला प्राणी नहीं है,
1: सामाजिक प्राणी है,
0: समूह बना के रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया, अपनी गति करते हैं, तो इन्हें दिशा किस दिशा में जाना है, बीच समुद्र में है, उनको किनारे पे आना है, तो कैसे आएंगे, वो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। मैंने कहा
1: मैग्नेटिक मतलब कि सर साउथ और नॉर्थ का इनको ज्ञान है,
0: चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं, उसके हिसाब से गति करते हैं। अब इनको अपना प्रजनन करना है, बच्चे देना है। जितने भी दुनिया में कछुए पाए जाते हैं, रहते जरूर पानी में हैं, परंतु प्रजनन वो जमीन पे आके करते हैं।
1: अच्छा सर, समुद्री जो कछुए हैं वे
0: वो भी करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और जो कछुए बाहर पृथ्वी पे रहते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और मैंने आपको तीसरा मार्श वाले कछुए बताए, वो भी करेंगे
1: जी।
0: तो ये समुद्र के तट पे जहाँ रेत होती है वहां समुद्री कछुए करते हैं, जहाँ रेत नहीं होती वहां पृथ्वी पे पाए जाने वाले कछुए भुरभुरी मिट्टी में करते हैं। जो ओलिव रिडले आपको टर्टल्स की बात कर रहा था, ये कहा जाता है कि समुद्र का सबसे छोटा कछुआ है
1: जी।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग है, हजारों की संख्या में उड़ीसा के तट पर आता
1: जी।
0: है और उड़ीसा के तट पर आकर ये केवल प्रजनन करने के लिए आता है। मादा आती है, अंडे देती है वहां पे, और इंक्यूबेशन जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चे को रखती है 9 महीने तक, या मुर्गी अंडे पे बैठ के उसको अंडा सेती है, इसी तरह से उनका इंक्यूबेशन, उनका गर्भ वो समुद्र की रेत होता है।
1: अच्छा,
0: अंडों का।
1: अच्छा अच्छा,
0: अंडे उसमें दबा देते हैं
1: जी, मतलब समुद्र की रेत में गड्ढा खोद के उसमें अंडे दिए,
0: अंडे बाहर आके।
1: अच्छा,
0: तट पे
1: जी,
0: समुद्र के पानी के अंदर नहीं, तट पे
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और वो 40-45 दिन 80 दिन जितना भी उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद उसमें से वो बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चों को जन्म से ही मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होता है।
1: अच्छा।
0: उतर के समुद्र की तरफ चलने लगते हैं।
1: क्या बात है?
0: उल्टा नहीं चलते, ऐसा नहीं चलेंगे कि जिधर समुद्र उस तरफ चलना शुरू कर दे। वो माँ नहीं आती उनको लेने के लिए।
1: अच्छा,
0: माँ का काम है अंडे दिए चली गई वापस समुद्र में, ना रक्षा करती ना कुछ करती, और फिर वो अपने आप समुद्र में जाके अपने समूह से जाके मिल जाते हैं, ओलब रिडले टर्टल।
1: अब प्रश्न यही आता है सर कि आखिर इतनी प्यारी प्रजाति जो है कछुआ प्रजाति, ये विलुप्त क्यों हो रही है? क्या कारण है कि ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए?
0: देखिए, उसी के लिए तो विश्व कछुआ दिवस मनाना शुरू किया गया है कि जागरूकता है। नंबर एक जो बात है, हैबिटेट लॉस।
1: अच्छा,
0: उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट होता जा रहा है। तालाब थे, उनको खत्म कर दिया
1: जी।
0: नदियां हैं, उनको खत्म कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं, या तो नदियों को हमने समाप्त कर दिया है, समाप्त नहीं कर पाए हैं तो प्रदूषित कर दिया है उनको
1: जी।
0: तीसरी बात है, समुद्र के कछुओं के बारे में यदि आप सोचें तो प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, छोटे छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं, जिनको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, और माइक्रो प्लास्टिक्स को वो कुछ आहार समझ के कछुए खा लेते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उसके कारण नाश विनाश हो रहा है उनका। दूसरा हो रहा है कि कई बार समुद्र में तेल छोड़ा जाता है, तेल जैसी, ग्रीस जैसी चीजें, ऑयल जैसी चीजें छोड़ दी जाती हैं।
1: अच्छा, जहाजों से जो लीक हो जाती
0: लीक हो जाता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: उसके अलावा भी जो प्रदूषित पानी है उसके साथ बहुत सारा शहरों के पास जहाँ है समुद्र में प्रदूषण का पानी छोड़ रहे हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है पानी उसके ऊपर तेल की
1: जी,
0: जिसके कारण अंदर कछुए को सांस लेने में तकलीफ होती है। सभी कछुए ऐसे नहीं होते कि दो दो घंटे सांस रोक लें, सांस तो सबको ऑक्सीजन सबको
1: उन्हें सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए,
0: सांस लेने के लिए सतह पर, या जो ऑक्सीजन पानी में है
1: जी जी
0: उसमें उससे लेंगे वो पानी की ऑक्सीजन लेंगे
1: जी, जी,
0: तो पानी की ऑक्सीजन भी यदि आप उसके ऊपर आयल की सतह बना देंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो पानी में अब्सॉर्ब होती है वो कम हो जाएगी,
1: कम हो जाएगी।
0: तो ये बड़े कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उसके साथ साथ कछुए भी पकड़ लेते हैं, तो कछुआ पकड़ में आ जाता है तो वो कछुए को बेच देते हैं कछुआ। कुछ लोग कछुए खाते भी हैं जो कि हमको आहार के रूप में दूसरी चीजों पे जाना चाहिए बजाय कछुए के, उसके कारण भी कछुओं के जीवन पर संकट आ रहा है। एक बड़ा संकट और आ रहा है बांध बनने के कारण।
1: अच्छा,
0: बांध बनने के कारण बांध के किनारे पे कछुए नहीं पहुंच पाते जहां उनका उनको अंडे देना है,
1: आवास था
0: जी, तो सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो आवास का संकट है कछुओं के साथ, इसलिए कछुओं की संख्या में कमी आ रही है। अब मैं अभी समुद्री कछुओं के बारे में तो आपने पूछ लिया था मेरे से, किंतु आपने मीठे पानी के कछुए के बारे में नहीं पूछा जो हमारे मध्य प्रदेश के कछुए हैं। बताना चाहें लोगों को कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे कछुए हैं, पांच प्रमुख कछुए जिनका संरक्षण होना चाहिए और जो समाप्त होते जा रहे हैं, तो उनमें पहला कछुआ जो है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टार्टाइज और टेरापिन कहलाते हैं, तो पहला वाला फ्रेश वाटर टर्टल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल।
1: अच्छा, जो मध्य प्रदेश में,
0: जो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी में मिलता है, मुरैना में पाया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये बहुत ही नियर टू एक्सटिंक्शन है। अब आप समझेंगे, एक तो मनुष्य का लालच, रेत की खुदाई,
1: अच्छा रेत खनन,
0: रेत खनन। और देखिए मैंने आपसे कहा कि वो बच्चे कहाँ दे रहा है, अपने अंडे कहाँ दे रहा है, तट पर आकर रेत में दे रहा है और उस रेत को आप भर के ले जा रहे हैं
1: जी।
0: तो एक बड़ा कारण उनका यह है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय इनको मॉनिटरिंग करती है, इनको उसने रेड डाटा लिस्ट में डाला हुआ है समाप्ति के कगार पे। दूसरा एक सामान्य कछुआ है जिसको जो हम लोग देखने में आता है, फ्लैप शेल टर्टल।
1: अच्छा,
0: उसका जो ऊपर की जो वो रहता है ना वो बिल्कुल जरा नाजुक सा रहता है।
1: अच्छा,
0: नरम सा रहता है, नरम रहता है, फ्लैप शेल टर्टल। नंबर तीसरा है गंगीज सॉफ्ट टेल टर्टल। गंगा में और उसकी गंगा की जो सहायक नदियां, जैसे आप गंगा की सहायक नदियां किसको कहेंगे, बेतवा को कह दीजिए, चंबल को कह दीजिए, इनमें जो पाया जाता है, यमुना है, इन इसको मिलता है गंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल। तीसरा है थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। उसके ऊपर तीन लाइन पंक्तियां होती हैं, तीन लाइनें खिंची होती हैं, इसलिए थ्री लाइन रूफ टर्टल कहलाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया वो था स्टार टॉर्टाइस। ये स्टार टॉर्टाइस पाया जाता है कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो ये सारनी बैतूल के जंगल में मिलता है, गांधी सागर के जंगल में मिलता है। ये भी नियर टू एक्सटिंक्शन है, विलुप्ति की कगार पे है, गिनी चुनी संख्या में बचे हैं। इनका भी आवास खतरे में पहुंच गया है। आवास का खतरे में पहुंचने का कारण मेन भी आदमी भी है, पालतू पशु भी हैं। इनके आहार, एक बड़ा भी बात हो रही है आहार, ये आहार नहीं है इनके। ये जो स्टार टर्टाइस है बहुत ही सुंदर किस्म का कछुआ है, इसकी तस्करी भी होती है और इसका आहार ये शाकाहारी होता है।
1: अच्छा,
0: तो जंगल में ह्यूमन इंटरवेंशन इतने बढ़ गए हैं कि उसको अपना आहार नहीं मिल पाता है। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा था कि उनके दांत होते हैं कि नहीं होते, तो जिसके दांत होते हैं जरा और चीजें भी खा लेता है, जिसकी दांत नहीं होंगे उसको लिमिटेड खुराक ही होगी। तो स्टार टॉर्टाइस भी विलुप्ति के कगार पे है। ये हमारे मध्य प्रदेश के पांच कछुओं के बारे में बात। अच्छा,
1: तो सर ये जब संरक्षण की बात चल रही है तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि भारत में कछुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम क्या कहीं क्या अभयारण्य हैं, और यदि हैं तो कहाँ कहाँ हैं?
0: देखिए, एक तो बहुत पहले से कछुओं के संरक्षण के बारे में जहाँ चर्चा की, जहाँ काम किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है वो है चेन्नई।
1: अच्छा,
0: है ना, चेन्नई में प्रारंभ से ही कछुओं के बारे में काफी काम किया गया है। तो एक तो संरक्षित स्थल है, कोई घायल कछुआ होता है, बीमार होता है, वो लोग इलाज भी करते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ शार्प सेल टर्टल, वहाँ पर शार्प डॉटर टॉर्टाइज और सी टर्टल दोनों पे काम किया जाता है। मगर भारत में अभी दो अभयारण्य बनाए गए हैं स्पेसिफिक कछुए के। एक तो बनाया गया है वाराणसी में, वाराणसी में रामनगर के आसपास, रामनगर से लेकर 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो जो गंगा नदी में कछुए पाए जाते हैं, ना केवल उनका संरक्षण हो रहा है बल्कि वहां पर अन्य कहीं से भी कछुए आते हैं तो उनको भी संरक्षित किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये जो संरक्षण वाराणसी में हो रहा है ये हो रहा है सॉफ्ट वाटर यानी मीठे पानी वाले कछुओं के संरक्षण और उनका अभयारण्य। दूसरा जो स्थान है जहाँ बड़े पैमाने पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है वो उड़ीसा की, मैंने आपको बात बताई, उड़ीसा में भी संरक्षण हो रहा है इसका और वहां पर भी, यहाँ पर ओलिव रिडरे आते हैं, उस जगह का नाम है केंद्रापाड़ा।
1: अच्छा,
0: तो वो केंद्रापाड़ा में वहां पर संरक्षण करके वहां भी सेंचुरी बनाई गई है और इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो दोनों तरह का संरक्षण हो रहा है, समुद्री कछुओं का भी भारत में संरक्षण के लिए सेंचुरी बनाई गई है और फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए भी बनाई गई।
1: तो सर ये अभयारण्य में सबसे ज्यादा तो जब इनका क्या कोई विशेष प्रजनन काल होता है क्या, उस समय विशेष ध्यान दिया जाता होगा?
0: मोटे तौर पर ऐसा समझिए, वैसे तो हर कछुए का प्रजनन काल में अंतर होता है, मगर सामान्यतया कछुए बारिश के पूर्व प्रजनन करते हैं ताकि रेत की स्टेबिलिटी बनी रहे और बारिश के पहले बच्चे निकल आए और वो पानी में चले जाए,
1: यानी अमूमन गर्मियों के समय में,
0: गर्मियों में नवंबर से लेके और अप्रैल के बीच में।
1: अच्छा,
0: इनका सामान्यतया प्रजनन काल रहता।
1: तो सर अब बात यह आती है, आपने संरक्षण के लिए जो अभयारण्य बताए वो, लेकिन हम हमारे स्तर पर कछुओं के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं?
0: एक तो जो लोग कछुओं का शिकार कर रहे हैं
1: जी,
0: अवैध व्यापार कर रहे हैं, देखिए पहले क्या होता था, अभी भी ये प्रथा परंपरा है कई देशों में, तो वहां पे कछुओं की मांग रहती है। कछुए का जो शेल होता है ना उससे कान के टॉप्स बनाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: कुछ अंगूठियां बनाई जाती थी, गले में पहनने के गारमेंट्स बनाए जाते थे। कछुए के बारे में मिथक है कि वो यौन शक्ति को बढ़ाता है, वो उसके कारण गाए जाते थे, उसके कारण कछुए का था। अब कछुए के संरक्षण के लिए कछुए, जितने प्रकार के कछुए हैं वो सभी के सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल किए गए हैं।
1: अच्छा।
0: यदि कछुओं को कोई मारता है या अवैध व्यापार करता है या अवैध रूप से पालता है तो उस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम 6 साल तक की सजा है।
1: अच्छा।
0: तो हमको कछुओं का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि कछुआ बहुत ही विनम्र जीव है, किसी को परेशान नहीं करता, काटता नहीं है, मारता नहीं है, हानि नहीं पहुंचाता, की स्टोन स्पीसीज है, पानी की स्वच्छता बनाए हुए है और हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जंतुओं को इसलिए संरक्षण करना चाहिए, बेजुबान है, बोलते नहीं है, अपना कष्ट बता नहीं पाते हैं। कछुए दिवस पर जो परिचर्चा है उसमें मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि हमको भी जीवित रहना है प्रकृति के साथ तो कछुओं का भी संरक्षण करना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए आज और आपने कछुए के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई बातें तो हमको आज पहली बार पता चली हैं कि कछुआ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। तो श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में मनुष्य का बढ़ता हुआ दखल, जैसे कि प्रदूषण है या अवैध शिकार है या हमारे शौक है, इसके कारण इस प्यारे से प्राणी को विलुप्ति की कगार पर पहुंचना पड़ गया। जरूरत है कि हम इनका संरक्षण करें और इसके लिए विश्व में जागरूकता बढ़ाएं, और इसीलिए ही इस विशेष दिवस को यानी विश्व कछुआ दिवस को हम मनाते हैं। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। संतों के भजनों के साथ भारत भवन में समारोह का समापन हुआ। भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय संतवाणी समारोह का रविवार को भक्तिरस, सूफियाना, संवेदना और शास्त्रीय संगीत की स्वरमयी प्रस्तुतियों के साथ समापन हो गया। अनहद की ओर से आयोजित इस समारोह के अंतिम दिन अनुषा शर्मा और आरती अंगलीकर ने संतों की रचनाओं से माहौल भक्तिमय बना दिया। संतों की वाणी और सुरों की आध्यात्मिक आभा से आलोकित अंतरंग सभागार में सभा की शुरुआत युवा गायिका अनुषा शर्मा की प्रस्तुति से हुई। उन्होंने संत एकनाथ रचित भजन गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई के माध्यम से गुरु भक्ति को स्वर दिया। इसके बाद सूरदास के विरह भाव से उत्प्रोत पद निस्दिन बरसन नैन हमारे पेश किया। संत कबीर के निर्गुण भजनों भजन बिना हरि नाम बिना जल जइयो ऐसे जीवना और नर तन व्यर्थ गवायो जैसे कई भजन प्रस्तुत किए। इसके बाद शास्त्रीय गायिका आरती अंगलीकर टिकेकर ने शाम को विस्तार देते हुए राग केदार में द्रुत एकताल की बंदिश राम नाम जपत हूं में गाई। राग केदार की शुद्ध और कोमल स्वर संरचनाओं में उनकी आलापाचारी और तानों को खूबसूरत विस्तार दिया। आरती अंगलीकर ने मीराबाई के भजन महारे घर आओ जी में कृष्ण भक्ति की मधुर अनुभूति को स्वर दिए। मराठी संत तुकाराम के अभंग बोलावा बिट्ठल में उन्होंने वारकरी परंपरा की लोक आध्यात्मिक चेतना को पेश किया। इसके बाद मीरा का भजन चलो चाला वही देश श्रोताओं को वैराग्य की ओर ले गया। समापन में आरती ने भैरवी में संत सुयरा बाई के भजन अवधा रंग एक झाला पेश किया। इस प्रस्तुति में अद्वैत समरसता और भक्ति प्रवाह महसूस हुआ।

बैठक द आर्ट हाउस की ओर से रविवार को अनहद नाद संगीत संध्या का आयोजन राज्य संग्रहालय के सभागार में किया गया। ध्रुपद गायिका सुरेखा कामले ने शाम की शुरुआत आंग बागेश्री में आलाप जोड़ झाला और सरगम की प्रस्तुति से की। आमतौर पर ध्रुपद का आलाप गंभीर और सामान्य श्रोताओं के लिए कुछ बोझिल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर फ्लैमिंगो के व स्वरों के विशेष प्रयोग ने इसे सहज मधुर और अधिक आकर्षक बना दिया।

रीजनल साइंस सेंटर में वैकेशन क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप के अंतर्गत 22 से 24 मई तक आयोजित 3 दिवसीय रॉकेट रेंजर्स मॉडल रॉकेटरी कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में विद्यार्थियों ने जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के साथ सहभागिता करते हुए रॉकेट विज्ञान की अवधारणाओं को, प्रयोगों और मॉडल निर्माण को समझा। स्टूडेंट्स को रॉकेट लॉन्चिंग की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाई गई। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार न्यूटन के गति नियम रॉकेट लॉन्च में काम करते हैं और रॉकेट को ऊपर उठाने में थ्रस्ट संतुलन और एरोडायनामिक्स की क्या भूमिका होती है।

लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी द्वारा प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो के चर्चित नाटक शहीद साज का मंचन दृष्टिमन थिएटर होम नेहरू नगर में किया गया। नाटक का निर्देशन और एकल अभिनय वरिष्ठ रंगकर्मी विनोद कुमार ने किया। नाटक ने विभाजन, लालच, अपराधबोध और आध्यात्मिक शांति की तलाश जैसे गंभीर विषयों को बेहद संवेदनशील और तीखे अंदाज में प्रस्तुत किया। कहानी एक साधारण गुजराती बनिए के इर्द गिर्द घूमती है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान जाकर अवैध संपत्ति अर्जित कर अमीर बन जाता है। अपार धन दौलत के बावजूद उसके भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता और वह पुण्य तथा सुकून की तलाश में भटकते हुए ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच जाता है जहां इंसानियत और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। विनोद कुमार ने अपने सशक्त अभिनय और संवाद अदायगी से दर्शकों को बांधे रखा। मंच पर अकेले होते हुए भी उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से जीवंत किया। नाटक में व्यंग्य, हास्य और कटु यथार्थ का संतुलन प्रयोग दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता रहा। भोपाल में अंधेरा मंच, रहस्यमयी आवाजें, अचानक बदलती लाइट्स और डर के बीच दमदार अभिनय। जी, बात कर रहे हैं अभिनय कार्यशाला की। राजधानी के दर्शक को जल्द ही ऐसा ही रोमांचक अनुभव मिलने वाला है। नटराजन संस्था द्वारा आयोजित तरंग कला महोत्सव 6.0 इस बार हॉरर थीम पर आधारित मॉडर्न थिएटर लेकर आ रहा है, जिसमें 250 बच्चे और कलाकार मंच पर डर, सस्पेंस और मनोरंजन का अनोखा संगम पेश करेंगे। यह आयोजन 3 जून को शाम 5 बजे से रविंद्र भवन में होगा। खास बात यह है कि इसमें भाग लेने वाले कलाकारों की उम्र 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है। बच्चों से लेकर बड़े कलाकारों तक सभी ने सनों की प्रस्तुति के लिए कई महीनों तक तैयारी की है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सांदीपनी विद्यालयों में समर कैंप हो रहे हैं। इसी क्रम में कमला नेहरू कन्या सांदीपनी विद्यालय में पीपल्स थिएटर ग्रुप भोपाल की ओर से वर्कशॉप चल रही है। कार्यशाला में कक्षा 3 से 12 तक की 85 छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण युवा रंगकर्मी एवं रंग निर्देशक सिंधु धौलपुरे द्वारा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी एवं संस्कृति विभाग के तत्वावधान में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित तथा अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन एवं विमर्श कार्यक्रम 25 मई को शाम 6 बजे अकादमी कार्यालय मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय पुस्तक लेखन, प्रकाशन और पाठकीयता के बदलते सरोकार रखा गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मोहम्मद नौमान खान करेंगे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार शीन काफ निजाम उपस्थित रहेंगे। संचालन इकबाल मसूद द्वारा किया जाएगा।

मानव संग्रहालय में स्वर्ण जयंती वर्ष 2026-27 के अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित शास्त्रीय एवं लोक पर्व कार्यक्रम श्रृंखला पुनम 42 का आयोजन 30 मई को शाम 6 बजे झील की ओर स्थित आवृत्ति भवन के मुक्ताकाश मंच पर होगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित राहुल शिव कुमार शर्मा संतूर वादन की प्रस्तुति देंगे। तब पर उनके साथ पंडित राम कुमार मिश्रा संगत करेंगे। वहीं 22वां स्मरण हबीब रंग आलाप महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। हम थिएटर ग्रुप भोपाल द्वारा 22वें स्मरण हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव का आयोजन 8 जून से 12 जून तक किया जाएगा। 5 दिवसीय नाट्य उत्सव रविंद्र भवन में प्रतिदिन शाम 7 बजे से आयोजित होगा। चर्चित नाटकों में जिन लाहौर नई वेख्या वो जमयाई नई गुड़िया की शादी अगरबत्ती चेकमेट और हबीब तनवीर का कालजयी नाटक चरणदास चोर शामिल है। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: जनता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आजादी की प्राप्ति में लगा दिया। वे विस्मय प्रकृति के अद्भुत व्यक्ति थे जिनमें एक विशिष्ट तेज और ओज था। उनकी वाणी इतनी सशक्त और गर्जन भरी थी कि सुनने वालों की नसों में खून खौलने लगता था। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनमें वाइसराय बमकांड मुख्य था। उन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा छापकर आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया था। सन 1912 में उन्होंने लॉर्डिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फेंका और फिर बचकर जापान भाग गए। जापान में रहकर भी उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन का संचालन किया। रास बिहारी बोस से प्रेरणा लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्रांतिकारी रास बिहारी का देहावसान 1945 में जापान में हुआ था।
3: अरे राम राम काका,
4: राम राम,
5: राम राम।
3: लो आज हम फिर सब आ गए आपकी शरण में।
4: क्या बात है, क्या घर के खाने से पेट भर गया जो फिर चले आए हो?
6: अरे नहीं काका, भला घर के खाने से कभी पेट भरा है? ये तो आपका प्यार है जो हमें खींच लाता है बार बार आपके पास।
4: हमारा प्यार नहीं, हमारा खाना खींच लाया है तुम सबको।
6: काका आप तो बुरा मान गए, सच ये है कि आपका खाना लजीज होता है,
3: पर इसके साथ साथ कुछ और भी बात तो है काका।
4: वो क्या है बताओ? भला बता दोगे तो आज मैं भाजा के साथ तंदूरी रोटी खिलाऊंगा।
6: अरे अरे भाजा के साथ तंदूरी रोटी?
7: मत बताना कुछ मत बताना।
4: अरे कहाँ भाजा और कहाँ तंदूरी रोटी,
7: अरे ये भी कोई मेल है खाने का?
6: लगता है हमारे काका सठिया गए।
7: हाँ, हाँ?
6: तभी तो कहाँ बंगाल के भाजे के साथ पंजाब का मेल कर रहे हैं।
8: हाँ काका, ये क्या बात हुई बोला।
4: हाँ सही कहा तुम लोगों ने, तुम्हारा ये काका सचमुच सठिया गया है। भाजा के साथ तंदूरी के अलावा बाल मिठाई या चॉकलेट मिठाई परोसता तो तुम लोग सचमुच मुझे बेवकूफ समझते।
6: पर काका आपने तो कभी इस तरह की बेमतलब बातें की नहीं, फिर ये अचानक बंगाल पंजाब और कहां उत्तराखंड की बातें करने लगे।
4: अच्छा तुम ही बताओ, एक आदमी भला कितने तरह की जिंदगी एक साथ जी सकता है?
6: लो यहाँ आदमी अपनी तरह की एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता, उस पर आप कहते हैं कि कितने तरह की जिंदगी जी सकता है। क्या काका आज आपको ये क्या हो गया है?
4: आज तुम सब जिस शहीद की कहानी सुनोगे वो एक नहीं कई तरह की जिंदगी जीता था।
8: कई तरह की जिंदगी?
4: उसकी यही विशेषता रही कि अंग्रेज पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अपनी चालाकी से उसने पूरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा छकाया कि लोग हतप्रभ रह गए।
7: ऐसा कौन शहीद होगा जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? अब बताओ ना काका, बताओ ना।
8: काका बताओ ना।
4: हम नहीं बताएंगे, तुम सबको एक क्लू जरूर दे देंगे, समझदार हो तो बता दोगे। वो भारतीय होने के बाद भी जापान का नागरिक था, उसकी शादी एक जापानी लड़की से हुई थी।
7: कौन था भाई?
8: काका आप हमें उलझा रहे हैं। हाँ।
7: अच्छा
8: आपकी सोबत में इतना तो जान गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
7: हाँ सही कहा।
8: क्यों
7: सही
8: क्यों है ना?
7: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
8: और उसकी शादी भी एक जापानी से ही हुई थी, पर जापानी नागरिक कभी रहे नहीं वो। क्यों भाई ठीक है ना?
6: बिल्कुल बिल्कुल। काका आप तो बता ही दो अब भाई, फिर तो सचमुच भाजा तंदूरी और पहाड़ी बादिये का तो मजा ही आ रहा है।
4: वो शहीद मूल रूप से थे बंगला भाषी, नौकरी की देहरादून में, दिखने में हट्ठे कट्ठे पंजाबी जवानों की तरह, जापानी पत्नी का नाम था संतोषी को।
8: काका एक बात तो सही है कि आज हम आपके सामने बिल्कुल ही हार गए।
7: हाँ ये बात तो सही
8: है भाई, है ना। जो सच है वो तो है।
7: हाँ बिल्कुल,
8: हम ऐसे किसी शहीद को नहीं जानते जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हों।
4: उस शहीद का नाम था रास बिहारी बोस।
8: रास बिहारी बोस,
7: अरे वाह क्या बात है काका, रास बिहारी बोस।
6: तो काका आज हो ही जाए कहानी रास बिहारी बोस की।
7: हाँ काका हो ही जाए।
8: हाँ काका आज तो हो ही जाए।
7: हो ही जाए।
4: तो सुनो शहीद रास बिहारी बोस की कहानी।
1: रास बिहारी बोस यानी बंगाल के रहने वाले

0: किस तरह?
1: ब्रिटिश सेना में शामिल होकर।
0: ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला ब्रिटिश फौज में रहकर देश की सेवा किस तरह से करोगे?
1: पिताजी, आपके इस प्रश्न का उत्तर सही सही दूं या गलत रूप से पेश करूं?
0: देखो, झूठ तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सच कहना ही होगा।
1: तो सुनिए पिताजी, मैं ब्रिटिश फौज में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है। यदि हम नौजवान आधुनिक युद्ध कला सीख जाएं, तो हम भारत माता को आजाद कराने की दिशा में कुछ कर सकते हैं।
0: कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम मुट्ठी भर लोग क्या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकोगे?
1: पिताजी, यदि सभी ऐसा ही सोचने लगे तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? हाँ, इस तरह से भारत माता तो कभी आजाद हो ही नहीं पाएगी।
0: परिवार को दुख पहुंचाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगे?
1: दुखी भारत को सुखी करने के लिए परिवार का दुख बहुत छोटा है पिताजी। एक के अस्तित्व की सार्थकता अनेक हितों के लिए।
0: ठीक है, तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत ही कठिन है बेटा। एक पिता के नाते तुम्हारे लिए केवल मंगल कामना ही कर सकता।
1: पिताजी, कितने अच्छे हैं आप, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। शुक्रिया पिताजी, मेरे पिताजी, भारत माँ का ये सपूत।
0: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
2: तो ऐसी थी रासुदा के जीवन की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया। देहरादून में वन विभाग में शोध संस्थान में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि प्रयोगशाला में काम करते समय उन्हें ऐसे रसायन मिल जाएं जिससे बम बनाए जा सके। अब रासुदा का क्रांतिकारी रूप खुलकर सामने आने लगा।
1: दोस्त, मुझे प्रेरणा मिली है कि भारत के वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग्स को किसी तरह से मजा चखाया जाए।
3: दादा, बहुत ही जल्द वो दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं।
1: तो फिर देर किस बात की? मैं योजना बनाता हूँ, पर इसके लिए वसंत कुमार विश्वास की मदद लेनी होगी।
3: वसंत विश्वास? दादा, ये कौन है भला?
1: तुम नहीं जानते, मेरा खाना बनाने वाला मेरा नौकर। वो विश्वास वास्तव में बम बनाने और उसे चलाने की कला में निपुण है।
3: वाह, क्या बात है रासुदा, इधर रसोईया उधर बंदर माता। वाह। उसके बनाए भोजन की तारीफ तो देहरादून में कई लोग कर चुके हैं।
1: उस पर किसी तरह का शक ना हो
3: जी,
1: इसलिए उसे इस तरह से जानबूझकर पेश किया गया है। मैं उसे लाहौर भेज दूंगा जहाँ से वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर हमले की योजना पर काम करेगा। वहाँ अवध बिहारी, बालमुकुंद और दीनानाथ भी हैं।
3: मगर इसके लिए बम कहाँ से मिलेगा?
1: अभी तो मैं चंद्रनगर जाकर बम की व्यवस्था करता हूँ।
3: जी जी,
1: हमें हमला 23 दिसंबर 1912 को करना है
3: जी।
1: समय बहुत ही कम है, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ। कोई पूछे
3: जी
1: तो कह देना कि रसोईया भाग गया है, इसलिए उसे खोजने गया हूँ।
3: ठीक है दादा, ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। भारत माता की जय।

0: क्यों दोस्त
1: जी?
0: सारी तैयारियां पूरी हो गई, कोई चूक नहीं होना चाहिए।
1: कोई चूक नहीं होगी दादा, हमारी योजना पूरी तरह से पक्की है। नहीं बचेगा ये लॉर्ड हॉडिंग्स, और इसे पचना भी नहीं चाहिए।
0: वो देखो शाही जुलूस कितना लंबा है, हम उसके चांदनी चौक पहुंचने के इंतजार में।
1: हाथी पर उसकी सवारी कितनी बढ़िया लग रही है। देखो दादा, यहाँ भी पूरी शान शौकत के साथ है।
0: आज वसंत

0: अपना काम कर दिखाए तो समझो हमने फतह कर ली।
1: पर वो है कहाँ दादा?
0: अगर वो यहाँ होता भी तो आप उसे नहीं पहचान पाते बंधु।
1: अरे ऐसी क्या बात है उसमें?
0: वो देख रहे हो बैंक की इमारत को?
1: जी जी।
0: वहीं एक महिला के रूप में है वसंत विश्वास। अभी देखना वो अपना काम किस तरह से कर दिखाता है।
2: देखा क्रांतिकारियों का हौसला, अच्छा इस्तकबाल किया लाट का।
3: क्या हुआ कप्तान साहब? आप तो पुलिस वाले हैं, हमें बताएंगे कि हमारे साहब को क्या हुआ?
2: अरे लाट साहब को कुछ नहीं हुआ, बम उनके सामने बैठे जमादार पर गिरा है, वो तो मर गया, हमारे लाट साहब जख्मी हुए हैं भाई।
4: शुक्र है खुदा का हमारे लाट साहब बच गए। सचमुच क्रांतिकारियों की तो जात ही नहीं होती, वे सभी को पार डालते हैं।
3: लाट साहब बेहोश हो गए, वे घायल हैं। अरे बाकी सब लोगों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है।
2: भागो, भागो।

0: राजा वसंत, तुमसे चूक कैसे हो गई?
1: पता नहीं राजूदा, दरअसल मैं महिलाओं की पत्ती में पीछे बैठा था, इसलिए सही स्थान पर बम पहुंचने में चूक हो गई। मैंने पूरी तैयारी के साथ बम फेंका था। लगता है नाग की किस्मत अच्छी थी।
0: क्या किस्मत अच्छी थी? तुमने बम सिगरेट के पैकेट में रखा था ना?
1: हाँ राजूदा, पूरा काम योजना के अनुसार हुआ था, बस एक छोटी सी चूक हो गई। अब यही चूक बड़ा पछतावा बन गई है मेरे लिए।
0: नहीं नहीं वसंत भाई, नहीं, हम विफल जरूर हुए हैं, पर इससे हमने अपना इरादा बता दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: राजूदा, आप भी इस सेट के लिबास में ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच कोई मारवाड़ी सेट हो।
0: वो तो ठीक है, अब पूरे देश में खलबली मच जाएगी। चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों को खोजने के लिए जाल बिछाया जाएगा। इसलिए वसंत, बेहतर यही होगा कि मैं देहरादून निकल जाऊं, हाँ? तुम लाहौर निकल जाओ, साथियों की पूरी जानकारी देते रहना।
1: जी जी जी, ठीक है।
2: भले ही राजूदा की योजना विफल रही, पर इस बम कांड से अंग्रेज सरकार चिंता में पड़ गई। पूरे देश में तहलका मच गया।
3: देखा, क्रांतिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सरकार बौखला गई है। बम के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, बंगाल और लाहौर के बम एक ही तरह के थे।
4: पुलिस किस नतीजे पर पहुंची?
3: पुलिस का यह मानना है कि क्रांतिकारियों का कोई एक ऐसा गिरोह है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में समान रूप से सक्रिय है।
4: इधर लिबर्टी नाम का एक अखबार धूम मचा रहा है, उसके बारे में क्या जानते हो?
3: वो अखबार नहीं, पूरा आग का गोला है। आग का गोला, आग उगलता है, उसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं।
4: अच्छा, कौन निकालता है ये अखबार, आप जानते हैं उसे?
3: ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं, इनमें से कौन निकालता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि अखबार पूरे देश में मिलता है।
4: हाँ, शायद इसलिए पुलिस का ध्यान अब बम कांड से हटकर इस अखबार पर केंद्रित हो गया है। कई शहरों में इस संबंध में छापे मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: सचमुच में इस विद्रोही साहित्य में जो भी लिख रहा है उसकी कलम में धार है। मैं कायल हो गया हूं उसकी लेखनी का।
2: लिबर्टी अखबार के माध्यम से पूरे देश में आग फैलाकर राजूदा देहरादून से अपने गृह नगर चंद्रनगर में आ गए। उधर विद्रोही साहित्य और क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश पुलिस ने राजूदा के अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये राजूदा के लिए खतरे की घंटी थी। उनके नाम का वारंट निकल गया, इसलिए वे भूमिगत हो गए।
0: भूमिगत रहकर मैंने बगावत की पूरी योजना तैयार कर ली है। ये बिल्कुल 1857 जैसा ही होगा। अच्छा होगा कि बनारस जाकर योजना को और मजबूत बनाया जाए। अरे पुलिस का क्या है, उसका काम है मुझे खोजना, सो वो खोजती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा।
5: वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल।
6: सत श्री अकाल।
5: साथियों, आज है 31 दिसंबर 1914। आज हम सब लोग बगावत की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राजूदा ने बगावत की तारीख 21 फरवरी तय की है। इस बैठक में हमारे नए साथी विष्णु गणेश पिंगले के अलावा करतार सिंह सराबा, पंडित परमानंद, बलवंत सिंह, हरनाम सिंह, निधान सिंह, मूला सिंह जैसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं सबसे पहले करतार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें।
7: मैं चाहता हूं कि इस बगावत का नेतृत्व राजूदा ही करें।
8: इसका नेतृत्व राजूदा ही करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, समय आने पर वे आप सबके बीच ही होंगे और अपनी राय खुद तय कर देंगे। अब मूला सिंह जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
9: मैं तो कहता हूँ जी कि सचिंदर साहब तो यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग रासुदा के पीछे ही क्यों पड़े हैं? वे बनारस में रहकर भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
5: अब परमानंद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
10: हमें सचिंदर साहब से कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी रासुदा तो हमारे बीच आएंगे ही, हमें अपना काम करते हुए उनका इंतजार करना होगा।
8: रासुदा भी बनारस, पंजाब और कई सीमाओं पर बम के कारखाने लगाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना है।
2: आखिर वह घड़ी आ गई, बगावत की पूरी तैयारी हो गई। रासुदा ने यह ऐलान कर दिया कि जैसे ही म्यांमार की छावनी में विद्रोह भड़के, वैसे ही सभी छावनियों में एक साथ बगावत के इस युद्ध में कूद पड़ना है। कहां की पटरियां उखाड़नी है, कहां के टेलीग्राफ के तार कैसे काटे जाएं, पुलों को किस तरह से उखाड़ना है, यह सारे काम रासुदा ने बांट रखे थे। सभी को इंतजार था केवल 21 फरवरी का, किंतु अपनों के बीच से कोई न कोई गद्दार तो निकल ही आता है। इस बार गद्दार के रूप में सामने आया कृपाल सिंह, जिसने पुलिस को खबर दे दी बगावत की योजना विफल हो गई। उधर क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी, इधर रासुदा पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर होने लगे। सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया।

0: लाहौर से बनारस तो पहुंच गया, पर अब क्या दोस्त, पहले यहाँ के साथियों से मुलाकात कर सारी स्थिति की समीक्षा की जाए
1: जी।
0: उसके बाद जो तय होगा वही किया जाएगा।
1: दादा, हमारे साथियों की बैठक कब होनी है?
0: अरे भाई, जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था करें।
1: मैं सारे साथियों को इतला कर देता हूँ, वे सब शाम को उसी गुप्त स्थान पर जमा होंगे।
0: ठीक है, मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूँ।
1: जी जी।
0: साथियों, बगावत की विफलता के बाद हमें किसी नई योजना पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है?
1: अच्छा तो यही होगा रासुदा कि अब आप विदेश चले जाएं और वहां के लोगों को संगठित करें ताकि हमें हथियार मिल सके।
0: इस बारे में हमें हमारे बंगाल के साथियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। मैं बंगाल पहुंचकर आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा।
1: मेरा विश्वास है कि वे लोग आपको देश से बाहर जाने की सलाह देंगे।

0: कलकत्ता तो नहीं पर चंद्रनगर आ गया। आहा, अब सारी बातें यही तय हो जाए तो बेहतर होगा। यहां रहना है या सात समंदर पार?
1: ये तो आज की बैठक में तय हो ही जाएगा।
0: देख लेते हैं। तुम शाम को आ रहे हो ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप संभल कर रहेंगे।
0: ये मेरा गृह नगर है, फिर भी यहाँ के रास्तों से गुजरने पर मुझे डर लगता है कब कौन सी गोली सीने को पार कर जाए। बैठक में क्या तय होता है ये देखना है।
2: साथियों, आज इस बैठक में हमें यह तय करना है कि रासुदा को भारत में ही रहना है या फिर विदेश जाना है।
3: बगावत की विफलता के बाद हमें फौज से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी।
4: और ये हथियार हमें भारत से नहीं बल्कि विदेशी धरती से मिलेंगे।
2: इसीलिए मेरा सुझाव है कि रासुदा विदेशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करें।
0: आप लोगों का कहना सही है। दुनिया का कोई भी पराधीन देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना स्वतंत्र नहीं हुआ है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
3: सुनिए रासुदा, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ही दिनों में जापान जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
5: अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रासुदा ने धन की व्यवस्था की, फिर कलकत्ता पहुंचकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से जापान का टिकट खरीदा। 13 जून 1943 को रासुदा और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की इंपीरियल होटल में मिले। यह ऐतिहासिक भेंट थी, दोनों पूरे जोश के साथ मिले। यह भेंट 1 घंटे तक रही। इसके बाद 4 जुलाई 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब रासुदा ने सिंगापुर पहुंचकर कहते भवन के एक समारोह में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।
0: आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या उपहार लाया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उपहार में लाया हूं। आज किसी को भी नेताजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देकर नेताजी का नाम आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसके अलावा मैं तो अंतिम समय तक देश की सेवा में लगा रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।
6: लगातार संघर्ष ने रासुदा को कमजोर कर दिया। नवंबर 1944 को नेताजी रासुदा को देखने पहुंचे थे। ये दो महान नेताओं का अंतिम मिलन था। इस बीच रासुदा की पत्नी तोशिको बोस और पुत्र माशोहोदे का निधन हो गया। करीब करीब टूट चुके रासुदा को जनवरी 1945 को टोक्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कार्यों को देखते हुए बीमारी की ही अवस्था में जापानी सम्राट ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। 21 जनवरी को उनका देहांत हो गया। 25 मई 1886 को जो जीवन दीप जला था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। रास बिहारी बोस को शत शत नमन, शत शत नमन।
7: तो समझे बेटा, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस।
1: सचमुच काका, बड़े महान क्रांतिकारी थे वे लोग। ऐसे भारत माँ के सपूतों को शत शत प्रणाम।
8: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्य को योगदान अविस्मरणीय है। सुमित्रा नंदन पंत जी ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतर था।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि पंत जी अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रह करके प्रकृति से जुड़े हुए साहित्य लिखते थे।
0: जन्म के महज 6 घंटे के भीतर ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी माँ को खो दिया। पंत जी लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत जी ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर भी रचनाएं लिखी।
1: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ का नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके सुमित्रा नंदन जी रचनाओं में समाज के अलग अलग पहलुओं के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था उनकी रचनाओं में।
0: आधी सदी से भी अधिक लंबे उनके रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। चलिए हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में विस्तार से बताते हैं।
1: चलिए श्रोताओं, सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया। पंत जी को उनकी दादी ने पाला था। पंत जी का बचपन में नाम था गोसाई दत्त और बाद में उन्होंने अपना नाम बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल में ही हुई। फिर वो वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही सन 1921 में असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए।
1: श्रोताओं, पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता। स्लेटी छतों वाली पहाड़ी, घर, आंगन के सामने आड़ू, खुबानी के पेड़, पक्षियों की चहचहाट, सकरी पगडंडियां, बाज, बुराश और चीड़ के पेड़ों के बयार और नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी और उसके ऊपर हिमालय के ऊंचे शिखरों और दादी से सुनी कहानियां और शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने पंत जी को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। जन्म के 6-7 घंटे के अंदर ही चल बसी थी, इसलिए प्रकृति की गोद सुंदरता ही उनकी मां बन गई। श्रोताओं, प्रकृति की इसी ममतामयी छाव में बालक पंत जी धीरे धीरे यहां के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज में उकेरने लगे। पिता गंगा दत्त उस समय कौसानी चाय बागान में मैनेजर थे। उनके भाई संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी और कुमाऊनी में कविताएं भी लिखा करते थे। और कभी कभी जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर आवाज में कविताएं सुनाया करते थे तो नन्हे से पंत जी दरवाजे की ओट में चुपचाप सुनते रहते और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने की कोशिश करते थे।
0: पंत जी की प्राइमरी तक की शिक्षा कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई। 11 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया गया। कौसानी के सौंदर्य और एकांतता के अभाव की पूर्ति अब नगरीय सुख वैभव से होने लगी। अल्मोड़ा की खास संस्कृति और वहां के समाज ने पंत जी को भीतर तक प्रभावित कर दिया था। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर पंत जी ने भी अपने लंबे और घुंघराले बाल रख लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब आपको परिचय कराते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के साहित्य से जुड़े हुए उनके प्रयासों से। अल्मोड़ा में कई साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती थीं, जिनमें पंत जी अक्सर भाग लेते रहते थे। स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता था और इस पुस्तकालय से पंत जी को उच्च कोटि के विद्वानों का साहित्य पढ़ने को मिलता था। कौसानी में साहित्य के प्रति पंत जी में जो लगाव पैदा हुआ, वह अल्मोड़ा के साहित्यिक वातावरण में भी अंकुरित होने लगा।
0: कविता का प्रयोग वो सगे संबंधियों को पत्र लिखने में करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धनलोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं जैसी कुछ कविताएं लिखी। आठवीं कक्षा के दौरान उनका परिचय प्रसिद्ध नाटककार गोविंद वल्लभ पंत जी, श्यामचरण दत्त पंत जी, इलाचंद्र जोशी जी और हेमचंद्र जोशी जी से हो गया था।
1: और श्रोताओं, अल्मोड़ा से तब हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर और अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था, जिसमें वे कविताएं लिखते रहते थे। अल्मोड़ा में पंत जी के घर के ठीक ऊपर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज उन्हें साहित्यिक सम्मोहित करती थी। अक्सर हर रविवार को वे इस पर एक कविता लिखते थे, गिरजे का घंटा शीर्षक से। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर, कुछ कहता रहता बज बज कर।
0: दुबले पतले और सुंदर काया के कारण पंत जी को स्कूल के नाटकों में अधिकतर स्त्री पात्रों का अभिनय करने को मिलता। सन 1916 में जब वो जाड़ों की छुट्टियों में कौसानी गए तो उन्होंने हार शीर्षक से 200 पृष्ठों का एक खिलौना नाम से उपन्यास लिख डाला, जिसमें उनके किशोर मन की कल्पना के नायक नायिकाओं और अन्य पात्रों की मौजूदगी थी। कवि पंत जी का किशोर जीवन कौसानी और अल्मोड़ा में ही बीता था। इन दोनों जगहों का वर्णन भी उनकी कविताओं में मिलता है।
1: श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि सुमित्रा नंदन पंत जी केवल साहित्य लिखने में ही रुचि रखते थे, उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान था। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, पर देश के स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति उनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय और अधिक केंद्रित हो गया। और श्रोताओं, इन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कला कंकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट आने का अवसर मिला और इस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे तो उन्हें शब्द देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी जो 1938 में प्रकाशित हुई थी और ग्राम्या जो 1940 में प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने व्यक्त किया। यहां से उनका काव्य और युग का जीवन संघर्ष नई चेतना का दर्पण बन जाता है। स्वर्ण किरण और उसके बाद की रचनाओं में पंत जी ने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य की वाणी ना देकर के व्यापक मानवीय संस्कृति तत्वों को अभिव्यक्ति दी, जिसमें अन्न प्राण मन आत्मा मानव जीवन के सभी स्वरों की चेतना को संयोजित करने की कोशिश की गई।
0: आइए श्रोताओं, अब सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। पंत जी हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकृति के एकमात्र माने जाने वाले सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी बचपन से ही काव्य प्रतिभा के धनी थे और 16 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता रची गिरजे का घंटा। तब से वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। कवि या कलाकार कहां से प्रेरणा ग्रहण करता है, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी ने कहा था, संभवतः प्रेरणा के स्रोत भीतर न होकर अधिकतर बाहर ही रहते हैं।
1: श्रोताओं, अपनी काव्य यात्रा में पंत जी हमेशा सौंदर्य को खोजते नजर आते हैं। शब्द, शिल्प, भाव और भाषा के द्वारा कवि पंत जी प्रकृति और प्रेम को एक साथ जोड़ करके खूबसूरत काव्यों की रचना करते हैं। उनकी रचनाओं में छायावाद और रहस्यवाद का समावेश भी है।
0: उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता का संपूर्ण भावपट कवि की सौंदर्य चेतना का काल है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित किया था। ऐसा लगता है जैसे माँ की ममता की कमी उनके जीवन में प्रकृति ने ही पूरी की। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के पर्वतीय अंचल की गोद में वो पले बड़े। पंत जी खुद ये मानते हैं कि उस मनोरम वातावरण का उनके व्यक्तित्व पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था।
1: पंत जी को जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माँ को खोना पड़ा। नियति ने ही निज कुटिल कर से सुखद गोद मेरे लाड़ की थी छीन ली। बाल्य ही में हो गई थी लुप्त, हां मात्र आंचल की अभय छाया मुझे, मात्र आंचल की अभय छाया मुझे। श्रोताओं, मां की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती। प्रकृति मां की गोद का उन्हें सहारा मिला तो मानो उनके लाड़ से अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लेना चाहते थे वो। मातृहीन मन में एकांकी सजल बाल्य था स्थिति से अवगत, स्नेहांचल से रहित आत्म स्थित धात्री पोषित नम्र भाव रत।
0: हालांकि पंत जी ने गद्य की भी कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, लेकिन मुख्य रूप से वे कविता के प्रति ही समर्पित रहे। सन 1918 से 1920 तक की उनकी अधिकांश रचनाएं वीणा में छपी। अपनी आरंभिक रचनाओं वीणा और ग्रंथी से पंत जी ने काव्य प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा जरूर, पर एक छायावादी कवि के रूप में इनको प्रतिष्ठा पल्लव से ही मिली। पल्लव की अधिकांश रचनाएं उन्होंने कॉलेज के जीवन में लिखी। प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति पल्लव में देखी जाती है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, प्रकृति के माध्यम से मानव के उन्नत भविष्य की कामना करते हुए पंत जी लिखते हैं। धरती का आंगन इठलाता, शस्य श्याम भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का आंचल वैभवशाली, इस आंचल से चीर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, अंतरंग मानव का नाता।
0: गुंजन, विशेषकर युगांत में आकर पंत जी की काव्य यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। गुंजन, काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत जी का विश्वास पक्का हो जाता है। सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम रे, सुंदर सुंदर जग जीवन, सुंदर सुंदर जग जीवन।
1: श्रोताओं, पंत जी की काव्य यात्रा का दूसरा चरण युगांत, युगवाणी और ग्राम्या को माना जा सकता है। नवीन जीवन और युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश युगांत में सामने आई है। युगांत की अधिकांश कविताएं कवि की तीखी भाषा चेतना के बदलाव का संकेत देती हैं।
0: द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, इसमें जहां ओजपूर्ण आवेश है वहीं गा कोकिल में नवीन जीवन पल्लवों से सौंदर्य मंडित करने का भी आग्रह है। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, व्यक्ति राष्ट्रगत राग द्वेष रण, झरे मरे विस्मृत में तत्क्षण, गा कोकिल गा मत कर चिंतन।
1: श्रोताओं, ग्राम्या प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव के अंतर्गत लिखी हुई रचना है। इसमें मार्क्सवादी श्रमिक मजदूर किसान जनता के प्रति पंत जी ने भावभीनी सहानुभूति प्रकट की है। जगती के जनपथ कानन में तुम गाओ विहंग अनादि गान, चीर शून्य शिशिर पीड़ित जग में निज अमर स्वरों से भरो प्राण, निज अमर स्वरों से भरो प्राण, निज अमर स्वरों से भरो प्राण।
0: श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के तीसरे चरण की रचनाओं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, अतिमा अंतरा में महर्षि अरविंद से प्रभावित होकर आध्यात्मिक समन्वयवाद की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। सामाजिक जीवन से कहीं महत अंतर मन, वृहत विश्व इतिहास, चेतना गीता किंतु चिरंतन।
1: चलिए श्रोताओं, अब पंत जी की काव्य का चौथा चरण कला और बूढ़ा पर बात करते हैं। पंत जी की काव्य यात्रा का चौथा चरण कला और बूढ़ा जान से लेकर के लोकायतन तक की है। इसमें उनकी चेतना मानवतावाद खास करके विश्व मानवता से जुड़ी हुई है। इन रचनाओं में लोक मंगल के लिए पंत जी व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य के महत्व को बताते हैं।
0: हमें विश्व संस्कृति रे भू पर करनी आज प्रतिष्ठित, मनुष्यत्व के नव द्रव्यों से मानस उर कर निर्मित, मानस उर कर निर्मित। तो श्रोताओं, ये थे पंत जी की काव्य यात्रा के चार चरण। पंत जी संघर्षों के एक लंबे दौर से गुजरे, जिसके दौरान स्वयं को काव्य और साहित्य की साधना में लगाने के लिए उन्होंने अपनी आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बहुत पहले ही उन्होंने ये समझ लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य और कार्य यदि कोई है तो वो काव्य रचना ही है। सन 1955 से 1962 तक वो आकाशवाणी से जुड़े रहे और चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया, और इसके बाद साहित्य सलाहकार के रूप में वो कार्यरत रहे।
1: श्रोताओं, छायावाद को मुख्यतः प्रेरणा का काव्य मानने वाले इस कोमल प्राण कवि ने हार नामक उपन्यास के लेखन से अपनी रचना यात्रा आरंभ की थी, जो मुक्ताब तक जारी है। कवि रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा ये प्रथम कोटि के आलोचक, विचारक और गद्यकार भी थे। अपनी काव्य यात्रा में पंत जी सदा सौंदर्य को खोजते नजर आते हैं। शब्द, शिल्प, भाव और भाषा के द्वारा पंत जी ने प्रकृति की सुंदरता को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया है। उनकी रचनाओं में छायावाद, रहस्यवाद दोनों का मेल मिलता है, और साथ ही साथ शैली, कीट्स, टेनिसन जैसे अंग्रेज कवियों का प्रभाव भी उनमें मिलता है।
0: पंत जी के भाव पक्ष का एक प्रमुख तत्व उनका मनोहारी प्रकृति चित्रण है। प्रकृति के प्रति उनका सहज आकर्षण उनकी रचनाओं के बहुत बड़े भाग को प्रभावित किए हुए है। परंतु सौंदर्य और उल्लास के कवि पंत जी को जीवन का निराशामय पक्ष भी सहना पड़ा, और इसकी प्रतिक्रिया परिवर्तन नामक रचना में मिलती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण।
1: श्रोता, पंत जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टि को भी सम्मानित स्थान प्राप्त है। वह मानवीय प्रतिष्ठा और मानव जाति के भावी विकास में दृढ़ विश्वास रखते हैं। सुंदर है विहग सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम, वह चाहते हैं कि देश जाति वर्गों में विभाजित, मनुष्य की केवल एक ही पहचान हो, मानव मानव मानव।
0: श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत जी को सन 1961 में पद्मभूषण और सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और चिदंबरा के लिए पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: श्रोताओं, पंत जी की मुख्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं उनकी, जो कविता संग्रह है वीणा 1927 में, ग्रंथि 1919 में आई, उच्चवास 1920 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायन, सत्यकाम, मुक्तियज्ञ, तारापथ, मानसी, रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, अतिमा, वाणी, रश्मिबंध, समाधिता, किरणवीना, गीतहंस, गंधविथि, पतझड़, अवगुंठित, ज्योत्सना और मेघनाथ वध। और श्रोताओं, उनके उपन्यास हैं हार, जो 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लिख डाला था, और निबंध संग्रह में आधुनिक कवि और रेडियो रूपक ज्योत्सना।
0: कौसानी के चाय बागान के व्यवस्थापक के परिवार में जन्मे महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तराखंड राज्य के कौसानी में महाकवि की जन्मस्थली को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर उनके नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बनाया गया है, जिसकी देखरेख एक स्थानीय व्यक्ति करता है। इस स्थल के प्रवेश द्वार से लगे भवन की छत पर महाकवि जी की मूर्ति स्थापित है।
1: श्रोताओं, वर्ष 1990 में स्थापित इस मूर्ति का अनावरण वायव्रत साहित्यकार पंडित नित्यानंद मिश्रा द्वारा उनके जन्म दिवस 20 मई को किया गया था। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का पैतृक गांव यहां से कुछ ही दूरी पर है। संग्रहालय में महाकवि द्वारा उपयोग की गई दैनिक वस्तुएं, शॉल, दीपक, पुस्तकों की अलमारी और महाकवि को समर्पित कुछ सम्मान पत्र, पुस्तकें और हस्तलिपि सुरक्षित हैं।
0: आकर्षक और कोमल व्यक्तित्व के धनी कविवर सुमित्रानंदन पंत जी जिस तरह से अपने जीवन काल में सभी के लिए प्रिय थे, उसी प्रकार से आज भी वो आकर्षण का केंद्र हैं। प्रकृति का बदलता हुआ रूप सदा ही पंत जी में नित नवीन कौतूहल पैदा करता रहा। उन्होंने सब कुछ प्रकृति में और सब में प्रकृति के दर्शन किए। आइए अब अंत में गंगा की कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। अब आधा जल निश्चल पीला, आधा जल चंचल और नीला, गीले तन पर मृदु संध्या तप, सीमत रेशम पट सा ढीला, ऐसे सोने के सांझ प्रात, ऐसे चांदी के दिवस रात, ले जाती बहा कहां गंगा, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात।
1: तो श्रोताओं, ये था महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बेरेनिका, वह रेगिस्तानी एम्पोरियम जहां रोमन सिक्कों का मिलन भारतीय रेशम से हुआ, मिस्र के तपते पूर्वी रेगिस्तान में जहां लाल रेत और लाल सागर का गहरा नीला पानी मिलते हैं, कभी एक ऐसा शहर बसा था जिसने अपने उजाड़ परिवेश को चुनौती दी थी। यह था बेरेनिका, एक ऐसी जगह जहां रोम का वैभव पूर्व के रहस्यों से मिलता था। 275 ईसा पूर्व में टॉलेमी द्वितीय द्वारा स्थापित और उनकी मां के नाम पर रखा गया ये शहर विलासिता के केंद्र के रूप में नहीं बल्कि एक सैन्य चौकी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे अफ्रीकी युद्ध हाथियों को मिस्र लाने के लिए बनाया गया था। 30 ईसा पूर्व में मिस्र पर रोमन विजय के बाद यह दूरस्थ बंदरगाह प्राचीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय एम्पोरियम में से एक में बदल गया। इस शहर के अविश्वसनीय उत्थान की कुंजी यूनानी हिप्पुल्स जैसे नाविकों द्वारा मानसून की हवाओं की खोज में छिपी थी, जिसने जहाजों को तट के किनारे रेंगने के बजाय सीधे खुले अरब सागर के पार जाने की अनुमति दी। पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बंदरगाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। घाट उन विशाल जहाजों के आगमन से हलचल में रहे होंगे जो भारत के मसालों से समृद्ध बंदरगाहों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की सवारी करके अभी अभी पहुंचे थे। रोमन व्यापारी जिनकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं, लोबान और लोहबान की महक से भरी हवाओं के बीच घूमते थे। यहां रोमन अभिजात वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित विलासिता चीन से आने वाला चमकता रेशम उस शाही मुद्रा के बदले खरीदा जाता था जिसने साम्राज्य की वैश्विक पहुंच को ईंधन दिया था। बेरेनिका के अब छोड़े जा चुके स्थल पर मिले खजानों की विविधता अभूतपूर्व जुड़ाव की कहानी बयान करती है। पुरातत्वेदों ने भारत से बड़ी मात्रा में आई सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसे संभवतः समुद्र पार करने वाले जहाजों से दोबारा उपयोग के लिए निकाला गया था। इसके साथ ही सुदूर पूर्वी जावा के कांच के मनके भी मिले हैं। उन्हें ऐसे एम्फोरा यानी मिट्टी के पात्र मिले जिनमें कभी भूमध्य सागरीय शराब और जैतून का तेल लाया गया था, जो विदेशी व्यापारियों और बस्तियों की मेजों के लिए नियत थे। शायद सबसे जीवंत खोज 16 पाउंड भारतीय काली मिर्च से भरा एक जार था, एक ऐसा पुरातात्विक खजाना जो प्राचीन मसाला व्यापार के पैमाने को रेखांकित करता है। लेकिन बेरेनिका केवल माल ढोने की जगह से कहीं अधिक थी, यह एक जीवंत बहुजातीय संस्कृतियों का संगम था। इसकी रेगिस्तानी सड़कों पर चलते हुए कोई भी विभिन्न भाषाओं का एक संगीत सुन सकता था। स्थानीय पत्थरों पर खुदे हुए भित्ति लेख आम आदमी के साहित्य को दर्शाते हैं, जिसमें दक्षिण अरबियों, सीरियाई रेगिस्तान के पलमायरेन, इथियोपिया के ऊंचे इलाकों के एक्सुमाइटस और भारत के दक्षिणी छोर के तमिल भाषी लोगों की उपस्थिति का पता चलता है। इस विविधता के बीच देवी एफ्रोडाइट की मूर्तियां एक परिचित ग्रीको रोमन सुकून के रूप में खड़ी थीं, एक ऐसे शहर में जहां दुनिया की संस्कृतियों का मिलन होता था। इस रेगिस्तानी एम्पोरियम ने साबित कर दिया कि प्राचीन दुनिया इतिहास की किताबों के सुझावों की तुलना में कहीं अधिक वैश्विक थी। बेरेनिका वह अनिवार्य प्रवेश द्वार था जहां लाल सागर एक विशाल बहुकेंद्रित ऐतिहासिक इकाई में खुलता था जो पूर्व में हजारों मील तक फैली हुई थी। यह उस समय का प्रमाण है जब मिस्र की रेत का एक सुदूर टुकड़ा एक परस्पर जुड़ी दुनिया की धड़कन के रूप में कार्य करता था। जो मौसमी हवाओं और विनिमय की साझा मानवीय इच्छा से एकजुट था।
2: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: दार्जिलिंग और अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने पर स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इधर मुर्शिदाबाद के अकाल पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए अखंडानंद जी की अथक कोशिश का समाचार पाकर स्वामी जी ने बड़े हर्ष पूर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानंद व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद जी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामी जी अल्मोड़ा से प्रोत्साहन देकर पत्र लिखने लगे, यहाँ तक कि वे खुद वहाँ जाने के लिए अधीर उठे, परंतु चिकित्सक गण तथा उनके शिष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके।
1: इसी समय एक घटना घटी। मुर्शिदाबाद में राहत कार्य के लिए धन की कमी हो गई। कलकत्ते की महाबोधि सोसाइटी ने उस कार्य के लिए किंचित धन 150 रुपए दिया, पर बाद में उन लोगों ने दावा किया कि ये कार्य सोसाइटी के नाम पर परिचालित हो। इस विषय में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद हुआ और स्वामी जी को इसकी सूचना दी गई। तब इसके समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिख भेजा,
2: हुजूर, लोगों के नाम की ज्वाला में क्या गरीब जन सूख कर मरते रहेंगे। सारा नाम महाबोधि लेना चाहती है तो लेने दो, गरीबों का उपकार होने दो। कार्य भली भांति चल रहा है, उत्तम बात है।
0: इसे आखिरकार महाबोधि के नाम पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी रामकृष्णानंद तथा दक्षिण भारत के कुछ भक्तों ने पर्याप्त धन एकत्र करके भेज दिया। अन्य स्थानों से भी पैसे आ गए, अतः रामकृष्ण मिशन के नाम से ही कार्य परिचालित हुआ।
1: कलकत्ता रामकृष्ण मिशन का कार्य भली भांति चल रहा था। स्वामी रामकृष्णानंद जी भी मद्रास में प्रचार कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर रहे थे। स्वामी अभेदानंद जी और शारदानंद जी का इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य भली भांति चल रहा था। ये सब समाचार पाकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारंभ करने के लिए व्यग्र हो उठे।
0: क्रमशः उनका अल्मोड़ा से विदा होने का दिन निकट आ पहुंचा। उनकी विदाई का समय आसन्न जानकर स्थानीय नागरिकों ने उनका व्याख्यान सुनने का आग्रह किया। इधर अल्मोड़ा में रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इंग्लिश क्लब में उन्हें व्याख्यान देने का अनुरोध किया, परंतु छोटे से क्लब भवन में 100 से भी अधिक श्रोताओं के लिए स्थान बना पाना असंभव जानकर ऐसा ठीक हुआ कि सामान्य जनता के लिए स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगण में एक हिंदी तथा दो अंग्रेजी में भाषण हो और क्लब में एक अलग व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो।
1: हिंदी का व्याख्यान सुनने के लिए नगर के अनेक गणमान्य और सुशिक्षित लोग उपस्थित हुए थे। स्वामी जी को हिंदी में भाषण देने का अभ्यास नहीं था और ऐसी शंका भी उठी थी कि सामान्यतः वे जिन गंभीर विषयों पर आवेगपूर्ण पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान दिया करते थे, हिंदी भाषा के माध्यम से भी क्या ऐसा करना संभव हो सकेगा। परंतु स्वामी जी ने मंथर गति से व्याख्यान देना आरंभ किया और शीघ्र ही विषय के गुरुत्व के आकर्षण से भाषा के अक्षमता के ऊपर उठ गए और अपनी सुललित ओजस्विनी शैली में सहज ही बोलते गए।
0: ये व्याख्यान 27 जुलाई को हुआ और विषय था वैदिक उपदेश, तात्विक और व्यवहारिक। जिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि स्वामी जी शायद इस नवीन परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगे, उन्होंने भी उनका ये प्रांजल तथा धारा प्रवाह भाषण सुनकर ये स्वीकार किया कि शक्तिमान पुरुष असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के मन में संदेह था कि हिंदी भाषा गंभीर विषयों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं है, उनका संदेह भी दूर हुआ। इतना ही नहीं, किसी किसी ने तो ऐसा भी कहा था, उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा में भी ऐसी शक्ति है जिनके आधार पर इस भाषा की और उन्नति करके उसे ओजपूर्ण व्याख्यान देने के उपयुक्त बनाया जा सकता है।
1: 28 जुलाई को इंग्लिश क्लब में होने वाले व्याख्यान में वहाँ के समस्त अंग्रेज उपस्थित थे। गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल पुली ने सभापति का आसन अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हैमिल्टन, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर क्रेसी, उनकी पत्नी, कर्नल हैरिसन की पत्नी श्री और श्रीमती हिर्षा, श्री और श्रीमती लार्किन, श्री और श्रीमती मैकफर्सन, मिस्टर स्प्राई, लाला बद्री शाह, चिरंजी लाल शाह, ज्वाला दत्त जोशी तथा स्वामी जी के अन्य अनेक मित्र एवं अल्मोड़ा के प्रमुख नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे।
0: इस व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न जनजातियों में अपने अपने कबीले के देवता की उपासना का प्रचलन हुआ, उन देवताओं की पूजा से आरंभ कर वे लोग कैसे वेदों की उपासना तक जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप और शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर वे आत्म तत्व पर विचार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पाश्चात्य प्रणाली किस प्रकार ब्रह्म जगत से जीवन के समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढती है, जबकि प्राच्य के लोग ब्रह्म जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न पाकर अंतर जगत में उनकी खोज करते हैं।
1: उन्होंने कहा कि हम ही यानी भारत ही इस अंतर जगत की खोज प्रणाली की आविष्कारक है। यही इस जाति की विशेष संपत्ति है और एकमात्र इसी प्रणाली की सहायता से धर्म और आध्यात्मिकता का हमने आविष्कार कर उसे समग्र जगत को सौंप दिया है। और भी अग्रसर होकर स्वामी जी आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध और स्वरूपतः दोनों का एकत्व समझाने लगे। कुमारी हेनरिएटा मूलर उक्त सभा में उपस्थित थीं। उन्होंने बताया था,
3: तब थोड़ी देर खेले ऐसा बोध हुआ मानव भाषण करता उनकी वाणी श्रोता खान एवं उनमें व्याप भाव राशि सब मिलकर

0: छेटनाशा तकाही अफसेट रह गया, जिसमें वक्ता वाक्य श्रोता मिलकर एक हो गए।
1: तीसरा व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ, जिसमें लगभग 400 शिक्षित लोग उपस्थित थे और सभी लोग स्वामी जी के भाषण पर मुग्ध हो गए। दार्जिलिंग तथा अल्मोड़ा में वहां के जलवायु के स्वाभाविक गुण, मित्रों की देखभाल और विश्राम के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। संभव है और भी विश्राम करने से उसका कुछ स्थायी फल होता, परंतु जिन स्वामी जी ने लोक कल्याण को अपना प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य बना लिया था, उनके लिए लंबे समय तक चुप बैठना संभव न था। अल्मोड़ा से नीचे उतरने के काफी काल पूर्व ही उन्होंने 14 जून के पत्र में स्वामी अखंडानंद को लिखा था,
2: मैं शीघ्र ही पहाड़ से समतल पर उतर रहा हूं। मैं वीर हूं, रण क्षेत्र में ही मरूंगा। यहाँ पर्दा नशीन औरत के समान बैठे रहना क्या मुझे शोभा देता है?
3: वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं था। हमने देखा है कि इस काल में भी वे नव प्रतिष्ठित केंद्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते थे। इन दिनों कौन कौन से कार्य चल रहे थे, इसका आभास देते हुए उन्होंने 23 जुलाई को मिस नोबल भगिनी निवेदिता को सूचित किया था,
2: कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय अकाल निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। कई केंद्र स्थापित हो गए हैं और अकाल सेवा, प्रचार तथा सामान्य शिक्षा का काम चल रहा है। कार्य यद्यपि अभी तक छोटे स्वरूप में ही चल रहा है, तथापि जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है उन्हें आवश्यकतानुसार काम में लगाया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्य क्षेत्र हैं। एक जन को कोलंबो भी भेजा गया है।
1: उसी पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था,
2: कुछ दिनों बाद ही मैं नीचे मैदानों की ओर जा रहा हूँ और वहां से इसी पर्वत के पश्चिमी खंड की ओर जाऊंगा। जब मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंडक पड़ने लगेगी तब मैं देश भर में व्याख्यान देते हुए दौरा करूंगा, देखूंगा कि कितना काम किया जा सकता है।
1: स्वयं प्रचार कार्य में व्यस्त रहकर भी वे चाहते थे कि साथ में संगठन का कार्य भी चलता रहे, इसलिए 30 जुलाई को अल्मोड़ा से उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को लिखा था कि वे अनाथ बालकों की सेवा में लग जाएं। इसी पत्र में उन्होंने ये भी सूचित किया था कि आगामी सोमवार 2 अगस्त को वे अल्मोड़ा से चल पड़ेंगे।
2: यहाँ पर साहबों के बीच मैंने अंग्रेजी में एक भाषण तथा स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में मेरा ये प्रथम व्याख्यान था, परंतु सबको बड़ा अच्छा लगा। आगामी शनिवार 31 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए एक और भाषण अंग्रेजी में होगा। यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है। भविष्य में कितना कार्य होता है ये देखना है। सभा का उद्देश्य है विद्या तथा धर्म की शिक्षा देना। सोमवार को बरेली के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद सहारनपुर, फिर अंबाला, वहां से संभवतः कैप्टन सेवियर के साथ मसूरी जाऊंगा। तदोपरांत थोड़ी ठंड पड़ते ही वापस लौटकर राजपूताना आदि स्थानों को जाना है।
3: देवलधारा और अल्मोड़ा से विदा लेने के पूर्व और भी दो एक घटनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी द्वारा स्वयं कथित एक प्रेत अथवा दैवी घटना का विवरण देते हैं। इसका स्थान काल ज्ञात न होने पर भी ये अनुमान है कि ये घटना देवलधारा के ही निकट कहीं घटित हुई है। घटना यूं है, स्वामी जी एक बार हिमालय में भ्रमण करते हुए रात बिताने को एक गांव में ठहरे हुए थे। संध्या के बाद खूब ढोल बजने की आवाज सुनकर गृह स्वामी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव के किसी आदमी पर देवता चढ़ा है।
1: कौतूहलवश वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लाल करने के बाद उसे उस व्यक्ति के अंगों से लगा रहे हैं तथा उसके बालों से भी छुआ रहे हैं, परंतु उसका कोई अंग या बाल जलता न था और न ही चेहरे से किसी पीड़ा का भाव व्यक्त होता था। उसी समय गांव का मुखिया स्वामी जी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए। सबके अनुरोध पर स्वामी जी को उस प्रेताविष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ा। जाते ही उनके मन में उस कुल्हाड़ी की जांच करने की इच्छा हुई। कुल्हाड़ी उस समय तक काली हो चुकी थी, तो भी छूते ही उनका हाथ झुलस गया और असहाय पीड़ा होने लगी। इस पर उनकी तर्क युक्ति सब लुप्त हो गई। उस पीड़ा के साथ ही उन्होंने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखकर थोड़ी देर जाप किया।
3: आश्चर्य की बात है कि इसके 10-12 मिनट के भीतर ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वहां उपस्थित सभी लोगों का मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गया। परंतु स्वामी जी स्वयं इस घटना की मीमांसा नहीं कर सके। वे अपने गृह स्वामी के साथ वापस लौटे और रात के 12 बजे बिस्तर पर लेट गए। परंतु हाथ की जलन और इस अद्भुत घटना की कोई व्याख्या न सोच पाने के कारण उन्हें उस रात नींद नहीं आई।
1: अल्मोड़ा की एक अन्य प्रमुख घटना थी सुप्रसिद्ध देशभक्त नेता श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त के साथ उनकी भेंट। काफी काल पूर्व एक बार श्री रामकृष्ण के आदेश पर अश्विनी बाबू श्री रामचंद्र दत्त के घर पर ठाकुर के समक्ष ही नरेंद्रनाथ से बातें की थी, परंतु उस दिन नरेंद्र के सिर में दर्द होने के कारण ज्यादा बातचीत न हो सकी थी। इस पर अश्विनी बाबू ने कहा था, रहने दीजिए, फिर किसी दिन बात होगी। श्री ठाकुर की इच्छा थी कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जुड़े और वो पूरी हुई 12 वर्ष बाद 1897 ईस्वी के मई या जून अल्मोड़ा में। अश्विनी बाबू ने लिखा है,
4: श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होनी थी, इसलिए 12 साल बाद वो पूरी हुई। स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वो दिन कैसे आनंद से कटे थे, कभी उनके यहां, कभी मेरे यहां, और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।
1: अश्विनी बाबू उन दिनों अल्मोड़ा में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि स्वामी जी भी वही निवास कर रहे हैं, परंतु उनका पता किसी को ज्ञात न था। अश्विनी बाबू के रसोइये ने एक दिन बताया कि नगर में एक अद्भुत साधु आए हुए हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और घुड़सवारी करते हैं, अतः वे उनकी खोज में बाहर निकल पड़े। वे मकान के पास पहुंचकर भी समझ नहीं सके कि स्वामी जी ठीक किस मकान में रहते हैं, और लोगों से पूछने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में बंगाली साधु के बारे में पूछने पर एक राहगीर ने बताया, तो आप घुड़सवार साधु के बारे में पूछ रहे हैं, वो देखिए वे घोड़े पर चले आ रहे हैं, उधर के मकान में रहते हैं। अश्विनी बाबू ने दूर से ही देखा कि गैरिकधारी सन्यासी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अंग्रेज द्वार खोलकर बाहर आए और घोड़े की नकेल पकड़कर भीतर चले गए। इसके बाद स्वामी जी घोड़े की पीठ पर से उतरे।
3: थोड़ी देर बाद अश्विनी बाबू ने वहां पहुंचकर एक युवा साधु से पूछा,
4: नरेंद्र दत्त है क्या, उनसे मिलना है।
5: नहीं, यहाँ नरेंद्रनाथ नाम का कोई नहीं रहता।
6: हाँ हाँ, आइए, मैं यहाँ हूँ।
4: नमस्कार, आपको शायद याद नहीं, श्री राम कृष्ण देव के आदेश पर मैं आपसे कलकत्ते में मिलने गया था, पर बात नहीं हो पाई थी आपसे।
6: आओ, आओ, आओ, पहले गले तो मिलो, मुझे सब याद है। उस दिन मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाया था।
4: स्वामी जी, इतनी सालों पुरानी बात।
6: ये क्या, आपके लिए मैं स्वामी जी कब से हो गया, मैं तो अब भी वही नरेन हूँ। ठाकुर मुझे जिस नाम से पुकारते थे वही मेरे लिए परम संपदा है, आप भी मुझे उसी नाम से पुकारिए।
1: उस मुलाकात के बाद दोनों में कई विषयों पर बातचीत हुई, धर्म, वेदांत, राजनीति, समाज, सभी विषयों पर दोनों ने चर्चा की।
4: आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके लाखों लोगों के प्राणों में आध्यात्मिक चेतना जगाई है, क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत की मुक्ति कैसे होगी?
6: आपने ठाकुर से जो कुछ सुना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार सर्वस्व है, और सभी प्रकार के सुधारों को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें धर्म के माध्यम से ही लाना होगा। इसके विपरीत कुछ करने का प्रयास मानो गंगा को गोमुख की दिशा में पुनः धक्का देकर एक नवीन मार्ग से प्रवाहित करने के समान अव्यवहारिक होगा।
4: परंतु दूसरे राजनैतिक दल जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी आस्था नहीं है?
6: नहीं, मेरी आस्था नहीं है, पर हाँ, बिल्कुल नहीं से थोड़ा अच्छा है। फिर सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए उसे हर तरफ से धक्के देना अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक आम जनता के लिए क्या किया है? आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि मात्र 2-4 प्रस्ताव पास कर देने से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी? नहीं, मेरी इसमें आस्था नहीं है। पहले जनसाधारण को जगाना होगा, उन्हें पेट भर भोजन मिले तो वे स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे। यदि राजनीतिक दल उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको मेरी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों में जो गुण हैं उन्हें भी हमें अपनाना होगा।
7: धर्म से आपका तात्पर्य क्या किसी मत विशेष से है?
6: ठाकुर ने क्या किसी सांप्रदायिक मतवाद का प्रचार किया था? बल्कि उन्होंने वेदांत को ही सर्वांगीण धर्म बताया है, इसीलिए मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। परंतु मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वो चाहे उपनिषद का हो या गीता का अथवा भगवत का, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है, तथा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है।
7: अच्छा बताइए, मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा?
6: सुना है कि आप शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, वही सच्चा कार्य है। आपके

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। सामाइन, आज के प्रोग्राम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं कई शायरों के कलाम, जिन्हें अपनी मखमली आवाज में पेश कर रही हैं मशहूर गजल गायिका राधिका चोपड़ा। तो आइए आपको लिए चलते हैं महफिले गजल में।
1: राधिका चोपड़ा जी गजल की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा हैं। जगजीत सिंह जी के बाद आपने जिस सलीके से इस विधा को समेटा है वो काबिले सताइश है। आपकी रेशमी खनकदार आवाज, खूबसूरत मुस्कुराहट उन्हें और कलाकारों से जुदा कर जाती है। आपकी पैदाइश जम्मू की रही, इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद से ली और फिर मौसीकी की बाकायदा तालीम पंडित जे आर शर्मा जी से ली। एमए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और म्यूज़िक में गोल्ड मेडल हासिल किया। एमफिल पीएचडी भी आपने किया। खुशकिस्मती रही कि इन्हें मौका मिला बेगम अख्तर की ख़ास शागिरदा शांति हीरानंद जी से सीखने का, गज़ल दादरा ठुमरी की तालीम लेने का मौका, और फिर इनकी बेपनाह मेहनत रियाज ने इन्हें वो मकाम दिलाया जो अपने आप में एक मिसाल है। बेशुमार अवार्ड से आपको अब तक नवाजा जा चुका है। राधिका जी की नज़र ये शेर ज़रूर करना चाहूँगी कि वो एक साज है, आवाज़ है, छू लेती है दिल को। वो एक साज है, आवाज़ है, छू लेती है दिल को, नगमा है कि बुलबुल की चहक नाम है उसका। राधिका चोपड़ा जी।
2: मुझे नाचीज को आपने याद किया, शिरकत करने का मौका दिया। मेरे पसंदीदा शोरा में से एक है मजाज लखनवी, मैंने उन्हें बहुत गाया है। और मजाज के अलावा और बहुत सी फरमाइशें हैं जो पहले ही लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी आ चुकी है, तो कोशिश करूंगी कि सब कुछ सुनाऊं। इजाज़त दीजिए।

देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात, मेरे शाने पे है उस शोक का सर आज की रात। ये केदार है, बड़ा खूबसूरत राग है।

लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, खास इंदौर से आए हैं सुनने के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी उर्दू नहीं जानते, तो मैं उनके लिए ये मतलब बताना चाहती हूँ ताकि आप शेर का मज़ा ले सकें, फिर आपको दुगना मज़ा होगा। अल्ताफ माने काइंडनेस, किसी की अच्छाई जो काइंड बिहेवियर होता है, और फुसूं माने

गजल जो है इससे आप लोग जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो काफिया रदीफ है वो हसरत जयपुरी साहब ने उठाया और फिर एक फिल्म के लिए एक गीत लिखा जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मकबूल हुआ वो गाना भी। लेकिन ओरिजिनल जो है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो मजाज का कलाम है, और धुन मैंने वही रखी है रफ़ी साहब वाली, ताकि आपको और उससे आप रिलेट कर पाएँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी धुन है।

अगली मरतबा आप जब ये नगमा सुने तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये काफ़िया रदीफ़ किसका था। जी, मजाज लखनवी। कुछ फरमाइशें भी हैं, वो भी सुना रही हूँ, और एक गज़ल मुस्तरखर आबादी की भी सुनाऊँगी।

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाए कई शायरों के कलाम। फनकार थी राधिका चोपड़ा। तो दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो, जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पघैया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पघैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गौ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गौ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति क्षुब्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गौ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल गौ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गौ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊदयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊदयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊदयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊदयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊदयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाईयों के हाथ? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था, इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई, और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे, और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ मेरे रुपए, कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार हैं, रात दिन बस उन्हीं की दवा दारू में हूँ। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा, साल भर की मोहलत और दे दीजिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा।
रहमान के पास एक ही जवाब था, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ गया है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी, कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊ दयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊ दयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊ दयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला, वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे, क्या काम था। तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊ दयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोजताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ से धार गई। रहमान ने हाँ कहा, हुजूर आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया, ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए। रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है, पिछला भी पड़ा है, अब किस मुँह से मांगू, लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा है कि ना करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊँगा। आगे आप मालिक हैं, कुछ समझकर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ, जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर हुजूर इस घड़ी मना ना कीजिए। रहमान लगातार रो रहा था, दाऊ दयाल को दया आ गई। ओ भाई, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, खबर है इसकी। रहमान ने कहा, गरीब परवर, अल्लाह दे तो बीघे ईग में 500 आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है, जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए, ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अघन का महीना था, रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था, ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थीं। सारे उपाय व्यर्थ हो गए, सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊ दयाल की थी कि दाऊ दयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था, वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है।
प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दाऊ दयाल के घर ले गया। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने तक का मौका नहीं दिया गया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। बस वह अपने मुंह से कह रहा था, या अली मुश्किल कुशा, उसके मुंह से ही निकल रहा था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वो गिर जाता या बेहोश हो जाता। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे, रहमान जाकर उनके कदमों पे गिर गया। खुदाबंद बड़ी विपत्ति है, अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं हूँ। दाऊ दयाल ने कहा, क्या सब ईख जल गई? हुजूर सुन तो चुके हैं आप, तो अब मैं क्या करूं, नालिश कर दूं? दाऊ दयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूं हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया, अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा, मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है बताओ। हुजूर बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊ दयाल ने कहा। अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं, यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊ दयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी, अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो, असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग मिले, अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता बताओ भला, तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है, जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया, तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो पर असल में किया है, हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है, मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और निम्न हो जाए तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल पड़े, बहुत मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका, रुंधे हुए स्वर में कहा,
हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा आपको देगा, मैं तो आज से आपका गुलाम समझूंगा। दाऊद अय्याल ने रहमान को उठा लिया और कहा, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान रुंधे स्वर में बोले जा रहा था, नहीं हुजूर, मैं आपका गुलाम। और दाऊद अय्याल ने रहमान को गले लगा लिया। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुझे मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये शब्द नहीं निकालना दोस्त।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान या आप कह लो भीष्म पितामह और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: .8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा, पैसा

0: तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
1: मे आई कम इन सर?
2: यस कम इन, फरमाइए।
1: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
2: नोटिस? मगर किस बात का?
1: कंपनसेशन का सर।
2: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
1: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
2: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
1: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी? अजी बिल्कुल है,
2: है?
1: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है। और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
2: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
1: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का IAS तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
2: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
1: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
2: क्या?
1: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए

0: है बीए, जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
1: और अगर हम ना बोल दें तो?
0: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
2: ओह नो।
0: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
1: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
0: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहां तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: सर, मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट, प्रति बच्चे एवरेज आया 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन? कपाल भारती जी। अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना, ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः

0: यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
1: फिर यानी कि तैयारी नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
1: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर से इनके पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
1: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
1: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर।
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
1: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
1: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर।
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
1: ऐसा क्यों सर।
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज हर्चे खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
1: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो।
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
1: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
1: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
1: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
1: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
2: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
1: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
1: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप।
1: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
2: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं।
1: सर 7।
2: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
1: कह दिया ना सर 7 वचन, फाइनल आंसर।
2: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप।
1: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
2: हाँ।
1: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए, 7 ही ना।
2: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंत

0: अंधे कवि।
1: हाँ
0: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
1: एक क्लू देता हूँ आपको।
0: हाँ।
1: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
0: सर याद आ गया।
1: हाँ।
0: तुलसीदास।
1: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
0: सर तुलसीदास ही थे ना।
1: हाँ।
0: जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
1: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
0: जी।
1: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
0: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
1: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
0: जी।
1: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, आप बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
0: जी सर, गोविंदा।
1: गोविंदा,
0: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
1: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
0: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
1: अरे
0: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
1: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
0: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
1: हाँ।
0: सर मुझे नहीं मालूम।
1: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
0: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
1: बताइए।
0: श्री देवी।
1: श्री देवी, अरे मगर वो कैसे भाई?
0: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
1: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
2: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
3: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है। आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
0: जी जी सर।
3: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
0: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
3: थोड़ा सोचकर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
0: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
3: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
0: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
3: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
0: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
3: वो कैसे?
0: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर फुटबल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
3: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूं आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
0: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
3: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
0: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
3: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
0: सर 50 किलोमीटर का।
3: मगर कैसे?
0: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ कम जरूर जा सकती है।
2: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी,
2: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
2: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
0: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
2: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
0: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
0: बहन छायावती ने।
2: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
0: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
2: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
0: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
2: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
0: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
2: अच्छा अब एक आखिरी सवाल।
0: जी,
2: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
0: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर 36 साल।
2: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
0: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
2: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
0: जी बेहतर सर।
2: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
3: जी सर,
2: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
3: सर हमारे पास एक आइडिया है।
2: वो क्या?
3: सुनिए सर।
2: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ना सर
2: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुर्सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
0: जी सर,
2: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
0: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं। कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए।
2: अच्छा, अच्छा।
0: इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
2: चतुरसेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर ये टेस्ट का हिस्सा है।
1: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुरसेन?
2: बताइए बताइए,
1: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
2: अभी हमारे
1: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
0: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
2: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
0: सर,
2: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जोश

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज आपने सुना ध्रुपद गायन, जिसे पेश किया पंडित उदय भावलकर ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। शुभ संध्या, संध्या वंदन, इस सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 123 से वाचन। ऋषि हैं कक्षीवान दैर्घतमस, देवता हैं उषा और छंद है त्रिष्टुप।
1: प्रथु रथो दक्षिणाया अयोज्यैनम देवासो अमृतासो अस्थुहु कृष्णा दुदस्था दरिया विहायाश्चिकित्संति मानुषाय क्षयाय। इन कुशल देवी उषा का विस्तृत रथ जुत करके तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर विराजमान हो गए हैं। ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उषा मानवों के सुखदायी निवास के निमित्त प्रयत्नशील होकर भयंकर काले अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाशमान हुई हैं। पूर्वा विश्वास्माद् भुवना दबोधि जयंती वाजम बृहती सनुत्री उच्चा व्यक्ष्यद्युवति पुनर्भूरोषा अगन प्रथमा पूर्वहूतौ। संपूर्ण प्राणियों से पहले देवी उषा जागती हैं। यह प्रचुर दानदात्री देवी उषा ऐश्वर्यों की जनयित्री हैं। यह बार बार आने वाली चिर युवा देवी उषा सर्वप्रथम यज्ञ करने के निमित्त प्रथम स्थान पर विराजमान होती हैं और ऊंचे स्थान से सबको देखती हैं। यदद्य भागम विभजासी नृभ्य उषो देवी मर्त्यत्रा सुजाते देवो नो अत्र सविता दमूना अनागसो वोचति सूर्याय। हे कुलीन देवी उषा, मनुष्यों की पालन कर्त्री, आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का योग्य भाग प्रदान करती हैं, उस समय दान के प्रति प्रेरित करने वाले देव सूर्य के अभिमुख हमें पाप रहित बनाए। ग्रहं ग्रहमहना यात यच्छा दिवे दिवे अधिनामा दधाना सिशा संति द्योतना शश्वदागा दग्र मग्र मिद भजते वसूनाम। हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उषा प्रतिदिन आगमन करती हैं। कीर्ति को धारण करने वाली देवी उषा प्रतिदिन घर घर जाती हैं तथा धनों के श्रेष्ठ अंश को ग्रहण करती हैं। भगस्य स्वसा वरुणस्य जामि रुषः सुनृते प्रथमा जरस्व पश्वा स दघ्या यो अघस्य धाता जयेम तम दक्षिणया रथेन। हे सुभाषिणी उषे, आप भगदेव और वरुण देव की बहिन हैं। ऐसी आप देवों में सर्वप्रथम स्तुति करने योग्य हैं। बाद में जो पापात्मा शत्रु हैं उन्हें हम पकड़ें और आपके द्वारा दक्षता पूर्वक प्रेरित रथ से पराभूत करें। उदीरताम सुनृता उत्पुरंधी रुदग्नयः शुशुचानासो अस्थुः स्पार्हा वसूनी तम साप गुड़ हाविष्क्रण वन तुषसो विभाति ही। हमारे मुख स्तोत्र गान करें, प्रखर विवेक बुद्धि सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें, प्रज्वलित अग्नि ज्वलनशील रहे, तब उनके निमित्त तेजस्वी उषाएं तमसाच्छादित वांछित धनों को प्रकट करें। अपान्य देत्यभ्य न्यदेति विशुरूपे अहनीसम चरेते परीक्षितोस्तमो अन्या गुहा करद्यौदुषाः शोषु चतारथेन। विपरीत रूप रंग वाली रात्रि और देवी उषा क्रमशः आती और जाती हैं। एक के चले जाने पर दूसरी आती हैं। इन भ्रमणशीलों में से एक रात्रि अंधकार से सबको आच्छादित कर देती है और दूसरी देवी उषा दीप्तिमान तेज रूप रथ से सबको प्रकाशित करती हैं। सदृशी रद्य सदृशी ऋदु श्वो दीर्घम सचन्ते वरुणस्य धाम अनवद्यास्त्रिंशतम् योजनान्येकैका क्रतुम् परियन्ति सद्यः। आज ही के समान कल भी ये उषाएं यथावत आएंगी। ये पवित्र उषाएं वरुण देव के व्यापक स्थान में देर तक रहती हैं। एक एक देवी उषा 30-30 योजनों की परिक्रमा करती हुई नियत समय पर कर्म प्रेरक सूर्य देव से आगे आगे चलती हैं। जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णा दजनिष्ट श्वितीचि ऋतस्य योषा न मिनाति धामा हर हर निष्कृत माचरन्ति। दिन के प्रारंभिक काल को जानने वाली गौर वर्णा तेजस्विनी देवी उषा काली रात्रि के काले अंधकार से उत्पन्न होती हैं। ये स्त्री रूपी देवी उषा सत्यव्रत को न त्यागती हुई प्रतिदिन निश्चित समय पर आती और नियम पूर्वक रहती हैं। कन्येव तन्वा शाशदानाम एषी देवी देवमिय क्षमाणम संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर वक्षांसि कृणुषे विभाति। हे देवी उषे शरीर के स्वरूप को प्रकट करने वाली कन्या के समान ही आप भी अभीष्ट कामना पूरक पति रूप सूर्य देव के पास जाती हैं। पश्चात नव युवती के समान मुस्कराती हुई कांतिमती होकर अपने प्रकाश किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकट रूप से प्रकाशित करती हैं। सुसंकाशा मातृमृष्टेव योषा विस्तन्वम कृणुषे दृशे कम भद्रा त्वमुषो वितरम व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशंत। माता द्वारा सुशोभित की गई नव युवती के समान रूपवती ये देवी उषा अपने प्रकाश किरणों रूपी शारीरिक अंगों को मानो दिखाने के लिए प्रकट हो रही हों। हे उषे आप मनुष्यों का कल्याण करती हुई व्यापक क्षेत्र में प्रकाशित रहें। अन्य उषाएं आपकी तेजस्विता की समानता नहीं कर सकेंगी। अश्ववतीर गोमतीर विश्ववारा यतमाना रश्मिभिः सूर्यस्य परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रा नाम वहमाना उषासः। अश्वों और गौओं से युक्त सबके द्वारा आदर योग्य सूर्य देव की किरणों से अंधकार को दूर भगाने में प्रयत्नशील तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वाली उषाएं दूर जाती सी दिखती हैं, लेकिन फिर वहीं आ जाती हैं। ऋतस्य रश्मि मनुयच्छमाना भद्रम भद्रम ऋतुमस्मासु धेहि उषो नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्युः। हे देवी उषे, सूर्य देव की रश्मियों के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अंतरंग में कल्याणकारी कर्मों की प्रेरणा प्रदान करें। आप आवाहित किए जाने पर हमारे अभिमुख प्रकाशमान रहें। हमें और ऐश्वर्यवानों को प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 123 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भक्ति संगीत में। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अपनी सोच को सकारात्मक रखकर हम हर मुश्किल को आसान बना सकते। मन जैसा सोचता है, जीवन भी वैसा बन जाता है। इसलिए हर विचार में उम्मीद रखें, हर मुस्कान में आत्मविश्वास और हर कदम में आगे बढ़ने का हौसला। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

0: यदि धन का दान देने का सामर्थ्य न हो तो कोई बात नहीं, परंतु दया का दान सदैव देते रहना चाहिए।
1: कांधा, कांधा, कांधा, धादी न।

सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

ढलती हुई इस संध्या में जब वातावरण भी भक्ति में डूबा हुआ सा लगता है, ऐसे में एक मधुर भजन सुनना मन को और भी सुकून दे जाता है। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

0: और इसी भजन के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भक्ति संगीत का अब यहीं समाप्त होता है।
1: कौन बिगाड़ करे नर तेरो
0: जान। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है सरदार सिंह रेवा भाई राणा की पुण्यतिथि पर।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: प्रेम जिस मन को छू लेता है फिर समय स्थान और दूरियों की सीमा उस पर बेअसर हो जाती है। ऐसे ही कुछ मन हुए जो महकते रहे अपनी मिट्टी की खुशबू से, जो जुड़े रहे अपने देश अपने वतन से। जिस धरती पर जन्म ले जीवन की पहली सांस उन्होंने ली, वो देश उनकी सांसों में ता उम्र बसा रहा। तमाम दुनियावी कामयाबी के बीच भी अपना वतन उनके भीतर धड़कता रहा। उसकी समृद्धि, उसका विकास, उसकी आजादी उनके जीवन का लक्ष्य था। ऐसे कई देशप्रेमी हुए जो रहे तो विदेशी धरती पर, लेकिन उनकी चिंता और चिंतन अपने देश को लेकर ही रहा। गुजरात के काठियावाड़ का एक छोटा सा गांव कंथारिया, यहां 10 अप्रैल सन 1870 को एक ऐसी ही विभूति ने जन्म लिया जिसने 7 समंदर पार रहकर भी अपने देशप्रेम और त्याग की अनूठी मिसाल पेश की। नाम था सरदार सिंह राणा। रावा भाई और कुलजी बाकी संतान सरदार सिंह राणा शुरू में तो धूली के स्कूल में पढ़े। उनके पिताजी केवल 4th पास थे, किंतु बहनों के आग्रह पर सरदार सिंह राणा को आगे पढ़ने का रास्ता मिल गया। धूली स्कूल के बाद वे अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में अध्ययन के लिए पहुंचे। यहां उनके सहपाठी थे मोहनदास गांधी। 1891 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के लिए अनुमोदित हुए। पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते हुए उनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से हुई। उनसे वे इतने प्रभावित हुए कि होम रूल आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। पूना में 1895 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। पूना में अपना अध्ययन समाप्त कर वे बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। लंदन में उनकी मुलाकात सुविख्यात क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के साथ हुई। देशभक्तों की ये त्रिपुटी पूरे लंदन में अपनी गतिविधियों के लिए बहुत जल्द प्रसिद्ध हो गई। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात सन 1900 में दादा भाई नौरोजी के साथ भी हुई। वीरचंद गांधी, जो कि स्वामी विवेकानंद के साथ शिकागो की धर्मसभा में भाग लेने अमेरिका गए थे, उनसे हुई मुलाकात ने सरदार सिंह राणा के मन में उथल पुथल मचा दी। वे पुरानी परंपरा तोड़कर परिवर्तन की नई भूमि तैयार करने में जुट गए। परिवर्तन की ये भूमि उनके लिए केवल विचार, जीवन, रहन सहन आदि के लिए ही नहीं थी, बल्कि वे तीव्रता से महसूस करने लगे थे कि भारत में बहुत जल्द राजनीतिक सत्ता बदलनी चाहिए और देश स्वाधीन होना चाहिए।

सरदार सिंह राणा लंदन में बार एट लॉ की परीक्षा दे चुके थे, पर उसका परिणाम आने में अभी 3-4 महीने का समय और था। काम के बगैर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। ये 4 महीने कैसे काटे जाएं और उसका खर्च किस तरह से निकाला जाए, वे यही सोच रहे थे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था, उसने कुछ और ही सोच रखा था। इन्हीं दिनों पेरिस में एक विश्व व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें खंबात के एक झवेरी जीवनचंद उत्तम चंद ने अपनी दुकान लगाई थी। व्यापारी को अपनी दुकान के लिए एक ऐसे दुभाषिये की जरूरत थी जो फ्रेंच और अंग्रेजी में लोगों से बात कर सके। सरदार सिंह ने सोचा कि समय काटने के लिए ये अच्छा अवसर है और आर्थिक लाभ भी हो जाएगा, इसलिए वो पेरिस चले गए। उनके व्यवहार, उनके भाषा कौशल और ईमानदारी से सेठ जीवनचंद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी दुकान का पूरा काम सरदार सिंह को सौंप दिया। वे स्वयं बंबई रवाना हो गए। सेठ के साथ रहते हुए सरदार सिंह राणा जवाहरात की पहचान करने और उसकी बिक्री के कौशल में पारंगत हो गए। उनकी कुशलता और व्यापार में रुचि देखकर जीवनचंद ने उन्हें वकालत का धंधा छोड़कर जवाहरात का व्यापार करने की सलाह दी। शुरू शुरू में सरदार सिंह राणा एक कमीशन एजेंट के तौर पर काम करते रहे और बाद में सफलतापूर्वक उन्होंने अपना स्वतंत्र व्यापार स्थापित कर लिया। पेरिस में ये उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इस व्यापार से उन्होंने प्रभूत धन कमाया। इससे वे विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता सेनानियों की मदद करने लगे। सरदार सिंह का बचपन गरीबी में बीता था, इसलिए आर्थिक समृद्धि की चाह भी उन्हें थी। दूसरे हीरे जवाहरात के व्यापार में बहुत स्वतंत्रता थी। पेरिस में उनका निवास भारतीय नेताओं के लिए संपर्क स्थल बन गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से पेरिस आए, तो सरदार सिंह ने उन्हें अपनी ओर से 5 लाख रुपए और पेरिस में रहने वाले भारतीयों की ओर से 27 लाख रुपए एकत्रित करके दिए। ये था उनका शिक्षा और भारत के प्रति प्रेम। भारत के प्रतिभाशाली युवकों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्होंने स्कॉलरशिप देना भी आरंभ किया। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर इसी शिक्षावृत्ति के तहत इंग्लैंड पढ़ने आए थे, जहां उन्होंने अपने शोधपूर्ण अध्ययन में महत्वपूर्ण पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर की रचना की, जो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। इसकी कुछ प्रतियों को सरदार सिंह राणा ने गुपचुप तरीके से पौंडीचेरी के रास्ते भारत भेजने की व्यवस्था की, जो बाद में देश भर में पहुंची। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सरदार सिंह राणा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैडम भीकाजी कामा के साथ उन्होंने 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया।

सरदार सिंह राणा अपने 50 वर्षों के विदेश प्रवास में फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में पारंगत हो गए थे। इसका प्रभाव उनके व्यापार पर भी पड़ा। हर देश के ग्राहक उनसे प्रसन्न होकर जाते थे। अपनी व्यापारिक कुशलता से उन्होंने पेरिस में रहने वाले तमाम भारतीय व्यापारियों और भारतीयों को एक सूत्र में बांध लिया था। और जो लोग भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से अलिप्त थे, उन्हें भी सरदार सिंह ने इस धारा से जोड़ा। वे एक कुशल वक्ता भी थे और लेखन में भी उनकी रुचि थी। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैपी इंडिया का उन्होंने फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के अखबार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में वे फ्रेंच भाषा में एक लेखमाला लिखा करते थे, जिसका शीर्षक था भारत में अंग्रेज। पेरिस से निकलने वाले भीकाजी कामा के वंदे मातरम और बर्लिन से निकलने वाले तलवार पत्रों में वे नियमित लेखन करते थे, जो बाद में गुप्त रूप से भारत पहुंचाए जाते थे। सरदार सिंह ने फ्रेंच भाषा में अपनी डायरी भी लिखी थी, जिसमें 1901 से 1947 तक की नियमित गतिविधियों का वर्णन है। ये डायरी आज उनके परिवार के पास सुरक्षित है, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के अनेक अनछुए पहलुओं का वर्णन है। विश्व युद्ध के समय सन 1911 में फ्रांस की सरकार ने उन्हें निष्कासित कर मार्टिनी क्यू भेज दिया। पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर रोक लगाकर उसे सीमित कर दिया गया। सन 1914 में अपने पुत्र और सन 1931 में अपनी जर्मन पत्नी की मृत्यु के बाद वे बेहद दुखी और निराश हो गए। विश्व युद्ध की गतिविधियों के कारण पेरिस में भी भारतीय स्वाधीनता के प्रेमियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी थी। अंततः सन 1947 में भारत के स्वाधीन होने के बाद वे अपना व्यापार समेटकर सन 1955 में भारत लौट आए। यहां बीमार होने और पक्षाघात के कारण 25 मई सन 1957 को वेरावल के सर्किट हाउस में उनका निधन हो गया। जिस मिट्टी में उन्होंने पहली सांस ली, जिसकी स्वाधीनता के लिए वो हजारों मील दूर रहकर भी आजीवन अनथक प्रयास करते रहे, उसी स्वाधीन देश में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मन में परम संतोष और आंखों में देश के सुंदर भविष्य के असंख्य बिंब लिए वो हमसे विदा हुए।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल। समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह से आज हम ढूंढ कर लाए हैं कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का ये दुर्भाग्य ही था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे नशे का चस्का लग गया, जिसका फल ये हुआ कि मेहनती उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में अब उसे आनंद नहीं आ रहा था। किसी वट वृक्ष के नीचे धुनी जल रही होती थी, एक जटाधारी महात्मा विराज जाते थे और भक्तजन उन्हें घेरे बैठे थे और तिल तिल चरस के दम लग रहे थे। बीच बीच में भजन भी हो जाते थे। मजूरी धूतरी में वो स्वर्ग सुख कहाँ था। चिलम भरना अब पयाग का काम हो गया था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी और पयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलम पर पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वो आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति छाई रहती थी। वो सौरभ संगीत और प्रकाश से भरे हुए किसी दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर जब उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता था। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल दिखता। जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला है और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है तो वो गुस्से से भर जाता। वो जाति का भर था, गांव की चौकीदारी उसकी मिराज थी। 2 रुपए और कुछ आने उसको वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त में था। काम था सप्ताह में एक दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना और लकड़ियां चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर ये काम करता था, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू तो वो ऐसे पोंछता था कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम नहीं थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो कमतर लोगों पर रोब था। वेतन पेंशन थी और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। इसलिए जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंता का कारण बनता जा रहा था। इन सत्संगों के पहले ये दंपत्ति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती थी। पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता था और कभी पुरहाकता था। जो काम सामने आ जाता जुट जाता था मेहनत से। हसमुख था, श्रमशील था, विनोदी था, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखो नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए वो कभी ना करता ही नहीं था। किसी ने कुछ कहा तो अच्छा भैया कहके दौड़ जाता था। इसलिए गांव में उसका बहुत मान सम्मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट नहीं हुआ था। जब महतो को ये रिद्धि ना प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थी, तो पयाग किस गिनती में था? हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह नहीं था। परंतु अब ये समस्या दिन बर दिन बढ़ रही थी। उस पर ये विपत्ति थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उतनी पतिपरायण, उतनी सेवाशील और उतनी तत्पर नहीं थी। उसकी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास हो गया था। पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चिंत होकर भगवत भजन करे और साधु सेवा में लगा रहे। एक दिन की बात है, रुक्मिन बाजार से लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे, दम लगाकर आता हूँ। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने के लिए? ऐसी चाट बची है तुम्हें तो काम क्यों नहीं कर लेते? क्यों आजकल कोई बाबा नहीं मिल रहा क्या? जाकर चिलम भरो, और क्या काम है तुम्हें? पयाग ने भी त्योरी चढ़ा ली, भला चाहती है तो पैसे दे दे, अगर इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, रहना अकेले और रोना। रुक्मिन ने भी अंगूठा दिखा दिया, रोए मेरी बला, जाना है तो जाओ, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? अब भी छाती फाड़ती हूँ,
तब भी छाती फाड़ूंगी, रह लूंगी। अच्छा, तो अब यही फैसला है, पयाग ने कहा। रुक्मिन ने भी कह दिया, हाँ हाँ कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो ऐसे जवाब देती हो? रुक्मिन ने भी तिनक कर कहा, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है, तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया। पयाग उस दिन घर से निकल गया। रात के 9 बज गए थे। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए, समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा कि मनाने आएगी, मैं क्यों जाऊं मेरी भला से। जब दूसरे दिन भी पयाग नहीं आया तो अब रुक्मिन को चिंता हो गई। गांव भर छानाई उसे, चिड़िया किसी अड्डे पर नहीं मिली। लेकिन उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई, रात को लेटी भी तो बहुत देर तक उसकी आंख नहीं लगी। शंका हो रही थी कि सचमुच पयाग विरक्त तो नहीं हो गया। फिर उसने सोचा, प्रातः काल जाकर पत्ता पत्ता छान डालूंगी, होगा किसी साधु संत के साथ, और नहीं मिला तो थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही हुआ था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखा। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा सा घूंघट और शर्मीली चाल। रुक्मिन का कलेजा तो धक से हो गया। वो एक क्षण हतप्रभ होकर खड़ी होकर देखती रह गई। तब बढ़कर उसने अपनी नई सौतन को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, कहां से लाए हो जी इसे? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी और पड़ी रहेगी बस। क्या करते हो, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है, पयाग ने तिरछी चेतावनी देकर कहा। तुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल को लाया हूँ, नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है, रुक्मिन ने कहा। पयाग ने जवाब दिया, चल मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वो पुरानी, ला कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ रहे। हाँ देख तो, 4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ में रख दिया। दूसरी बार उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पयाग में चाहे कोई गुण हो या ना हो, ये तो मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 महीने तक तो किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, लकड़ियां तोड़ती, चारा काटती, उपले पाथती और बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो वो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधे में घर का काम चलता। वो सौत को कोई काम नहीं करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या हुआ, है तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम से ना रहेगी तो क्या याद करेगी, मैं तो काम करने को ही हूँ। पूरे गांव में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाग पयाग सब कुछ समझता था और वो अपनी नीति की सफलता पर खूब प्रसन्न था। एक दिन नई बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे ना जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो ना। रुक्मिन ने स्नेह से कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाओगी, भीतर का काम किए जाना, बाहर के लिए मैं हूँ। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़ कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन लड़कियों की दशा अब उसके लिए असहनीय हो गई थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे और कोई पूछता नहीं। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती तो घर की मालकिन थी, अब सिलिया भी मजूरी करेगी, मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी नहीं थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की किवाड़ लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल।

था कि सिली अंधेरे में बैठी कुछ पीस तो रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है तू? सिलिया ने मिनी डर होके कह दिया, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घूमर घूमर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने हो गए, बहुत हो गया। रुक्मिन ने प्यार से कहा, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। सिलिया ने बोला, तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती, आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं, किसके गेहूं हैं? मैं सवेरे उसके सिर पर पटकाऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली। पैसे क्यों नहीं देंगे, बिगाड़ करती हूँ क्या? तू नहीं मानेगी लगता है। सिलिया ने भी कह दिया, मैं बैठ कर नहीं खाऊंगी। ये तकरार सुनकर पयाग भी आ गया और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने देना, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने, बहुत है। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी, रुक्मिन ने बोला। और सिलिया बीच में बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका, बर्तन, झाड़ू, बुहारी, रोटी पानी, पीसना कूटना कौन नहीं करता? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में खट पड़ गई है, मुझसे अब सारा काम नहीं होता। पयाग ने कहा, हाँ तो तू बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी, क्या कहेगा संसार? संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐप करने जाती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया, सिलिया की अमलदारी हो गई। खूबसूरत औरत थी और यौवन भी भरपूर। गेहूं पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए। गट्ठा उठाए नहीं उठ रहा था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली थी। ये गट्ठा 12 आने में बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ खरीद लिया और 4 आने भी बच गए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से बाजार नहीं जाने दूंगी, इससे फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर ये सामान देखकर उसकी आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों बाद उसे स्वादिष्ट वस्तु मिली थी, बहुत प्रसन्न हुआ। पयाग भोजन करके बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। तो पयाग ने कहा, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे तो होंगे, देना मुझे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया रे। रुक्मिन तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी, मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही अच्छा लगता है। पैसे खाने पीने के लिए होते हैं कि गाड़ने के लिए? सिलिया ने भी हंसकर जवाब दिया। पयाग ने भी आज्ञा दे दी, अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिन घर का काम करेगी। रुक्मिन और सिलिया में अब संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़ कर परिश्रम करती। पहर रात ही उसकी चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने जाती, जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह। वहां से लौटकर भी वो बिगाड़ नहीं बैठती थी, कभी सन काटती, कभी लकड़ियां तोड़ती। रुक्मिन उसके प्रबंध में बराबर ऐब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाथती। पयाग के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियां उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया कि वो किसी तरह हिलाए नहीं हिल रही थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना और तेज धूप, उसने सोचा नहाकर बाजार जाएगी। घास द्वार पर रखकर वो तालाब चली गई। रुक्मिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिन के घर में छिपा दी और गट्ठे को ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया जब नहाकर लौटी तो उसे घास कम लगी। उसने रुक्मिन से पूछा तो रुक्मिन ने कह दिया, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देना शुरू कर दी, जिसने मेरी घास चुई उसकी देह में कीड़े पड़े।
उसके बाप और भाई मर जाएं, आंखें फूट जाएं। लगातार सिलिया गाली दे रही थी। रुकमिन कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी रही, आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठी और सिलिया को 2-3 तमाचे जड़ दिए। सिलिया भी वहां पर सिर धुनकर रोने लगी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सबको खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ी क्यों लाती है, सवेरे क्यों उठती है, पैसे क्यों लाती है। पड़ोसियों की सहानुभूति से वो वंचित हो रही थी। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम हो गया, घास ना हुई सोना हो गया। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया था। शाम को जब थका हुआ लौटा तो उसने सिलिया से कहा कि ला कुछ पैसे दे, दम लगाऊंगा, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखकर रोने लगी। पयाग तो घबरा गया। क्या हो गया, क्यों रोती है, कौन मर गया? अब इस घर में मेरा रहना नहीं होगा, मैं अपने घर जाऊंगी, सिलिया ने जवाब दे दिया। अरे कुछ तो बोल, गांव में किसी ने कुछ कहा? सिलिया ने रो रो कर सारी कहानी सुना दी। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, वो तो झल्लाया ही था। ये कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुकमिन पानी भरने गई थी। वो अभी घड़ा रख भी नहीं पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा, मारते मारते उसे बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गालियों से देती। पयाग हर गाली पर उसे और मारता। रुकमन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गई। सिलिया बीच बीच में कहती जाती, वाह रे तेरा दीद, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत नहीं देखी। औरत का है को डायन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं। रुकमिन ने कुछ नहीं सुना, बस बोलती चली गई। पयाग मारते मारते थक गया, पर रुकमिन की जबान नहीं थकी, वो लगातार रट रही थी। पयाग रह रहकर क्रोध से तिलमिला रहा था और आ आकर 2-4 लात जमा देता था। पर रुकमिन तो अब जैसे पत्थर हो गई थी, अब उसे चोट ही नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी समस्त आत्मा हिंसा कामना की अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ, रुकमिन उठकर निकल गई। आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। सिलिया खाना बना रही थी, उसने जाते देखा लेकिन कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ नहीं बोला। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसका किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मुढ़ैया डाल लेता था और रात को खा पी कर आग जला लेता था और उसी मुढ़ैया पे जाके रहता था। चैत के अंत तक यही नियम था और आजकल वही दिन तो चल रहे थे। फसल पकी हुई थी, 2-4 दिन में कटाई हो गई। पयाग ने 10 बजे रात तक रुकमिन की राह देखी, समझा कि पड़ोसिन के घर चली गई होगी रुकमिन। इसलिए खा पी कर उसने लाठी उठाई और सिलिया से बोला कि वाड़ बंद कर ले, रुकमिन आए तो खोल देना, मना जुना कर थोड़ा खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। सिलिया बोली, न जाने वो कब आएगी, मैं अकेली कैसी रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा, सूना घर पाकर कोई लोटा थाली थोड़ी ले जाएगा, डर किस बात का। फिर रुकमिन भी तो अभी आएगी, तू रह, आता हूँ। सिलिया ने अंदर से दरवाजा बंद किया। पयाग खेत में चला गया। अचानक सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जला ली है। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ, कौन है, कौन आग जला रहा है? ऊपर उठती ज्वालाओं ने अपनी जिह्वा से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मुढ़ैया में आग लगी है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मुढ़ैया में आग लगाना रुई के ढेर में आग लगाना था। हवा चल रही थी, मढ़ैया के चारों ओर एक हाथ पे हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी थी। रात में भी उनका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे खेत को भस्म कर देगी। गांव तबाह हो जाएगा और इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वो भी जल जाएंगे। अरे ये क्या हो गया, लपटे तो बढ़ रही है। अब विलम्ब करने का समय नहीं था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया। कंधे पर लोहबंद लाठी रखकर वो बेतहाशा मुढ़ैया की ओर दौड़ा। मेढ़ों में जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेत से होकर भागा जा रहा था। ज्वाला प्रचंड होती जा रही थी। वो ऐसे भाग रहा था जैसे तेज घोड़ा उड़ रहा हो।
अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य था। उसकी आंखें मढ़ैया पर लगी थी, दाहिने बाहिने कुछ नहीं सूझ रहा था, दम फूल रहा था, ना पांव थक रहे थे। 3-4 फरलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मुढ़ैया के पास पहुंच गया। मुढ़ैया के पास कोई नहीं था। किसने ये काम किया, ये सोचने का मौका नहीं था। उसे खोजने की तो बात ही और थी। पयाग का संदेह रुकमिन पर हुआ। वो क्रोध का समय नहीं था, लेकिन ज्वाला कुचाली बालकों की भांति ठट्ठा मारती, धक्कम धक्का करती, दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं। पयाग गांव की ओर भाग गया। ऐसा जान पड़ रहा था मानो कोई अग्नि यज्ञ हवा में उड़ता चला जा रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था। एक बार एक मूठ उठाकर अलग करके वो गिर गया। सारा हाथ जल गया उसका, हाथ पांव पल भर भी नहीं रुके। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका नहीं थी। अगर भय था तो यही कि मढ़ैया का वो केंद्र भाग जहां लाठी का कुंदा डालकर पयाग ने उसे उठाया था वो ना चल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मढ़ैया उसके ऊपर आ गिरती, अग्नि समाधि में मग्न कर दी थी उसको। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से लड़ने में लगा था। पयाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग रोक नहीं पा रहा था। अग्नि की क्रूर लीला उसने ऐसी कभी नहीं देखी थी कि अचानक एक स्त्री सामने के वृक्ष से दौड़ती हुई आई और पयाग के पास पहुंच गई। ये रुकमिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मढ़ैया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों में ले लिया, और उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया। रुकमिन उसके अलाव को लिए 1 सेकंड में खेत के डांडे पर पहुंच गई, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया, कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुध नहीं थी कि मढ़ैया के बाहर निकल आए। वो मढ़ैया के लिए वहीं गिर गई। उसके बाद कुछ देर तक मढ़ैया हिलती रही, रुकमिन हाथ पांव फेंकती रही, और फिर अग्नि ने उसे निकल लिया। रुकमिन ने अग्नि समाधि ले ली। कुछ देर बाद पयाग को होश आया। सारी देह जल रही थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उठकर दौड़ा, पैर से आग को हटा दिया। नीचे रुकमिन की अध जली लाश पड़ी थी। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांक लिया और खूब रोया। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो बचा नहीं। कुछ तो आग ने जला दिया और जो कुछ कसर थी वो शोक अग्नि ने पूरी कर दी, और बन गई उनकी अग्नि समाधि।

0: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अग्नि समाधि। आप सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
1: श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: कला कल्लोलनी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे कलाकार की जिन्होंने भारतीय संगीत को पश्चिम के ड्राइंग रूम और कॉन्सर्ट हॉल तक पहुंचा दिया, और उनके पिता तो महागुरु थे जिन्होंने भारत के सांगीतिक आकाश को अनेकों चमकते नक्षत्रों से सजाया।
1: आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत और सरोद सम्राट उस्ताद अली अकबर खान की। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उस्ताद अली अकबर खान का स्थान उस हिमालय के समान है जिसकी चोटियां बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें गहरी आध्यात्मिक साधना में धसी हुई हैं। उन्हें सरोद सम्राट और स्वर सम्राट जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी जादुई उंगलियों की हरकत एक निर्जीव लकड़ी के साथ से रूहानी संवाद तक पैदा कर देती थी।
0: उस्ताद अली अकबर खान साहब का परिवार भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार माना जाता है, जिसे मैहर घराना के नाम से जाना जाता है। उनके परिवार का इतिहास संगीत की तपस्या और परंपराओं के संरक्षण की एक अद्भुत गाथा है। अली अकबर खान के पिता बाबा अलाउद्दीन खान इस संगीत साम्राज्य के संस्थापक थे। वे 20वीं सदी के सबसे महान संगीत गुरुओं में से एक थे। उन्होंने ही सरोद को आधुनिक रूप दिया और मैहर बैंड की स्थापना की। बाबा न केवल एक उस्ताद थे बल्कि एक संत की तरह थे, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जीवन संगीत के लिए दान कर दिया था।
1: हाँ श्रोताओं, और अली अकबर खान साहब की छोटी बहन अन्नपूर्णा देवी संगीत जगत की एक रहस्यमयी और अलौकिक प्रतिभा थी। वो सुरबहार बजाने में माहिर थी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा अपने भाई अली अकबर और पति पंडित रविशंकर से भी कहीं अधिक थी, लेकिन उन्होंने खुद को गुमनामी में रखा और सार्वजनिक प्रदर्शन छोड़ दिया था। साथ ही भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अली अकबर खान के पिता से ही संगीत सीखा था। वे खान साहब के न केवल गुरु भाई थे बल्कि अन्नपूर्णा देवी से विवाह के कारण उनके बहनोई भी बन गए। रविशंकर और अली अकबर की जोड़ी ने ही दुनिया भर में भारतीय संगीत को घर घर तक पहुंचाया।
0: श्रोताओं सोचिए, जिस घर में पिता बाबा अलाउद्दीन खान हो, बहन अन्नपूर्णा देवी हो और गुरु भाई पंडित रविशंकर हो, उस घर की दीवारों से भी राग निकलते होंगे। जब हम अली अकबर खान साहब के परिवार की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी म्यूजिकल रॉयल फैमिली की बात कर रहे हों। श्रोताओं, अली अकबर खान साहब का जन्म 14 अप्रैल 1922 को वर्तमान बांग्लादेश के शिवपुर यानी तब की त्रिपुरा रियासत में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मध्य प्रदेश की छोटी सी रियासत मैहर में बीता। मैहर की फिजाओं में शारदा देवी के मंदिर की घंटियां और बाबा अलाउद्दीन खान के सरोद की गूंज एक साथ तैरती थी। इसी संगीतमयी वातावरण ने अली अकबर के व्यक्तित्व की नींव रखी। श्रोताओं, उनकी संगीत शिक्षा और साधना जैसे आंसुओं से सींचा गया संगीत है। अली अकबर खान साहब की तालीम संगीत इतिहास की सबसे कठिन गाथाओं में से एक है, क्योंकि उनके पिता बाबा अलाउद्दीन खान एक बेहद सख्त गुरु थे, विशेषकर अपने बेटे के लिए। बाबा का अनुशासन इतना सख्त था कि अली अकबर को दिन में 14 से 18 घंटे तक का रियाज करना पड़ता था।
1: जी हाँ, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, 3 साल की मासूम उम्र से ही अली अकबर सरोद के तारों से अपनी उंगलियों को लहूलुहान कर रहे होते। खान साहब अक्सर याद किया करते कि उन्होंने अपने बचपन में खिलौनों से नहीं बल्कि सुरों और तालों से लड़ाई लड़ी थी। बाबा का आदेश था कि जब तक उंगलियों से खून न निकल आए, सरोद के तारों पर खाल न जम जाए, तब तक रियाज रुकना नहीं चाहिए। बात न मानने पर या गलतियां करने पर उन्हें या कमरे में बंद कर दिया जाता था या फिर बरामदे के खम्बे से बांध कर रियाज करने को कहा जाता था।
0: अब ऐसे में अली अकबर रियाज से इतने तंग आ गए थे कि वे घर से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाबा अलाउद्दीन ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने स्टेशन मास्टर से पहले ही कह रखा था, तो अली अकबर साहब स्टेशन से ही वापस घर ले आए जाते। लेकिन बाद में संगीत के प्रति उनके प्रेम और पिता के प्रति सम्मान ने उन्हें रोक लिया। बाबा उन्हें शारदा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर ले जाते थे और हवाओं की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाहट और गिरते हुए पानी की आवाज को सरोद पर उतारने को कहते थे।
1: श्रोताओं, इसी दौर में पंडित रविशंकर भी बाबा अलाउद्दीन से सितार सीखने मैयर आए। अली अकबर और रविशंकर जी साथ बैठकर ही रियाज किया करते। इन दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी जिसने अली अकबर साहब को अपनी सीमाओं को और आगे धकेलने के लिए प्रेरित किया। अली अकबर खान साहब के बचपन का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। बाबा अपने बेटे को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनाना चाहते थे। एक दिन नन्हे अली अकबर रियाज करते करते थक गए और सो गए। बाबा ने जब देखा कि उनका बेटा सरोद छोड़कर सो रहा है तो वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अली अकबर का सरोद उठाया और कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए।
0: जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने कहा, अगर इस सास से प्यार नहीं कर सकते तो इसे छुओ भी मत। मासूम अली अकबर हफ्तों तक रोते रहे, लेकिन इसी कठोरता ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत कोई खिलौना नहीं बल्कि एक इबादत है जिसे पूरे होश में करना पड़ता है। इसके साथ ही बाबा ने उन्हें केवल सरोद नहीं बल्कि गायन और पखावज भी सिखाया ताकि उनकी लय और सुर की समझ संपूर्ण हो सके। इसी मेहर तालीम ने उन्हें वो गहराई दी जो बाद में उनकी शैली की पहचान बनी।
1: सोचिए श्रोताओं, जिस अनुशासन ने एक बच्चे का बचपन छीन लिया उसी ने दुनिया को एक स्वर सम्राट भी दिया। बाबा कहते थे कि संगीत वो नहीं जो कान को अच्छा लगे, संगीत तो वो है जो रूह को खुदा के करीब ले आए। इसीलिए अली अकबर खान साहब अपने बुढ़ापे में अक्सर कहते, मेरे पिता ने मुझे संगीत नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे संगीत में जलाया ताकि मैं कुंदन यानी शुद्ध सोना बन सकूं। उनके संगीत में जो गहरा दर्द और गंभीरता सुनाई देती थी वो उन्हीं सालों के एकांत, थकान और पिता की डांट का परिणाम थी।
0: श्रोताओं, बाबा अलाउद्दीन खान ने अपने शिष्यों को तीन मुख्य बातें सिखाई थी जो अली अकबर खान साहब के संगीत में साफ दिखती थी। शुद्धता यानी राग के स्वरूप से कोई समझौता नहीं। सादगी, इंसान जितना बड़ा कलाकार बने उतना ही झुककर चले। और करुणा यानी संगीत के जरिए दूसरों की सेवा करना। इस कठोर अनुशासन और रियाज के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। लोग दंग रह गए कि एक बच्चा इतनी परिपक्वता और दर्द के साथ सरोद कैसे बजा सकता है। लेकिन बाबा फिर भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अली अकबर से और 10 साल कड़ी मेहनत करवाई इससे पहले कि उन्हें उस्ताद की उपाधि दी जाती। फिर श्रोताओं, इसके बाद उनके सरोद की झनकार ने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।

0: अली अकबर साहब ने सरोद वादन में गायन अंग को प्रतिष्ठित किया। उनके सरोद से जब मींड यानी सुरों का जुड़ाव सुनाई देता था तो ऐसा लगता था मानो कोई इंसान गा रहा हो। उनकी ताने बिजली जैसी तेज नहीं बल्कि समंदर की लहरों जैसी गंभीर और गहरी होती। उनकी सबसे बड़ी देन राग चंद्रनंदन है, जिसे उन्होंने चार रागों मालकौंस, चंद्रकौंस और नंदकौंस और साथ ही कौंसी कन्हाड़ा के मेल से रचा था। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब पूरे विश्व में भारतीय संगीत के सबसे बड़े एम्बेसडर माने जाते हैं।
1: जी हाँ, सोचिए, विश्व विख्यात वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन ने उन्हें दुनिया का महानतम संगीतकार करार दिया था। 1955 में यहूदी मेनुहिन के निमंत्रण पर वे अमेरिका गए और वहां भारतीय शास्त्रीय संगीत का अपना पहला लॉन्ग प्लेइंग यानी LP रिकॉर्ड जारी किया। अमेरिकी टीवी कार्यक्रम द एलिस्टार कुकी शो पर पहली बार शास्त्रीय संगीत पेश किया। इसके बाद तो उनकी ख्याति पश्चिम में बढ़ती ही गई। उन्हें पूरी दुनिया से कॉन्सर्ट के बुलावे आने लगे। पूरे विश्व में खान साहब ने अपने गुरु भाई और बहनोई पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। ये दोनों मंच पर बैठते थे तो सरोद और सितार के बीच जैसे बातचीत होती थी। दोनों ने मिलकर भारतीय संगीत को जो गरिमा दी वो एक मिसाल है। रविशंकर जी हमेशा कहते थे, अली अकबर मुझसे कहीं ज्यादा बड़े संगीतकार हैं।
0: पश्चिम में उनके प्रसिद्धि का आलम कुछ यूं था कि लोग उनसे संगीत सिखाने का भी अनुरोध करने लगे, जिसमें कई तो बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि प्रसिद्ध सरोद वादक केन ज़करमैन। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने सन 1967 में कैलिफोर्निया में अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जहां उन्होंने हजारों विदेशी शिष्यों को भारतीय परंपरा से भी जोड़ा।

0: और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस्ताद साहब के फिल्मी सफर की, क्योंकि पश्चिम ही नहीं कई महान भारतीय दिग्गज भी उनके मुरीद थे, जिसमें सर्वोपरि थे महान फिल्मकार सत्यजीत रे। जी हाँ, अली अकबर खान साहब उस चुनिंदा शास्त्रीय दिग्गजों में थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी संगीत की शुद्धता और उसकी रूहानी गहराई से कभी समझौता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन जो भी दिया वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीत के मील के पत्थर ही माने जाते हैं। जैसे 1960 में आई सत्यजीत रे की कालजयी फिल्म देवी का संगीत उस्ताद अली अकबर खान ने ही किया था। फिल्म के गंभीर और धार्मिक विषय को खान साहब के सरोद और बैकग्राउंड स्कोर ने एक नई ऊंचाई दी। सत्यजीत रे खुद संगीत के पारखी थे और खान साहब के साथ उनका तालमेल फिल्म जगत की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
1: श्रोताओं, जब सत्यजीत रे ने फिल्म देवी के लिए खान साहब को बुलाया तो खान साहब ने उनसे कहा, देखिए रे साहब, मैं फिल्मों का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि 3 मिनट का गाना कैसे बनता है, मैं तो घंटों रियाज करने वाला फकीर हूँ। सत्यजीत रे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजी खान साहब, मुझे आपसे गाना नहीं चाहिए, मुझे बस वो सन्नाटा चाहिए जो आप अपनी सरोद से दो सुरों के बीच पैदा करते हैं। यही वजह थी कि देवी फिल्म का बैकग्राउंड संगीत आज भी विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ स्कोर्स में गिना जाता है। खान साहब ने साबित कर दिया कि कभी कभी वो संगीत सबसे प्रभावशाली होता है जो बजाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। श्रोताओं, उस्ताद अली अकबर खान साहब के फिल्मी संगीत से जुड़ा सबसे दिलचस्प और रूहानी किस्सा फिल्म शुधित पाषाण की रिकॉर्डिंग का है। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक शास्त्रीय उस्ताद अपनी कल्पना से सुपरनेचुरल माहौल पैदा कर सकता था। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। कहानी एक ऐसे महल की थी जहां की दीवारों और पत्थरों में पुरानी रूहें और इतिहास की चीखें कैद थीं। तपन सिन्हा चाहते थे कि संगीत ऐसा हो जो डरावना ना हो बल्कि रोमांचक और रहस्यमय हो।
0: बिल्कुल, और खान साहब ने इस फिल्म के लिए एक ऐसा ही अद्भुत प्रयोग किया भी। उन्होंने महल की निर्जीवता और वहां की गूंज को दिखाने के लिए जल तरंग का उपयोग किया। जब सरोद की गहरी और भारी आवाज के साथ जल तरंग की टिन-टिन सुनाई देती थी तो ऐसा लगता था मानो महल की दीवारों से पानी की बूंदें गिर रही हों या कोई अदृश्य नर्तकी पायल बजा रही है। कहा जाता है कि फिल्म के एक खास दृश्य के लिए खान साहब ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सारी लाइट्स ही बंद करवा दी थी।
1: जी हाँ, वे चाहते थे कि वादक उस अंधेरे और अकेलेपन को महसूस करे जो फिल्म के नायक को उस डरावने महल में महसूस हो रहा था। अंधेरे में बजती सरोद की उन तानों ने संगीतकारों पर भी ऐसा असर किया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया था। और जब फिल्म रिलीज हुई तो संगीत की इतनी चर्चा हुई, खुद पंडित रविशंकर ने फिल्म देखने के बाद कहा, अकबर साहब, आपने जिस तरह से शुधित पाषाण में सुरों का इस्तेमाल किया है वैसा दुनिया में कोई और नहीं कर सकता, आपने वाद्य यंत्रों से इंसानी आवाजें निकाल दी। श्रोताओं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला।
0: इसके अलावा उन्होंने फिल्म आंधिया में भी संगीत दिया जिसमें लता जी का गाया हाय कहीं दूर चले और हेमंत कुमार जी की आवाज में सब दिन एक समान नहीं बहुत ही लोकप्रिय हुए। लेकिन बिस्मिल्ला खान और बड़े गुलाम अली खान की तरह अली अकबर खान साहब को भी फिल्मों की बनावटी दुनिया और स्टूडियो की आपादापी रास नहीं आई। वो कहा करते थे कि फिल्मों में संगीत निर्देशक को निर्देशक के मुताबिक ही चलना पड़ता है जिससे कलाकार की अपनी आजादी खत्म हो जाती है। वो अपनी स्वच्छंद साधना को अधिक महत्व देते थे।
1: उस्ताद अली अकबर खान साहब न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष थे बल्कि वे उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारतीय संगीत को एक गरिमापूर्ण पहचान दिलाई। उन्हें उनके जीवन काल में 5 बार 1970, 1983, 1996, 1997 और 1998 के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ये एल्बम्स थे श्री राग, द ग्रेट जीनियस ऑफ सरोद, देन एंड नाउ लेगेसी और पासिंग ऑन द

0: इसमें से 1997 का नामांकन बहुत खास था क्योंकि इसमें उस्ताद ने एल्बम लिगेसे में आशा भोसले जी के साथ काम किया था। इस एल्बम में आशा जी ने खान साहब के निर्देशन में उन दुर्लभ बंदिशों को गाया जो बाबा अलाउद्दीन खां के खजाने से आई थी। ये शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण था। श्रोताओं, ग्रेमी नामांकन केवल एक पुरस्कार की दौड़ नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि मैयर घराने की शुद्ध गायकी और सरोद वादन को पश्चिमी जगत ने कितनी गहराई से स्वीकार किया था। ग्रेमी के मंच पर उन्हें हमेशा एक विद्वान के रूप में ही देखा गया जिन्होंने संगीत की सीमाओं को बहुत छोटा कर दिया। इसके अलावा 1991 में खान साहब को अमेरिका का प्रतिष्ठित मैक आर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे श्रोताओं।
1: और जब पूरी दुनिया में उन्हें सम्मान मिलने लगे तो अपना देश कैसे पीछे रहता। उस्ताद अली अकबर खान साहब को भारत सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा उनके असाधारण योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने खान साहब को संगीत के क्षेत्र में उनकी तपस्या और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति का मान बढ़ाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया। सन 1967 में पद्म भूषण ये भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये उन्हें उस दौर में मिला जब वे सरोद वादन में अपनी शैली को स्थापित कर चुके थे। 1989 में उन्हें पद्म विभूषण मिला। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार उनके संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और उनकी महानता का आधिकारिक प्रमाण था।
0: श्रोताओं, सन 1963 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। खान साहब को ये पुरस्कार हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सरोद के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलो यानी कि रत्न सदस्य भी चुना गया जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है और एक समय में बहुत कम जीवित कलाकारों को दिया जाता है। सन 1943 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने उन्हें उनके दरबार में नियुक्त करने के बाद आधिकारिक रूप से उस्ताद की उपाधि से भी नवाजा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्कार कालीदास सम्मान भी उन्हें प्रदान किया गया और भारत के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि देकर भी सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में ये महान स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया लेकिन उस्ताद कहां कभी जाते हैं, वो बस आते हैं, कभी सांस पर, कभी किसी आवाज पर। जब भी कोई सरोद का तार छेड़ेगा, जब भी कोई राग चंद्र नंदन का आलाप भरेगा और जब भी कोई शिष्य गुरु परंपरा की शुद्धता की बात करेगा, खान साहब वहां मौजूद रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि वो पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। वे सरोद के ऐसे जादूगर थे जिन्होंने न केवल तारों को छेड़ा बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक सुर में पिरो दिया। श्रोताओं, अली अकबर खान के बेटों ने भी उनकी जलाई संगीत के इस मशाल को आगे बढ़ाया। उस्ताद आशीष खान अली अकबर खान के सबसे बड़े पुत्र हैं और दुनिया के बेहतरीन सरोद वादकों में गिने जाते हैं। उन्होंने ग्रेमी नामांकन भी प्राप्त किया है। ध्यानेश खान भी एक कुशल सरोद वादक थे जिनका असमय निधन हो गया। खान साहब के एक और प्रतिभावान पुत्र राज दत्त खान भी सरोद की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं और उनके बेटे आलम खान वर्तमान में अमेरिका में अपने पिता की विरासत और कॉलेज का कार्यभार संभाल रहे हैं।
0: श्रोताओं, उम्मीद है उनके सुपुत्रों और इनके शिष्यों के जरिए उनके संगीत की खुशबू हमेशा इस धरती को महकाती रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे अगली बार और खोलेंगे किसी और कला साधक की जिंदगी की डायरी के पन्ने।
1: श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में आज हमने चर्चा की महान संगीतकार सरोद वादक अली अकबर खान के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
0: और मैं थी दीपक के साथ स्वाति।
1: तो दोस्तों चलते हैं, सुनते रहिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं,
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं विश्व कछुआ दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे जो हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स के जमाने से पहले से मौजूद है और आज भी हमारा साथी बनकर इस धरती पर, यानी लगभग 22 करोड़ सालों से इस धरती का हिस्सा है। यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले से ये जीव धरती पर मौजूद है, हमारी संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी कहानियों का एक महत्वपूर्ण किरदार भी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं कछुए की। अब प्रश्न ये उठता है कि कछुए पर आज बात करने का क्या उद्देश्य है। आज है विश्व कछुआ दिवस। जी हाँ, हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, और भी इस बारे में आपसे चर्चा होगी। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, वर्तमान में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं। आपने भोपाल के वनस्पति जगत पर PhD की है तथा पर्यावरण और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। सर, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
1: कार्यक्रम में सबसे पहला विचार या प्रश्न यही उठता है, ये कछुआ दिवस मनाने का इतिहास क्या है और आखिर ये कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है?
3: देखिए, कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। ये अमेरिका में कुछ संस्थाएं थी जो कछुओं के संरक्षण पे 80 और 90 के दशक में काम कर रही थी।
1: अच्छा।
3: काम करते करते उनको यह एहसास हुआ, डाटा कलेक्शन करके उनने पता लगाया कि कछुओं की जनसंख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है, तो उनने गंभीरता पूर्वक इस पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की और विधिवत रूप से 23 मई को ये सन 2000 से मनाना शुरू हुआ।
1: अच्छा।
3: अब चूंकि शुरुआत इसकी अमेरिका में हुई थी, पहले अमेरिका में ही मनाया गया, फिर धीरे धीरे कछुओं की गिरती हुई अवस्था को, उनकी संख्या को, उनके महत्व को देखते हुए ये पूरे विश्व में मनाया जाने लगा और आज हम और आप भी उसी कछुआ दिवस को मनाने के लिए चर्चा करें।
1: तो फिर प्रश्न ये उठता है सर कि इसके संरक्षण की हमको आवश्यकता महसूस क्यों हुई?
3: देखिए, कछुआ जो है जलीय इको तंत्र का की स्टोन स्पीसीज है।
1: अच्छा।
3: की स्टोन स्पीसीज क्या होती है कि यदि आपने उस स्पीसीज को निकाल दिया, हटा दिया वहां से
1: जी,
3: तो बाकी जो इको सिस्टम है वो भी कलेप्स हो जाएगा।
1: अच्छा।
3: पहले जो किले बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनमें एक दीवार के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाया जाता था जिसे की स्टोन स्पीसीज कहते थे, और यदि उसको हटा लिया जाए तो दीवार समेत छत भी भरभरा कर नीचे गिर जाती थी। तो वो शब्द उपयोग किया जाता है ऐसी प्रजातियों के लिए जो कि किसी भी इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे जंगल में टाइगर होता है, या कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं उसमें बरगद का पेड़ होता है। तो ये इसी प्रकार से कछुआ, चाहे वो समुद्र का पानी हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, दोनों के लिए की स्टोन स्पीसीज है, इसलिए इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए इस दिवस का मनाया जाना प्रारंभ किया गया।
1: तो सर, मतलब ये की स्टोन स्पीशी जो है तो वो क्यों बनता है, आखिर कारण क्या है, वो ऐसे क्या काम है उसके, या उसकी क्या गतिविधियां ऐसी हैं कि वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है इकोसिस्टम की कड़ी में?
3: देखिए, एक तो यदि हम थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से सोचे
1: जी,
3: तो कछुआ सर्वभक्षी प्राणी है।
1: माने
3: वो वेजिटेरियन भी है, वो इंसेक्ट्स भी खाता है, वो सड़ी गली चीजें भी खाता है, वो जीवित चीजें भी खाता है। तो जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है उस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा काम कह सकते हैं आप, जो काम नगर पालिका सफाई का शहरी क्षेत्रों में करती है वो काम पानी के अंदर कछुआ करता है।
1: अच्छा।
3: और पानी की तमाम ऐसी गंदगी जो मांस के रूप में होती है,
1: अच्छा,
3: उनका भक्षण करके, और इवन जो दूसरे जंतु मल का विसर्जन करते हैं पानी में, उनका भक्षण भी कर लेता है। तो एक तो बहुत ही अच्छा बड़ा सफाई कर्मी
1: जी,
3: है।
1: जी,
3: दूसरा, इकोसिस्टम में जो अन्य जंतु हैं उनका बैलेंस बनाए रखता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो कोरल रीफ है उनकी रक्षा करने में कछुओं का बहुत बड़ा योगदान।
1: तो सर अब हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कछुओं की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे इनका हम महत्व समझ सकते हैं।
3: विशेषताओं के साथ साथ ये भी स्मरण रखें कि हम किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कछुओं के बारे में, ताकि उनको जागरूकता हो, या कछुओं के संबंध में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, जो उनसे सीधे डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनमें जागरूकता है। तो देखिए, कछुए का एक तो विशेषता यह होती है, समुद्र में पाए जाने वाले कछुए हों या नदियों में पाए जाने वाले, वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलते हैं
1: जी।
3: उनको ज्ञान रहता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं।
1: अच्छा।
3: एक तो महत्वपूर्ण बात यह हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कछुए का जीवन काल बहुत बड़ा होता है, यानी वो उस इकोसिस्टम में काफी साल तक बना रहेगा।
1: जी।
3: दो बातें हुई। तीसरी बात यह हुई कि वो तालाब की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो मछलियां हैं, जो मेंढक है, जो क्रस्टेशिया है, जो घोंगे हैं, और जो अन्य प्राणियों का मृत मांस है, उनको सफाई करता रहता
1: जी,
3: है
1: जी,
3: तो आप अपने आप समझ सकती है कि इकोसिस्टम में कछुए कितना बड़ा योगदान निभा रहे हैं।
1: जैसे हम यदि भूमि पर देखें तो गिद्ध है या कौवे हैं या लकड़बग्घे हैं जो सड़ा गला मांस या इस तरह की चीजें खाके और हमारे इकोसिस्टम को साफ रखने का काम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, वही काम कछुआ भी करता
3: है। बिल्कुल, कछुआ उसी तरह का काम करता
1: है। तो सर बात यह आती है कि क्या कछुआ जो होता है उसमें अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं?
3: निश्चित रूप से कछुए को हम तीन तरह की प्रजातियों में बांटा जाता है अमूमन। कछुए का एक तो ये है कि ऐसे कछुए जो मैरीन वाटर में, यानी सी वाटर में, यानी समुद्री जल में, खारे पानी के वाटर में, पानी में पाए जाते हैं, एक प्रजाति हो गई समुद्री प्रजाति, उनको सामान्यतया टर्टल इंग्लिश में बोला जाता है।
1: जी
3: ठीक। अब इसके बाद दूसरी प्रजाति हुई जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी जो हमारे नदियों में पाया जाता है मोस्टली, या बड़े बांधों में पाया जाता है, उसमें पाए जाने वाले उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो दूसरी प्रजाति ये हो गई।
1: अच्छा।
3: तीसरी प्रजाति हो गई फ्रेश वाटर मार्स टर्टल, यानी जो थोड़ा कीचड़ में भी रह लेते हैं, ऐसे कछुए। ये तीन प्रजातियां हैं, उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन।
1: अच्छा अच्छा।
3: जो कि ताजा पानी में रहते हैं उनको कहते हैं टॉर्टाइज या टेरापिन। अब इसमें आप मोटे तौर पे यदि हमको बच्चों को समझाना हो तो मोटे तौर पे बच्चों को सिर्फ दो बातें बताना चाहिए, एक टर्टल, एक टॉर्टाइज। टर्टल जो समुद्र में और खारे पानी में या मीठे पानी में रहता है, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज सामान्यतया स्टार टॉर्टाइज के लिए यूज किया जाता है जो पूरा जीवन काल पृथ्वी पर गुजारता है, टेरिस्ट्रियल होता है, धरातल पर रहता है, पानी में नहीं जाता। तो ये मोटे तौर पे, ये वैज्ञानिक तरीके से देखें तो मैंने तीन तरह में विभाजित कर दिया, समुद्री कछुए, फ्रेश वाटर कछुए और मार्श वाले, मर्ड वाले कछुए। और यदि हम बिल्कुल साधारणीकरण कर दें उसका, तो दो कछुए होंगे, एक होगा टर्टल और दूसरा होगा टॉर्टाइज जो कि भूमि पर।
1: अच्छा, तो सर जो टॉर्टोइज है जो भूमि पर रहता है वो पानी में भी रहने के का अभ्यस्त होता है ना सर?
3: नहीं, उसने अपने आप को ढाल लिया है जमीन पर रहने के लिए।
1: अच्छा अच्छा।
3: तो वो पानी में नहीं रहता, पानी का बिल्कुल अभ्यस्त नहीं रहता। यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊंगा
1: जी, जी।
3: कि जो कछुओं का विकास हुआ है, जो विकसित हुए हैं कछुए
1: जी,
3: इनको भी रीढ़धारी प्राणियों में गिना जाता है। एक अकशेरुकी होते हैं, कशेरुकी होते हैं, तो ये कशेरुकी प्राणी होते हैं।
1: अच्छा।
3: तो इनका जो विकास हुआ है ये उभयचर से हुआ है, एम्फीबियन से हुआ है, जिसका उदाहरण हम मेंढक समझ सकते हैं।
1: अच्छा।
3: मेंढक जैसे धरती पे भी काफी आराम से रह लेता, पानी में भी रह लेता है। तो कछुओं का, कछुए के जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, सरीसृप कहलाते हैं, उनका विकास, विकास के क्रम में विकसित हुए हैं वो उभयचर से।
1: अच्छा, तो सर मुझे अब इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में कितनी तरह की प्रजातियां होती हैं कछुओं की?
3: देखिए, पूरे आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें
1: जी,
3: तो लगभग 300 के आसपास प्रजातियां पूरे विश्व में कछुओं की पाई जाती हैं।
1: अच्छा।
3: जिसमें समुद्री कछुए भी शामिल है और पानी में, फ्रेश वाटर में रहने वाले समुद्र कछुए भी शामिल है
1: जी।
3: हमारा जो भारत देश है उसमें जो कछुए पाए जाते हैं वो लगभग 30 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। अच्छा। हमारे भारत देश में
1: जी,
3: और 30 से लगभग सभी प्रजातियां जो हम छोड़ दें, हमारे कुछ असम वाली प्रजातियां छोड़ दें, उड़ीसा वाली प्रजातियां छोड़ दें, तो फ्रेश वाटर की काफी सारी 30 प्रजातियां लगभग हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं।
1: अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि एक उभयचर प्राणी है जो कछुआ है और कशेरुक है यानी कि जिसकी मेरुदंड होती है,
3: जी हाँ।
1: तो सर एक बात यह भी आती है कि बहुत ही जिज्ञासा रहती है हमको भी और बच्चों को भी कि उसकी वो शेल होती है जो उसका कवच है वो क्या है सर, वो हड्डी है या मांस है या ये क्या चीज़ है जो उसकी रक्षा करता है।
3: हाँ, यह आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। उसके पहले हम थोड़ा सा धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
3: शेल के बारे में तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फीचर यह बताऊंगा कि पहले जब लोहे का आविष्कार करके ढाल नहीं बनाई गई थी तो जो योद्धा लोग थे जो युद्ध में जाते थे वो तलवार के साथ जो ढाल का उपयोग करते थे उसके उसी शेल का उपयोग करते थे,
1: कछुए की शेल का
3: उपयोग करते थे। और रासायनिक संगठन मुख्यतया इसका कैल्शियम कार्बोनेट और उसी से मिलते जुलते अन्य चीजों का होता है जिससे हमारा कैरोटिन हमारा ये बना होता है, नाखून वगैरह बने होते हैं उससे बना हुआ होता है। हम आते हैं भारतीय संस्कृति में कछुआ, हमारे धर्म में कछुआ और हमारे आध्यात्मिक जीवन में कछुआ। आध्यात्मिक की बात जब आती है तो गीता के पांचवें अध्याय के एक श्लोक में ऐसा कहा गया है कि हमारे यहाँ जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है, अपने कवच के अंदर समेट लेता है, इसी तरह से जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करके ध्यान लगाता है वो सच्चे ध्यान की ओर अग्रसर हो।
1: क्या बात है, मतलब कछुए का उदाहरण गीता में भी है,
3: ऋग्वेद में भी है।
1: अच्छा,
3: ऋग्वेद में भी गीता का दिया गया, शतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है। मगर एक और दूसरी बात है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी वैज्ञानिकता को धर्म से जोड़कर समझाने का एक प्रयास है कि विष्णु के जो दशावतार हैं उसमें एक कच्छप अवतार भी है,
1: कूर्मावतार
3: भी है। उसकी कहानी है, हम यदि संक्षेप में आज के दिन उस कहानी को याद करना चाहें कि जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन क्या, हम हर तरह का जैसे हमारा वैचारिक मंथन करते हैं तो विचार निकल के आते हैं, हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो भी एक तरह का मंथन है। तो इसी तरह से मंथन शब्द जो है वो एक तरह से वैचारिक चीजों से जुड़ा हुआ शब्द है, मथना। तो भाई इंद्र परेशान हुए, उनका बहुत सारी चीजें छिन गई उनसे, तो वो भगवान विष्णु के पास आए कि मैं क्या करूं भगवान, तो उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन की तैयारी करो। तो असुर और सुर माने देवता और राक्षस दोनों ने समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। उन्होंने समुद्र को मथने के लिए क्या करा जाए, तो आधार बनाना पड़ेगा मटका जैसा,
1: जी बिल्कुल,
3: तो और दूसरा होगा मथानी। तो ऐसा कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत था उसका बनाया आधार, यानी मटका जैसा बनाया, और वासुकी नाग थे उनका बनाया रस्सा और मंथन हुआ। तो अब ये हुआ

0: पहले से इस बात का उल्लेख है कि जीवन का जो उत्पत्ति हुई है
1: जी,
0: वो जल से हुई है। जैसा आपने अभी कहा 25 करोड़ साल पहले कछुआ पाया जाता था, इसका मतलब हम हमारे पास इस बात के पहले भी कहीं ना कहीं चिंतन करके हम इस बात को अपने सामाजिकता में ला चुके थे कि कछुआ बहुत पुराना जीव है।
1: जी सर, ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ हुआ, पौराणिक संदर्भ हुआ। तो इसी से मिलती जुलती एक बात यही आती है कि कहा जाता है कि कछुओं की बहुत उम्र होती है, लंबी उम्र होती है, तो कितने इनका जीवन काल होता है सर?
0: देखिए, अब ये इसमें भी कछुए की उम्र को लेकर भ्रांतियां हैं। मैं स्पष्ट करूं आपको कि एक वैज्ञानिक तथ्य जो है, एक अध्ययन हुआ था, एक कछुआ वैज्ञानिक आधार पर 152 वर्ष का पाया गया था। कछुए जीते हैं, काफी लंबी आयु जीते हैं, कैप्टिविटी में भी जीते हैं और खुले क्षेत्रों में भी जीते हैं, मगर जो हमारे पास रिकॉर्डेड है 152 वर्ष का कछुआ है। अभी आप कह रहे थे कि क्यों संरक्षण किया जाए, देखिए ये भी एक मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है और हम ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को कि क्यों कछुए का संरक्षण किया जाए। कल को मनुष्य अपनी आयु 152 साल करना चाहता है
1: जी,
0: निश्चित रूप से जीन्स की आवश्यकता पड़ेगी, अच्छे जीन्स की। यदि कछुए का, उसे 152 साल वाले कछुए का जीन सुरक्षित रहता है तो हम उन जीन्स को मनुष्य के जीन्स के साथ मिलाकर, ये जीन टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का युग आ गया है, चल रहा है, तो यदि हमने किसी प्रकार से हमारा जीन में परिवर्तन कर देंगे तो मनुष्य भी बड़ी आसानी से 152 साल जी पाएगा। तो इसलिए भी कछुए का संरक्षण करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा जीव चलता फिरता है जिसकी आयु 152 साल वैज्ञानिक रूप से प्रूव की है।
1: जी, ये तो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही सर। तो यहीं पर एक प्रश्न और भी आता है, क्या सर कछुए के दांत नहीं होते?
0: आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया
1: जी,
0: कछुए के दांत नहीं होते, मगर उसका जो मुंह के अंदर जो संरचना होती है वो काफी कठोर होती है खाने के लिए। दूसरी बात क्या कि मैंने आपसे कहा है कछुए का भोजन क्या होगा, मेंढक होगा, मछलियां होंगी, कुछ क्रस्टेशियंस होंगे, कुछ घोंगे होंगे
1: जी,
0: और इसके बाद मृत मांस होगा, सड़ा हुआ मांस होगा। तो इन सबको चबाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कछुओं के दांत नहीं पाए जाते, ये सही बात है।
1: तो सर इनका मैंने सुना है कि इनकी हृदय गति भी बहुत धीमी होती है सर?
0: निश्चित रूप से, ये अच्छी बात है। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है। एक कछुआ होता है के बारे में अध्ययन किया गया, 2 साल बिना खाए पिए जीवित रहा, उसको कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया। यानी जितना ज्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट होगा उतना ज्यादा आपको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए जैसे हमारा हम वार्धक्य आ जाता है, हमारे बुढ़ापा आ जाता है, तो चूंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है इसलिए हम खाना भी कम हो जाता है और डाइजेशन पावर भी कम हो जाता है। तो कछुए के साथ यही बात है कि वो उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो लंबे समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। एक और बात आपको बताऊं मैं कि कछुए भी, हम जो आसपास जगत देखते हैं, हमारा जंतु जगत, उसमें एक तो मनुष्य और दूसरा पक्षी, इनका शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है
1: जी,
0: ये समतापी हैं। जैसे हमारे मनुष्य का जीव तापक्रम है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्थिर है। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी आएंगी तो हमारे शरीर का तापक्रम गिर के 90 हो जाए और गर्मी आने लगे तो 101 हो जाए, स्थिर रहता है। परंतु कछुआ ऐसा जीव है जिसके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए हम देखेंगे कि सर्दी में कछुए पानी के बाहर आकर बास्किंग करते हैं, उसको तकनीकी भाषा में, वन्य प्राणी की भाषा में बास्किंग कहते हैं, आके धूप सेक के अपना तापक्रम, शरीर का तापक्रम बढ़ाते हैं। और गर्मियां आती हैं तो वो सामान्यतया पानी में ही रहते हैं, बाहर आके बास्किंग नहीं करते, पानी के अंदर रहते हैं। इसके अलावा बहुत से कछुए ऐसे होते हैं जिसका मैंने आपको बताया ना, टर्टलटाइस, वो हाइबरनेशन एक तरह से सर्दियों में खाना पीना बंद कर देता है।
1: अच्छा,
0: या ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी उसका खाना बहुत कम हो जाता है।
1: यानी सर तपस्वियों का जीवन है, इसीलिए तपस्वियों जैसा उनकी आयु भी है,
0: आयु भी है, वैसे ही उनका जिसको हम कहेंगे चयापचय की दर या मेटाबॉलिक रेट उनका कम है, इसलिए उनका व्यवहार भी बिल्कुल वैसा।
1: जी सर, एक प्रश्न मेरा मन में ये भी आ रहा है कि जो जलीय कछुए हैं क्या वो मछली की तरह पानी में ही सांस ले लेते हैं या उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है?
0: बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा
1: जी।
0: इस प्रश्न को मैं आपको इस तरह से आपको बताऊंगा कि हमें समुद्री कछुए जो होते हैं, जो मैरीन टर्टल कहलाते हैं, वो हम 5 कछुओं की बात करेंगे।
1: अच्छा जी,
0: ठीक है। पहला कछुआ होता है समुद्री कछुआ, बोलते हैं ग्रीन टर्टल। अब आपने सांस रोकने की बात करी, ग्रीन टर्टल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 5 घंटे तक सांस रोके रहता है पानी।
1: क्या बात,
0: समुद्री कछुआ है। दूसरा टर्टल है ओलब रिडले टर्टल, ये बड़ा खबरों में रहता है पूरी दुनिया में, क्यों रहता है मैं आपको भी बताता हूँ। नहीं, तीसरा है हॉकबिल कछुआ, ये समुद्री कछुओं के बारे में बात कर रहा हूँ। चौथा है लैदरी टर्टल, इसको शेर कछुआ कहते हैं। और विशेषता क्या है शेर कछुआ क्यों कहते हैं, इसका वजन 1000 किलो के आसपास होता है, बड़ा भारी कछुआ होता है।
1: अच्छा, तो सर ये मतलब समुद्र में इतना बड़ा
0: कछुआ पाया जाता है। और फिर इसके बाद है लॉगरहेड कछुआ, ये लॉगरहेड कछुआ लगभग विलुप्ति के कगार पे है, कम मिलते हैं। ये 5 तरह के प्रमुख कछुए हैं जो समुद्र में मिलते हैं। तो अब मैं आपको जो ओलिव रिडले टर्टल, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, चूंकि ये हमारे भारत के हिंद समुद्र तट पे पाया जाता है, उड़ीसा में खास तौर से। तो ये कछुआ काफी बड़ी संख्या में, ये ग्रुप बना के, समूह बना के रहते हैं। कछुआ अकेले रहने वाला प्राणी नहीं है,
1: सामाजिक प्राणी है,
0: समूह बना के रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया अपनी गति करते हैं, तो इन्हें दिशा किस दिशा में जाना है, बीच समुद्र में है उनको किनारे पे आना है तो कैसे आएंगे, वो आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। मैंने कहा
1: मैग्नेटिक मतलब कि सर साउथ और नॉर्थ का इनको ज्ञान है,
0: चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं, उसके हिसाब से गति करते हैं। अब इनको अपना प्रजनन करना है, बच्चे देना है। जितने भी दुनिया में कछुए पाए जाते हैं रहते जरूर पानी में हैं, परंतु प्रजनन वो जमीन पे आके करते हैं।
1: अच्छा सर, समुद्री जो कछुए हैं
0: वो भी करते हैं। अच्छा, और जो कछुए बाहर पृथ्वी पे रहते हैं वो तो करेंगे।
1: जी,
0: और मैंने आपको तीसरा मार्श वाले कछुए बताए, वो भी करेंगे
1: जी।
0: तो ये समुद्र के तट पे जहाँ रेत होती है वहाँ समुद्री कछुए करते हैं, जहाँ रेत नहीं होती वहाँ पृथ्वी पे पाए जाने वाले कछुए भुरभुरी मिट्टी में करते हैं। जो ओलिव रिडले आपको टर्टल्स की बात कर रहा था, ये कहा जाता है कि समुद्र का सबसे छोटा कछुआ है
1: जी।
0: बड़ा इंटरेस्टिंग है, हजारों की संख्या में उड़ीसा के तट पर आता
1: जी।
0: है और उड़ीसा के तट पर आकर ये केवल प्रजनन करने के लिए आता है। मादा आती है, अंडे देती है वहां पे, और इनक्यूबेशन जिसको हम कहते हैं कि वो जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चे को रखती है 9 महीने तक, या मुर्गी अंडे पे बैठ के उसको अंडा सेती है, इसी तरह से उनका इंक्यूबेशन, उनका गर्भ वो समुद्र की रेत होता है।
1: अच्छा,
0: अंडों का।
1: अच्छा अच्छा,
0: अंडे उसमें दबा देते
1: जी, मतलब समुद्र की रेत में गड्ढा खोद के उसमें अंडे दिए,
0: अंडे बाहर आके।
1: अच्छा,
0: तट पे
1: जी,
0: समुद्र के पानी के अंदर नहीं, तट पे
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं और वो 40-45 दिन 80 दिन जितना भी उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद उसमें से वो बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चों को जन्म से ही मैग्नेटिक फील्ड का ज्ञान होता है।
1: अच्छा।
0: उतर के समुद्र की तरफ चलने लगते हैं।
1: क्या बात है,
0: उल्टा नहीं चलते, ऐसा नहीं चलेंगे कि जिधर समुद्र उस तरफ चलना शुरू कर दे, वो माँ नहीं आती उनको लेने के लिए।
1: अच्छा,
0: माँ का काम है अंडे दिए चली गई वापस समुद्र में, ना रक्षा करती ना कुछ करती, और फिर वो अपने आप समुद्र में जाके अपने समूह से जाके मिल जाते हैं, ओलब रिडले टर्टल।
1: अब प्रश्न यही आता है सर कि आखिर इतनी प्यारी प्रजाति जो है कछुआ प्रजाति, ये विलुप्त क्यों हो रही है, क्या कारण है कि ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए?
0: देखिए, उसी के लिए तो विश्व कछुआ दिवस मनाना शुरू किया गया है कि जागरूकता है। नंबर एक जो बात है, हैबिटेट लॉस।
1: अच्छा,
0: उनका जो आवास है, प्राकृतिक आवास है, वो नष्ट होता जा रहा है। तालाब थे, उनको खत्म कर दिया
1: जी।
0: नदियां हैं, उनको खत्म कर रहे हैं या प्रदूषित कर रहे हैं, या तो नदियों को हमने समाप्त कर दिया है, समाप्त नहीं कर पाए हैं तो प्रदूषित कर दिया
1: जी,
0: है उनको। तीसरी बात है, समुद्र के कछुओं के बारे में यदि आप सोचें तो प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं छोटे छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं, जिनको कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, और माइक्रोप्लास्टिक्स को वो कुछ आहार समझ के कछुए खा लेते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उसके कारण नाश विनाश हो रहा है उनका। दूसरा हो रहा है कि कई बार समुद्र में तेल छोड़ा जाता है, तेल जैसी, ग्रीस जैसी चीजें, ऑयल जैसी चीजें छोड़ दी जाती हैं।
1: अच्छा, जहाजों से जो लीक हो जाती
0: लीक हो जाता है
1: जी, जी,
0: उसके अलावा भी जो प्रदूषित पानी है उसके साथ, बहुत सारा शहरों के पास जहाँ है समुद्र में प्रदूषण का पानी छोड़ रहे हैं, तो एक लेयर सी बन जाती है पानी उसके ऊपर तेल की
1: जी,
0: जिसके कारण अंदर कछुए को सांस लेने में तकलीफ होती
1: है।
0: सभी कछुए ऐसे नहीं होते कि 2-2 घंटे सांस रोक लें, सांस तो सबको ऑक्सीजन सब
1: उन्हें
0: चाहिए।
1: सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए,
0: सांस लेने के लिए सतह पर, या जो ऑक्सीजन पानी में है
1: जी जी
0: उसमें उससे लेंगे वो पानी की ऑक्सीजन लेंगे
1: जी,
0: तो पानी की ऑक्सीजन भी यदि आप उसके ऊपर आयल की सतह बना देंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है पानी में अब्सॉर्ब होती है वो कम हो जाएगी,
1: कम हो जाएगी।
0: तो ये बड़े कारण है। तीसरा बड़ा कारण है कि जो लोग मछली पकड़ते हैं उसके साथ साथ कछुए भी पकड़ लेते हैं, तो कछुआ पकड़ में आ जाता है तो वो कछुए को बेच देते हैं। कछुआ, कुछ लोग कछुए खाते भी हैं जो कि हमको आहार के रूप में दूसरी चीजों पर जाना चाहिए बजाय कछुए के, उसके कारण भी कछुओं के जीवन पर संकट आ रहा है। एक बड़ा संकट और आ रहा है बांध बनने के कारण।
1: अच्छा,
0: बांध बनने के कारण बांध के किनारे पे कछुए नहीं पहुंच पाते जहां उनका उनको अंडे देना है,
1: आवास था
0: तो
1: जी, जी।
0: तो सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो आवास का संकट है कछुओं के साथ, इसलिए कछुओं की संख्या में कमी आ रही है। अब मैं अभी समुद्री कछुओं के बारे में तो आपने पूछ लिया था मेरे से, किंतु आपने मीठे पानी के कछुए के बारे में नहीं पूछा जो हमारे मध्य प्रदेश के कछुए हैं। बताना चाहें लोगों को कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे कछुए हैं, 5 प्रमुख कछुए जिनका संरक्षण होना चाहिए और जो समाप्त होते जा रहे हैं। तो उनमें पहला कछुआ जो है वो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये टार्टाइज और टेरापिन कहलाते हैं, तो पहला वाला फ्रेश वाटर टर्टल है, रेड क्राउन रूफ टर्टल।
1: अच्छा, जो मध्य प्रदेश में,
0: जो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में भी चंबल नदी में मिलता है, मुरैना में पाया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये बहुत ही नियर टू एक्सटिंक्शन है। अब आप समझेंगे, एक तो मनुष्य का लालच, रेत की खुदाई,
1: अच्छा रेत खनन,
0: रेत खनन। और देखिए मैंने आपसे कहा कि वो बच्चे कहाँ दे रहा है अपने अंडे, कहाँ दे रहा है, तट पर आकर रेत में दे रहा है और उस रेत को आप भर के ले जा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण उनका यह है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको जो संस्था है अंतरराष्ट्रीय इनको मॉनिटरिंग करती है, इनको उसने रेड डाटा लिस्ट में डाला हुआ है के कार पे। दूसरा एक सामान्य कछुआ है जिसको जो हम लोग देखने में आता है, फ्लेप शेल टर्टल।
1: अच्छा,
0: उसका जो ऊपर की जो वो रहता है ना, वो बिल्कुल जरा नाजुक सा रहता है।
1: अच्छा,
0: नरम रहता है। फ्लेप शेल टर्टल। नंबर तीसरा है गंगीज सॉफ्ट टेल टर्टल।
1: अच्छा,
0: गंगा में और उसकी गंगा की जो सहायक नदियां, जैसे आप गंगा की सहायक नदियां किसको कहेंगे, बेतवा को कह दीजिए, चंबल को कह दीजिए, इनमें जो पाया जाता है, यमुना है, इन इसको मिलता है गंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल। तीसरा है थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल। उसके ऊपर तीन लाइन पंक्तियां होती हैं, तीन लाइनें खिंची होती हैं, इसलिए थ्री लाइन रूफ टर्टल कहलाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया वो था स्टार टॉर्टाइस। ये स्टार टॉर्टाइस पाया जाता है कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश की यदि आप बात करें तो ये सारनी बैतूल के जंगल में मिलता है, गांधी सागर के जंगल में मिलता है। ये भी नियर टू एक्सटिंक्शन है, विलुप्ति की कगार पे है, गिनी चुनी संख्या में बचे हैं। इनका भी आवास खतरे में पहुंच गया है। आवास का खतरे में पहुंचने का कारण मेन भी आदमी भी है, पालतू पशु भी हैं। इनके आहार, एक बड़ा भी बात हो रही है आहार, ये आहार नहीं है इनके। ये जो स्टार टर्टाइस है बहुत ही सुंदर किस्म का कछुआ है, इसकी तस्करी भी होती है और इसका आहार ये शाकाहारी होता है।
1: अच्छा,
0: तो जंगल में ह्यूमन इंटरवेंशन इतने बढ़ गए हैं कि उसको अपना आहार नहीं मिल पाता है। और जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा था कि उनके दांत होते हैं कि नहीं होते, तो जिसके दांत होते हैं जरा और चीजें भी खा लेता है, जिसकी दांत नहीं होंगे उसको लिमिटेड खुराक ही होगी। तो स्टार टॉर्टाइस भी विलुप्ति के कगार पे है। ये हमारे मध्य प्रदेश के 5 कछुओं के बारे में बात।
1: अच्छा, तो सर ये जब संरक्षण की बात चल रही है तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि भारत में कछुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम क्या कहीं क्या अभयारण्य हैं, और यदि हैं तो कहाँ कहाँ हैं?
0: देखिए, एक तो बहुत पहले से कछुओं के संरक्षण के बारे में जहाँ चर्चा की, जहाँ काम किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है, वो है चेन्नई।
1: अच्छा,
0: है ना, चेन्नई में प्रारंभ से ही कछुओं के बारे में काफी काम किया गया है। तो एक तो संरक्षित स्थल है, कोई घायल कछुआ होता है, बीमार होता है, वो लोग इलाज भी करते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं। वहाँ शार्प सेल टर्टल, वहां पर शार्प डॉटर टॉर्टाइस और सी टर्टल दोनों पे काम किया जाता है। मगर भारत में अभी 2 अभयारण्य बनाए गए हैं स्पेसिफिक कछुए के। एक तो बनाया गया है वाराणसी में, वाराणसी में रामनगर के आसपास, रामनगर से लेकर 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में कछुओं का संरक्षण किया जा रहा है। तो जो गंगा नदी में कछुए पाए जाते हैं, ना केवल उनका संरक्षण हो रहा है बल्कि वहां पर अन्य कहीं से भी कछुए आते हैं तो उनको भी संरक्षित किया जाता है।
1: अच्छा,
0: ये जो संरक्षण वाराणसी में हो रहा है ये हो रहा है सॉफ्ट वाटर यानी मीठे पानी वाले कछुओं के संरक्षण और उनका अभयारण्य। दूसरा जो स्थान है जहाँ बड़े पैमाने पर कछुओं का संरक्षण किया जाता है वो उड़ीसा की मैंने आपको बात बताई। उड़ीसा में भी संरक्षण हो रहा है इसका, और वहां पर भी यहाँ पर ओलिव रिडरे आते हैं, उस जगह का नाम है केंद्रापाड़ा।
1: अच्छा,
0: तो वो केंद्रापाड़ा में वहां पर संरक्षण करके वहां भी सेंचुरी बनाई गई है और इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो दोनों तरह का संरक्षण हो रहा है, समुद्री कछुओं का भी भारत में संरक्षण के लिए सेंचुरी बनाई गई है और फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए भी बनाई गई।
1: तो सर, ये अभयारण्य में सबसे ज्यादा तो जब इनका क्या कोई विशेष प्रजनन काल होता है क्या, उस समय विशेष ध्यान दिया जाता होगा?
0: मोटे तौर पर ऐसा समझिए, वैसे तो हर कछुए का प्रजनन काल में अंतर होता है, मगर सामान्यतया कछुए बारिश के पूर्व प्रजनन करते हैं ताकि रेत की स्टेबिलिटी बनी रहे और बारिश के पहले बच्चे निकल आए और वो पानी में चले जाए,
1: यानी अमूमन गर्मियों के समय में।
0: गर्मियों में नवंबर से लेके और अप्रैल के बीच में इनका सामान्यतया प्रजनन काल रहता।
1: तो सर, अब बात यह आती है, आपने संरक्षण के लिए जो अभयारण्य बताए वो, लेकिन हम हमारे स्तर पर कछुओं के संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं?
0: एक तो जो लोग कछुओं का शिकार कर रहे हैं,
1: जी,
0: अवैध व्यापार कर रहे हैं, देखिए पहले क्या होता था, अभी भी ये प्रथा परंपरा है कई देशों में, तो वहां पे कछुओं की मांग रहती है। कछुए का जो शेल होता है ना, उससे कान के टॉप्स बनाए जाते थे, कुछ अंगूठियां बनाई जाती थी, गले में पहनने के गारमेंट्स बनाए जाते थे। कछुए के बारे में मिथक है कि वो यौन शक्ति को बढ़ाता है, वो उसके कारण गाए जाते थे, उसके कारण कछुए का था। अब कछुए के संरक्षण के लिए कछुए, जितने प्रकार के कछुए हैं वो सभी के सभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शामिल किए गए हैं।
1: अच्छा,
0: यदि कछुओं का कोई मारता है या अवैध व्यापार करता है या अवैध रूप से पालता है तो उस अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम 3 साल से लेके अधिकतम 6 साल तक की सजा है।
1: अच्छा,
0: तो हमको कछुओं का संरक्षण इसलिए करना चाहिए कि कछुआ बहुत ही विनम्र जीव है, किसी को परेशान नहीं करता, काटता नहीं है, मारता नहीं है, हानि नहीं पहुंचाता, की स्टोन स्पीसीज है, पानी की स्वच्छता बनाए हुए है और हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और जंतुओं को इसलिए संरक्षण करना चाहिए, बेजुबान है, बोलते नहीं है, अपना कष्ट बता नहीं पाते हैं। कछुए दिवस पर जो परिचर्चा है उसमें मैं तो यही कहना चाहूंगा, यदि हमको भी जीवित रहना है प्रकृति के साथ तो कछुओं का भी संरक्षण करना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए आज और आपने कछुए के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई बातें तो हमको आज पहली बार पता चली हैं कि कछुआ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण प्राणी है। तो श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में मनुष्य का बढ़ता हुआ दखल, जैसे कि प्रदूषण है या अवैध शिकार है या हमारे शौक है, इसके कारण इस प्यारे से प्राणी को विलुप्ति की कगार पर पहुंचना पड़ गया। जरूरत है कि हम इनका संरक्षण करें और इसके लिए विश्व में जागरूकता बढ़ाएं, और इसीलिए ही इस विशेष दिवस को यानी विश्व कछुआ दिवस को हम मनाते हैं। सर, स्टूडियो में आने के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं संतवाणी समारोह के दूसरे दिन की रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां संतवाणी समारोह के दूसरे दिन यानी 23 मई की शाम भक्ति गायन की प्रस्तुतियां दी गईं।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह है भक्ति पदों का गायन मंजुषा पाटिल का।
1: एक सबको जो भाता है, सबको अच्छा लगता है, वो एक कन्नड़ भजन मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। सबके घर में बजता

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की
2: क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह,
1: ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
3: क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुआ था। रास बिहारी बोस स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत की आजादी की प्राप्ति में लगा दिया। वे विस्मय प्रकृति के अद्भुत व्यक्ति थे जिनमें एक विशिष्ट तेज और ओज था। उनकी वाणी इतनी सशक्त और गर्जन भरी थी कि सुनने वालों की नसों में खून खौलने लगता था। उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया जिनमें वाइसराय बमकांड मुख्य था। उन्होंने लिबर्टी नामक पर्चा छापकर आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया था। सन 1912 में उन्होंने लॉर्डिंग को सबक सिखाने के लिए उस पर बम फेंका और फिर बचकर जापान भाग गए। जापान में रहकर भी उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन का संचालन किया। रास बिहारी बोस से प्रेरणा लेकर ही सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। क्रांतिकारी रास बिहारी का देहावसान 1945 में जापान में हुआ था।
4: अरे राम राम काका,
5: राम राम,
6: राम राम।
4: लो आज हम फिर सब आ गए आपकी शरण में।
5: क्या बात है, क्या घर के खाने से पेट भर गया जो फिर चले आए हो हैं?
7: अरे नहीं काका, भला घर के खाने से कभी पेट भरा है? ये तो आपका प्यार है जो हमें खींच लाता है बार बार आपके पास।
5: हमारा प्यार नहीं, हमारा खाना खींच लाया है तुम सबको।
7: काका आप तो बुरा मान गए, सच ये है कि आपका खाना लजीज होता है,
4: पर इसके साथ साथ कुछ और भी बात तो है काका।
5: वो क्या है बताओ? भला बता दोगे तो आज मैं भाजा के साथ तंदूरी रोटी खिलाऊंगा।
7: अरे अरे भाजा के साथ तंदूरी रोटी?
8: मत बताना कुछ मत बताना।
5: अरे कहाँ भाजा और कहाँ तंदूरी रोटी,
8: अरे ये भी कोई मेल है खाने का?
5: लगता है हमारे काका सठिया गए।
8: हाँ, हा?
5: तभी तो कहाँ बंगाल के भाजे के साथ पंजाब का मेल कर रहे हैं।
7: हाँ काका, ये क्या बात हुई बोला।
5: हाँ सही कहा तुम लोगों ने, तुम्हारा ये काका सचमुच सठिया गया है। भाजा के साथ तंदूरी के अलावा बाल मिठाई या चॉकलेट मिठाई परोसता तो तुम लोग सचमुच मुझे बेवकूफ समझते।
8: पर काका आपने तो कभी इस तरह की बेमतलब बातें की नहीं, फिर ये अचानक बंगाल पंजाब और कहां उत्तराखंड की बातें करने लगे।
5: अच्छा तुम ही बताओ, एक आदमी भला कितने तरह की जिंदगी एक साथ जी सकता है?
8: लो यहाँ आदमी अपनी तरह की एक जिंदगी ही ठीक से नहीं जी पाता, उस पर आप कहते हैं कि कितने तरह की जिंदगी जी सकता है। क्या काका आज आपको क्या हो गया है?
5: आज तुम सब जिस शहीद की कहानी सुनोगे वो एक नहीं कई तरह की जिंदगी जीता था।
7: कई तरह की जिंदगी?
5: उसकी यही विशेषता रही कि अंग्रेज पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका। अपनी चालाकी से उसने पूरे ब्रिटिश सरकार को ऐसा छकाया कि लोग हतप्रभ रह गए।
8: ऐसा कौन शहीद होगा जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? बताओ ना काका, बताओ ना।
7: काका बताओ ना।
5: हम नहीं बताएंगे, तुम सबको एक क्लू जरूर दे देंगे, समझदार हो तो बता दोगे। वो भारतीय होने के बाद भी जापान का नागरिक था, उसकी शादी एक जापानी लड़की से हुई थी।
8: कौन था भाई?
7: काका आप हमें उलझा रहे हैं। हाँ
8: अच्छा,
7: आपकी सोबत में इतना तो जान गए हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जापान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
8: हाँ सही कहा।
7: क्यों
8: सही
7: क्यों है ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: और उसकी शादी भी एक जापानी से ही हुई थी, पर जापानी नागरिक कभी रहे नहीं वो। क्यों भाई ठीक है ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल। काका आप तो बता ही दो भाई, फिर तो सचमुच भाजा तंदूरी और पहाड़ी बादिये का तो मजा ही आ जाएगा।
5: वो शहीद मूल रूप से थे बंगला भाषी, नौकरी की देहरादून में, दिखने में हट्ठे कट्ठे पंजाबी जवानों की तरह। जापानी पत्नी का नाम था तोशी को।
7: काका
0: एक बात तो सही है कि आज हम आपके सामने बिल्कुल ही हार गए।
9: हाँ, ये बात तो सही
0: है भाई, है ना। जो सच है वो तो है।
9: हाँ, बिल्कुल।
0: हम ऐसे किसी शहीद को नहीं जानते जिसमें इतनी सारी विशेषताएं हों।
5: उस शहीद का नाम था रास बिहारी बोस।
0: रास बिहारी बोस,
9: अरे वाह, क्या बात है काका, रास बिहारी बोस।
8: तो काका, आज हो ही जाए कहानी रास बिहारी बोस की।
9: हाँ काका, हो ही जाए।
0: हाँ काका, आज तो हो ही जाए।
9: हो ही जाए।
5: तो सुनो शहीद रास बिहारी बोस की कहानी।
1: रास बिहारी बोस यानी बंगाल के रहने वाले, देहरादून में नौकरी करने वाले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली से अपनी गतिविधियां चलाने वाले, यारों के यार, बम बनाने में उस्ताद और साथ ही अपनी चलाकी और सूझबूझ से अंग्रेजों के हाथ कभी न आने वाले रास बिहारी बोस, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस सच्चे देशभक्त को लोग रासुदा के नाम से भी जानते थे।
10: रासू, हम तंग आ गए हैं तुम्हारी इस भागने की प्रवृत्ति से। आखिर तुम चाहते क्या हो?
11: मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ पिताजी।
10: किस तरह?
11: ब्रिटिश सेना में शामिल होकर।
10: ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला ब्रिटिश फौज में रहकर देश की सेवा किस तरह से करोगे?
11: पिताजी, आपके इस प्रश्न का उत्तर सही सही दूं या गलत रूप से पेश करूं?
10: देखो, झूठ तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, सच कहना ही होगा।
11: तो सुनिए पिताजी, मैं ब्रिटिश फौज में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेना है। यदि हम नौजवान आधुनिक युद्ध कला सीख जाएं, तो हम भारत माता को आजाद कराने की दिशा में कुछ कर सकते हैं।
10: कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम मुट्ठी भर लोग क्या ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले सकोगे?
11: पिताजी, यदि सभी ऐसा ही सोचने लगे तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? हाँ? इस तरह से भारत माता तो कभी आजाद हो ही नहीं पाएगी।
10: परिवार को दुख पहुंचाकर क्या तुम ऐसा कर पाओगे?
11: दुखी भारत को सुखी करने के लिए परिवार का दुख बहुत छोटा है पिताजी। एक के अस्तित्व की सार्थकता अनेक हितों के लिए।
10: ठीक है, तुमने जो रास्ता चुना वो बहुत ही कठिन है बेटा। एक पिता के नाते मैं तुम्हारे लिए केवल मंगल कामना ही कर सकता
11: हूं। पिताजी, पिताजी, कितने अच्छे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। पिताजी, मेरे पिताजी, भारत माँ का ये सपूत आपको
10: खुश रहो बेटा, खुश रहो।
1: तो ऐसी थी रासुदा के जीवन की शुरुआत। इसके बाद उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया। देहरादून में वन विभाग में शोध संस्थान में सहायक की नौकरी मिल गई। यह नौकरी उन्होंने इसलिए स्वीकार की ताकि प्रयोगशाला में काम करते समय उन्हें ऐसे रसायन मिल जाएं जिससे बम बनाए जा सके। अब रासुदा का क्रांतिकारी रूप खुलकर सामने आने लगा।
11: दोस्त, मुझे प्रेरणा मिली है कि भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स को किसी तरह से मजा चखाया जाए।
9: दादा, बहुत ही जल्द वो दिल्ली में दरबार का आयोजन कर रहे हैं।
11: तो फिर देर किस बात की? मैं योजना बनाता हूँ, पर इसके लिए वसंत कुमार विश्वास की मदद लेनी होगी।
9: वसंत विश्वास? दादा, ये कौन है भला?
11: तुम नहीं जानते, मेरा खाना बनाने वाला मेरा नौकर वो विश्वास वास्तव में बम बनाने और उसे चलाने की कला में निपुण है।
9: वाह, क्या बात है रासुदा, इधर रसोईया उधर बम निर्माता, वाह। उसके बनाए भोजन की तारीफ तो देहरादून में कई लोग कर चुके हैं।
11: उस पर किसी तरह का शक न हो
9: जी,
11: इसलिए उसे इस तरह से जानबूझकर पेश किया गया है। मैं उसे लाहौर भेज दूंगा जहाँ से वो लॉर्ड होर्डिंग्स पर हमले की योजना पर काम करेगा। वहाँ अवध बिहारी, बालमुकुंद और दीनानाथ भी हैं।
9: मगर इसके लिए बम कहाँ से मिलेगा?
11: अभी तो मैं चंद्रनगर जाकर बम की व्यवस्था करता हूँ।
9: जी जी,
11: हमें हमला 23 दिसंबर 1912 को करना है।
9: जी,
11: समय बहुत ही कम है, मैं चंद्रनगर जा रहा हूँ। कोई पूछे
9: जी
11: तो कह देना कि रसोईया भाग गया है, इसलिए उसे खोजने गया हूँ।
9: ठीक है दादा, ठीक है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। भारत माता की जय।

0: क्यों दोस्त
1: जी?
0: सारी तैयारियां पूरी हो गई, कोई चूक नहीं होना चाहिए।
1: कोई चूक नहीं होगी दादा, हमारी योजना पूरी तरह से पक्की है। नहीं बचेगा ये लॉर्ड हॉडिंग्स, और इसे बचना भी नहीं चाहिए।
0: वो देखो शाही जुलूस कितना लंबा है, हम उसके चांदनी चौक पहुंचने के इंतजार में।
1: हाथी पर उसकी सवारी कितनी बढ़िया लग रही है। देखो दादा, यहाँ भी पूरी शान और शौकत के साथ है।
0: आज वसंत अपना काम कर दिखाए तो समझो हमने फतह कर ली।
1: पर वो है कहाँ दादा?
0: अगर वो यहाँ होता भी तो आप उसे नहीं पहचान पाते बंधु।
1: अरे ऐसी क्या बात है उसमें?
0: वो देख रहे हो बैंक की इमारत को?
1: जी जी,
0: वहीं एक महिला के रूप में है वसंत विश्वास। अभी देखना वो अपना काम किस तरह से कर दिखाता है।

0: घर की गाड़ियों की तो जात ही नहीं होती, वे सभी को पार डालते हैं।
1: लाल साहब बेहोश हो गए, वे घायल हैं। अरे बाकी सब लोगों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया।

0: राजा बसंत तुमसे चूक कैसे हो गई?
1: पता नहीं राजूदा, दरअसल मैं महिलाओं की पत्ती में पीछे बैठा था, इसलिए सही स्थान पर बम पहुंचने में चूक हो गई। मैंने पूरी तैयारी के साथ बम फेंका था। लगता है लाट की किस्मत अच्छी थी।
0: क्या किस्मत अच्छी थी? तुमने बम सिगरेट के पैकेट में रखा था ना?
1: हाँ राजूदा, पूरा काम योजना के अनुसार हुआ था, बस एक छोटी सी चूक हो गई। अब यही चूक बड़ा पछतावा बन गई है मेरे लिए।
0: नहीं नहीं वसंत भाई, नहीं, हम विफल जरूर हुए हैं, पर इससे हमने अपना इरादा बता दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: राजूदा, आप भी इस सेट के लिबास में ऐसे लग रहे हैं जैसे सचमुच कोई मारवाड़ी सेट हो।
0: वो तो ठीक है, अब पूरे देश में खलबली मच जाएगी। चप्पे चप्पे पर क्रांतिकारियों को खोजने के लिए जाल बिछाया जाएगा। इसलिए वसंत, बेहतर यही होगा कि मैं देहरादून निकल जाऊं, हाँ? तुम लाहौर निकल जाओ, साथियों की पूरी जानकारी दे दे रहे।
1: जी जाओ, जी जाओ, ठीक है।
2: भले ही रासुदा की योजना विफल रही, पर इस बम कांड से अंग्रेज सरकार चिंता में पड़ गई। पूरे देश में तहलका मच गया।
3: देखा, क्रांतिकारियों के हौसले कितने बुलंद हैं। सरकार बौखला गई है। बम के टुकड़ों को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली, बंगाल और लाहौर के बम एक ही तरह के थे।
4: पुलिस किस नतीजे पर पहुंची?
3: पुलिस का यह मानना है कि क्रांतिकारियों का कोई एक ऐसा गिरोह है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में समान रूप से सक्रिय है।
4: इधर लिबर्टी नाम का एक अखबार धूम मचा रहा है, उसके बारे में क्या जानते हो?
3: वो अखबार नहीं, पूरा आग का गोला है। आग का गोला, आग उगलता है, उसे पढ़कर लोग अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे हैं।
4: अच्छा, कौन निकालता है ये अखबार, आप जानते हैं उसे?
3: ना जाने कितने क्रांतिकारी हैं, इनमें से कौन निकालता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना तय है कि अखबार पूरे देश में मिलता है।
4: हाँ, शायद इसलिए पुलिस का ध्यान अब बम कांड से हटकर इस अखबार पर केंद्रित हो गया है। कई शहरों में इस संबंध में छापे मारे गए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: सचमुच में इस विद्रोही साहित्य में जो भी लिख रहा है उसकी कलम में धार है। मैं कायल हो गया हूं उसकी लेखनी का।
2: लिबर्टी अखबार के माध्यम से पूरे देश में आग फैलाकर रासुदा देहरादून से अपने गृह नगर चंद्रनगर में आ गए। उधर विद्रोही साहित्य और क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश पुलिस ने रासुदा के अनेक साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये रासुदा के लिए खतरे की घंटी थी। उनके नाम का वारंट निकल गया, इसलिए वे भूमिगत हो गए।
0: भूमिगत रहकर मैंने बगावत की पूरी योजना तैयार कर ली है। ये बिल्कुल 1857 जैसा ही होगा। अच्छा होगा कि बनारस जाकर योजना को और मजबूत बनाया जाए। अरे पुलिस का क्या है, उसका काम है मुझे खोजना, सो वो खोजती रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा।
5: वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जो बोले सो निहाल। साथियों, आज है 31 दिसंबर 1914। आज हम सब लोग बगावत की योजना बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। रासुदा ने बगावत की तारीख 21 फरवरी तय की है। इस बैठक में हमारे नए साथी विष्णु गणेश पिंगले के अलावा करतार सिंह सराबा, पंडित परमानंद, बलवंत सिंह, हरनाम सिंह, निधान सिंह, मूला सिंह जैसे महान क्रांतिकारी उपस्थित हैं। सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे। मैं सबसे पहले करतार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें।
6: मैं चाहता हूं कि इस बगावत का नेतृत्व रासुदा ही करें।
7: इसका नेतृत्व रासुदा ही करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, समय आने पर वे आप सबके बीच ही होंगे और अपनी राय
5: खुद तय कर देंगे। अब मूला सिंह जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
8: मैं तो कहता हूं जी कि सचिंदर साहब तो यहाँ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आप लोग रासुदा के पीछे ही क्यों पड़े हैं? वे बनारस में रहकर भी कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
5: अब परमानंद जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
9: हमें सचिंदर साहब से कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी रासुदा तो हमारे बीच आएंगे ही, हमें अपना काम करते हुए उनका इंतजार करना होगा।
7: रासुदा भी बनारस, पंजाब और कई सीमाओं पर बम के कारखाने लगाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए हमें अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ करना है।
2: आखिर वह घड़ी आ गई, बगावत की पूरी तैयारी हो गई। रासुदा ने यह ऐलान कर दिया कि जैसे ही म्यांमार की छावनी में विद्रोह भड़के, वैसे ही सभी छावनियों में एक साथ बगावत के इस युद्ध में कूद पड़ना है। कहां की पटरियां उखाड़नी है, कहां के टेलीग्राफ के तार कैसे काटे जाएं, पुलों को किस तरह से उखाड़ना है, यह सारे काम रासुदा ने बांट रखे थे। सभी को इंतजार था केवल 21 फरवरी का, किंतु अपनों के बीच से कोई न कोई गद्दार तो निकल ही आता है। इस बार गद्दार के रूप में सामने आया कृपाल सिंह, जिसने पुलिस को खबर दे दी बगावत की योजना विफल हो गई। उधर क्रांतिकारियों की धरपकड़ होने लगी, इधर रासुदा पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर होने लगे। सरकार ने उन पर इनाम घोषित कर दिया।

0: लाहौर से बनारस तो पहुंच गया, पर अब क्या दोस्त, पहले यहाँ के साथियों से मुलाकात कर सारी स्थिति की समीक्षा की जाए
1: जी।
0: उसके बाद जो तय होगा वही किया जाएगा।
1: दादा, हमारे साथियों की बैठक कब होनी है?
0: अरे भाई, जितनी जल्दी हो सके आप बैठक की व्यवस्था करें।
1: मैं सारे साथियों को इतला कर देता हूँ, वे सब शाम को उसी गुप्त स्थान पर जमा होंगे।
0: ठीक है, मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूँ।
1: जी जी।
0: साथियों, बगावत की विफलता के बाद हमें किसी नई योजना पर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है?
1: अच्छा तो यही होगा रासुदा कि अब आप विदेश चले जाएं और वहां के लोगों को संगठित करें ताकि हमें हथियार मिल सके।
0: इस बारे में हमें हमारे बंगाल के साथियों की राय अवश्य लेनी चाहिए। मैं बंगाल पहुंचकर आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दूंगा।
1: मेरा विश्वास है कि वे लोग आपको देश से बाहर जाने की सलाह देंगे।

0: कलकत्ता तो नहीं पर चंद्रनगर आ गया। अब सारी बातें यही तय हो जाए तो बेहतर होगा। यहां रहना है या सात समंदर पार?
1: ये तो आज की बैठक में तय हो ही जाएगा।
0: देख लेते हैं। तुम शाम को आ रहे हो ना?
1: हाँ बिल्कुल, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन आप संभल कर रहेंगे?
0: ये मेरा गृह नगर है, फिर भी यहाँ के रास्तों से गुजरने पर मुझे डर लगता है कब कौन सी गोली सीने को पार कर जाए। बैठक में क्या तय होता है ये देखना है।
2: साथियों, आज इस बैठक में हमें ये तय करना है कि रासुदा को भारत में ही रहना है या फिर विदेश जाना है।
3: बगावत की विफलता के बाद हमें फौज से कोई सहायता नहीं मिलने वाली, इसलिए हमें भारी मात्रा में हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी।
4: और ये हथियार हमें भारत से नहीं बल्कि विदेशी धरती से मिलेंगे।
2: इसीलिए मेरा सुझाव है कि रासुदा विदेशों में जाकर भारत के लिए सहायता प्राप्त करें।
0: आप लोगों का कहना सही है। दुनिया का कोई भी पराधीन देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना स्वतंत्र नहीं हुआ है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा।
3: सुनिए रासुदा, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कुछ ही दिनों में जापान जाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
5: अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर रासुदा ने धन की व्यवस्था की, फिर कलकत्ता पहुंचकर प्रियनाथ ठाकुर के नाम से जापान का टिकट खरीदा। 13 जून 1943 को रासुदा और सुभाष चंद्र बोस टोक्यो की इंपीरियल होटल में मिले। यह ऐतिहासिक भेंट थी, दोनों पूरे जोश के साथ मिले। यह भेंट 1 घंटे तक रही। इसके बाद 4 जुलाई 1943 का वह ऐतिहासिक दिन जब रासुदा ने सिंगापुर पहुंचकर कहते भवन के एक समारोह में आजाद हिंद आंदोलन की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए।
0: आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्या उपहार लाया हूं। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम उपहार में लाया हूं। आज किसी को भी नेताजी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं अपने पद से त्याग पत्र देकर नेताजी का नाम आजाद हिंद संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं। इसके अलावा मैं तो अंतिम समय तक देश की सेवा में लगा रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।
6: लगातार संघर्ष ने रासुदा को कमजोर कर दिया। नवंबर 1944 को नेताजी रासुदा को देखने पहुंचे थे। ये दो महान नेताओं का अंतिम मिलन था। इस बीच रासुदा की पत्नी तोशिको बोस और पुत्र माशोहोदे का निधन हो गया। करीब करीब टूट चुके रासुदा को जनवरी 1945 को टोक्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कार्यों को देखते हुए बीमारी की ही अवस्था में जापानी सम्राट ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया। 21 जनवरी को उनका देहांत हो गया। 25 मई 1886 को जो जीवन दीप जला था वो बुझ गया हमेशा हमेशा के लिए। रास बिहारी बोस को शत शत नमन, शत शत नमन।
7: तो समझे बेटा, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस।
1: सचमुच काका, बड़े महान क्रांतिकारी थे वे लोग। ऐसे भारत माँ के सपूतों को शत शत प्रणाम।
8: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो।

0: देशभक्ति को समर्पित पहला रेडियो स्टेशन।
1: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत पर केंद्रित कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन के बारे में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी का साहित्य को योगदान अविस्मरणीय है। सुमित्रा नंदन पंत जी ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतर था।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि पंत जी अंग्रेजी के रूमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रह करके प्रकृति से जुड़े हुए साहित्य लिखते थे।
1: जन्म के महज 6 घंटे के भीतर ही सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी मां को खो दिया। पंत जी लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत जी ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर भी रचनाएं लिखी।
2: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ का नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके सुमित्रा नंदन जी रचनाओं में समाज के अलग अलग पहलुओं के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था उनकी रचनाओं में।
1: आधी सदी से भी अधिक लंबे उनके रचनाकाल में आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग समाया हुआ है। चलिए हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में विस्तार से बताते हैं।
2: चलिए श्रोताओं, सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माता का देहावसान हो गया। पंत जी को उनकी दादी ने पाला था। पंत जी का बचपन में नाम था गोसाई दत्त और बाद में उन्होंने अपना नाम बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल में ही हुई। फिर वो वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही सन 1921 में असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए।
2: श्रोताओं, पंत जी का बचपन प्रकृति की गोद में बीता। स्लेटी छतों वाली पहाड़ी, घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों की चहचहट, सकरी पगडंडियां, बाज, बुराश और चीड़ के पेड़ों के बयार और नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी और उसके ऊपर हिमालय के ऊंचे शिखरों और दादी से सुनी कहानियां और शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने पंत जी को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। जन्म के 6-7 घंटे के अंदर ही चल बसी थी, इसलिए प्रकृति की गोद सुंदरता ही उनकी मां बन गई। श्रोताओं, प्रकृति की इसी ममतामयी छाओ में बालक पंत जी धीरे धीरे यहां के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज में उकेरने लगे। पिता गंगा दत्त उस समय कौसानी चाय बागान में मैनेजर थे। उनके भाई संस्कृत और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी और कुमाऊनी में कविताएं भी लिखा करते थे। और कभी कभी जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर आवाज में कविताएं सुनाया करते थे तो नन्हे से पंत जी दरवाजे की ओट में चुपचाप सुनते रहते और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने की कोशिश करते थे।
1: पंत जी की प्राइमरी तक की शिक्षा कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई। 11 साल की उम्र में उन्हें पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा के गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया गया। कौसानी के सौंदर्य और एकांतता के अभाव की पूर्ति अब नगरीय सुख वैभव से होने लगी। अल्मोड़ा की खास संस्कृति और वहां के समाज ने पंत जी को भीतर तक प्रभावित कर दिया था। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर पंत जी ने भी अपने लंबे और घुंघराले बाल रख लिए।
2: चलिए श्रोताओं, अब आपको परिचय कराते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के साहित्य से जुड़े हुए उनके प्रयासों से। अल्मोड़ा में कई साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती थीं, जिनमें पंत जी अक्सर भाग लेते रहते थे। स्वामी सत्यदेव जी के प्रयासों से नगर में शुद्ध साहित्य समिति नाम से एक पुस्तकालय चलता था और इस पुस्तकालय से पंत जी को उच्च कोटि के विद्वानों का साहित्य पढ़ने को मिलता था। कौसानी में साहित्य के प्रति पंत जी में जो लगाव पैदा हुआ, वह अल्मोड़ा के साहित्यिक वातावरण में भी अंकुरित होने लगा।
1: कविता का प्रयोग वो सगे संबंधियों को पत्र लिखने में करने लगे। शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले, वकीलों के धन लोलुप स्वभाव और तंबाकू का धुआं जैसी कुछ कविताएं लिखी। आठवीं कक्षा के दौरान उनका परिचय प्रसिद्ध नाटककार गोविंद वल्लभ पंत जी, श्यामचरण दत्त पंत जी, इलाचंद्र जोशी जी और हेमचंद्र जोशी जी से हो गया था।
2: और श्रोताओं, अल्मोड़ा से तब हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर और अल्मोड़ा अखबार नामक पत्र निकलता था, जिसमें वे कविताएं लिखते रहते थे। अल्मोड़ा में पंत जी के घर के ठीक ऊपर स्थित गिरजाघर की घंटियों की आवाज उन्हें साहित्यिक सम्मोहित करती थी। अक्सर हर रविवार को वे इस पर एक कविता लिखते थे, गिरजे का घंटा शीर्षक से। नभ की उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर, कुछ कहता रहता बज बज कर।
1: दुबले पतले और सुंदर काया के कारण पंत जी को स्कूल के नाटकों में अधिकतर स्त्री पात्रों का अभिनय करने को मिलता। सन 1916 में जब वो जाड़ों की छुट्टियों में कौसानी गए तो उन्होंने हार शीर्षक से 200 पृष्ठों का एक खिलौना नाम से उपन्यास लिख डाला, जिसमें उनके किशोर मन की कल्पना के नायक नायिकाओं और अन्य पात्रों की मौजूदगी थी। कवि पंत जी का किशोर जीवन कौसानी और अल्मोड़ा में ही बीता था। इन दोनों जगहों का वर्णन भी उनकी कविताओं में मिलता है।
2: श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि सुमित्रा नंदन पंत जी केवल साहित्य लिखने में ही रुचि रखते थे, उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान था। 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, पर देश के स्वतंत्रता संग्राम की गंभीरता के प्रति उनका ध्यान 1930 के नमक सत्याग्रह के समय और अधिक केंद्रित हो गया। और श्रोताओं, इन्हीं दिनों संयोगवश उन्हें कला कंकर में ग्राम जीवन के अधिक निकट आने का अवसर मिला और इस ग्राम जीवन की पृष्ठभूमि में जो संवेदन उनके हृदय में अंकित होने लगे तो उन्हें शब्द देने का प्रयत्न उन्होंने युगवाणी जो 1938 में प्रकाशित हुई थी और ग्राम्या जो 1940 में प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने व्यक्त किया। यहां से उनका काव्य और युग का जीवन संघर्ष नई चेतना का दर्पण बन जाता है। स्वर्ण किरण और उसके बाद की रचनाओं में पंत जी ने किसी आध्यात्मिक या दार्शनिक सत्य की वाणी ना देकर के व्यापक मानवीय संस्कृति तत्वों को अभिव्यक्ति दी, जिसमें अन्न प्राण मन आत्मा मानव जीवन के सभी स्वरों की चेतना को संयोजित करने की कोशिश की गई।
1: आइए श्रोताओं, अब सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के बारे में हम बात करते हैं। पंत जी हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकृति के एकमात्र माने जाने वाले सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी बचपन से ही काव्य प्रतिभा के धनी थे और 16 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता रची गिरजे का घंटा। तब से वे निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। कवि या कलाकार कहां से प्रेरणा ग्रहण करता है, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी ने कहा था, संभवतः प्रेरणा के स्रोत भीतर न होकर अधिकतर बाहर ही रहते हैं।
2: श्रोताओं, अपनी काव्य यात्रा में पंत जी हमेशा सौंदर्य को खोजते नजर आते हैं। शब्द, शिल्प, भाव और भाषा के द्वारा कवि पंत जी प्रकृति और प्रेम को एक साथ जोड़ करके खूबसूरत काव्यों की रचना करते हैं। उनकी रचनाओं में छायावाद और रहस्यवाद का समावेश भी है।
1: उच्छ्वास से लेकर गुंजन तक की कविता का संपूर्ण भावपट कवि की सौंदर्य चेतना का काल है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित किया था। ऐसा लगता है जैसे माँ की ममता की कमी उनके जीवन में प्रकृति ने ही पूरी की। उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा के पर्वतीय अंचल की गोद में वो पले बड़े। पंत जी खुद ये मानते हैं कि उस मनोरम वातावरण का उनके व्यक्तित्व पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था।
2: पंत जी को जन्म के तुरंत बाद ही अपनी माँ को खोना पड़ा। नियति ने ही निज कुटिल कर से सुखद गोद मेरे लाड़ की थी छीन ली। बाल्य ही में हो गई थी लुप्त, हां मात्र आंचल की अभय छाया मुझे, मात्र आंचल की अभय छाया मुझे। श्रोताओं, मां की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती। प्रकृति मां की गोद का उन्हें सहारा मिला तो मानो उनके लाड़ से अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लेना चाहते थे वो। मातृहीन मन में एकांकी सजल बाल्य था स्थिति से अवगत, स्नेहांचल से रहित आत्मस्थित धात्री पोषित नम्र भाव रत।
1: हालांकि पंत जी ने गद्य की भी कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई, लेकिन मुख्य रूप से वे कविता के प्रति ही समर्पित रहे। सन 1918 से 1920 तक की उनकी अधिकांश रचनाएं वीणा में छपी। अपनी आरंभिक रचनाओं वीणा और ग्रंथी से पंत जी ने काव्य प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा जरूर, पर एक छायावादी कवि के रूप में इनको प्रतिष्ठा पल्लव से ही मिली। पल्लव की अधिकांश रचनाएं उन्होंने कॉलेज के जीवन में लिखी। प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यक्ति पल्लव में देखी जाती है।
2: बिल्कुल, श्रोताओं, प्रकृति के माध्यम से मानव के उन्नत भविष्य की कामना करते हुए पंत जी लिखते हैं। धरती का आंगन इठलाता, शस्य श्याम भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का आंचल वैभवशाली, इस आंचल से चीर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, अंतरंग मानव का नाता।
1: गुंजन, विशेषकर युगांत में आकर पंत जी की काव्य यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। गुंजन, काल की रचनाओं में जीवन विकास के सत्य पर पंत जी का विश्वास पक्का हो जाता है। सुंदर से नित सुंदरतर, सुंदरतर से सुंदरतम, सुंदर जीवन का क्रम रे, सुंदर सुंदर जग जीवन, सुंदर सुंदर जग जीवन।
2: श्रोताओं, पंत जी की काव्य यात्रा का दूसरा चरण युगांत, युगवाणी और ग्राम्या को माना जा सकता है। नवीन जीवन और युग परिवर्तन की धारणा को सामाजिक रूप देने की कोशिश युगांत में सामने आई है। युगांत की अधिकांश कविताएं कवि की तीखी भाषा चेतना के बदलाव का संकेत देती हैं।
1: द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, इसमें जहां ओजपूर्ण आवेश है वहीं गा कोकिल में नवीन जीवन पल्लवों से सौंदर्य मंडित करने का भी आग्रह है। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, व्यक्ति राष्ट्र गत राग द्वेष रण, झरे मरे विस्मृत में तत्क्षण, गा कोकिल गा मत कर चिंतन।
2: श्रोताओं, ग्राम्या प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव के अंतर्गत लिखी हुई रचना है। इसमें मार्क्सवादी, श्रमिक मजदूर किसान जनता के प्रति पंत जी ने भावभीनी सहानुभूति प्रकट की है। जगती के जनपथ कानन में तुम गाओ विहंग अनादि गान, चीर शून्य शिशिर पीड़ित जग में निज अमर स्वरों से भरो प्राण, निज अमर स्वरों से भरो प्राण, निज अमर स्वरों से भरो प्राण।
1: श्रोताओ, सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य यात्रा के तीसरे चरण की रचनाओं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपत, अतिमा, अंतरा में महर्षि अरविंद से प्रभावित होकर आध्यात्मिक समन्वयवाद की ओर बढ़ते हुए दिखते हैं। सामाजिक जीवन से कहीं महत अंतर मन, वृहत विश्व इतिहास, चेतना गीता किंतु चिरंतन।
2: चलिए श्रोताओं, अब पंत जी की काव्य का चौथा चरण कला और बूढ़ा पर बात करते हैं। पंत जी की काव्य यात्रा का चौथा चरण कला और बूढ़ा जान से लेकर के लोकायतन तक की है। इसमें उनकी चेतना, मानवतावाद, खास करके विश्व मानवता से जुड़ी हुई है। इन रचनाओं में लोक मंगल के लिए पंत जी व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य के महत्व को बताते हैं।
1: हमें विश्व संस्कृति रे भू पर करनी आज प्रतिष्ठित, मनुष्यत्व के नव द्रव्यों से मानस उर कर निर्मित, मानस उर कर निर्मित। तो श्रोताओं, ये थे पंत जी की काव्य यात्रा के चार चरण। पंत जी संघर्षों के एक लंबे दौर से गुजरे, जिसके दौरान स्वयं को काव्य और साहित्य की साधना में लगाने के लिए उन्होंने अपनी आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया। बहुत पहले ही उन्होंने ये समझ लिया था कि उनके जीवन का लक्ष्य और कार्य यदि कोई है तो वो काव्य रचना ही है। सन 1955 से 1962 तक वो आकाशवाणी से जुड़े रहे और चीफ प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किया, और इसके बाद साहित्य सलाहकार के रूप में वो कार्यरत रहे।
2: श्रोताओं, छायावाद को मुख्यतः प्रेरणा का काव्य मानने वाले इस कोमल प्राण कवि ने हार नामक उपन्यास के लेखन से अपनी रचना यात्रा आरंभ की थी, जो मुक्ताब तक जारी है। कवि रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा ये प्रथम कोटि के आलोचक, विचारक और गद्यकार भी थे। अपनी काव्य यात्रा में पंत जी सदा सौंदर्य को खोजते नजर आते हैं। शब्द, शिल्प, भाव और भाषा के द्वारा पंत जी ने प्रकृति की सुंदरता को बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किया है। उनकी रचनाओं में छायावाद, रहस्यवाद दोनों का मेल मिलता है, और साथ ही साथ शैली, कीट्स, टेनिसन जैसे अंग्रेज कवियों का प्रभाव भी उनमें मिलता है।
1: पंत जी के भाव पक्ष का एक प्रमुख तत्व उनका मनोहारी प्रकृति चित्रण है। प्रकृति के प्रति उनका सहज आकर्षण उनकी रचनाओं के बहुत बड़े भाग को प्रभावित किए हुए है। परंतु सौंदर्य और उल्लास के कवि पंत जी को जीवन का निराशामय पक्ष भी सहना पड़ा, और इसकी प्रतिक्रिया परिवर्तन नामक रचना में मिलती है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण।
2: श्रोता, पंत जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टि को भी सम्मानित स्थान प्राप्त है। वह मानवीय प्रतिष्ठा और मानव जाति के भावी विकास में दृढ़ विश्वास रखते हैं। सुंदर है विहग सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम, वह चाहते हैं कि देश जाति वर्गों में विभाजित, मनुष्य की केवल एक ही पहचान हो, मानव मानव मानव।
1: श्रोताओं, सुमित्रा नंदन पंत जी को सन 1961 में पद्म भूषण और सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और चिदंबरा के लिए पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2: श्रोताओं, पंत जी की मुख्य रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं उनकी जो कविता संग्रह है, वीणा 1927 में, ग्रंथि 1919 में आई, उच्चवास 1920 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, लोकायन, सत्यकाम, मुक्तियज्ञ, तारापथ, मानसी, रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, अतिमा, वाणी, रश्मि बंद, समाधिता, किरण वीना, गीत हंस, गंधविथी, पतझड़, अवगुंठित, ज्योत्सना, और मेघनाथ वध। और श्रोताओं, उनके उपन्यास हैं हार, जो 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लिख डाला था, और निबंध संग्रह में आधुनिक कवि और रेडियो रूपक ज्योत्सना।
1: कौसानी के चाय बागान के व्यवस्थापक के परिवार में जन्मे महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तराखंड राज्य के कौसानी में महाकवि की जन्मस्थली को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर उनके नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बनाया गया है, जिसकी देखरेख एक स्थानीय व्यक्ति करता है। इस स्थल के प्रवेश द्वार से लगे भवन की छत पर महाकवि जी की मूर्ति स्थापित है।
2: श्रोताओं, वर्ष 1990 में स्थापित इस मूर्ति का अनावरण वायुव्रत साहित्यकार पंडित नित्यानंद मिश्रा द्वारा उनके जन्म दिवस 20 मई को किया गया था। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का पैतृक गांव यहां से कुछ ही दूरी पर है। संग्रहालय में महाकवि द्वारा उपयोग की गई दैनिक वस्तुएं, शॉल, दीपक, पुस्तकों की अलमारी और महाकवि को समर्पित कुछ सम्मान पत्र, पुस्तकें और हस्तलिपि सुरक्षित हैं।
1: आकर्षक और कोमल व्यक्तित्व के धनी कविवर सुमित्रानंदन पंत जी जिस तरह से अपने जीवन काल में सभी के लिए प्रिय थे, उसी प्रकार से आज भी वो आकर्षण का केंद्र हैं। प्रकृति का बदलता हुआ रूप सदा ही पंत जी में नित नवीन कौतूहल पैदा करता रहा। उन्होंने सब कुछ प्रकृति में और सब में प्रकृति के दर्शन किए। आइए अब अंत में गंगा की कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं। अब आधा जल निश्चल पीला, आधा जल चंचल और नीला, गीले तन पर मृदु संध्या तप, सीमत रेशम पट सा ढीला, ऐसे सोने के सांझ प्रात, ऐसे चांदी के दिवस रात, ले जाती बहा कहां गंगा, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात।
2: तो श्रोताओं, ये था महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी के ऊपर हमारा विशेष कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जुड़े रहिए 90.8 MHz पर और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए आप सुनते हैं विवेकानंद जी के आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: दार्जिलिंग और अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने पर स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इधर मुर्शिदाबाद के अकाल पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए अखंडानंद जी की अथक कोशिश का समाचार पाकर स्वामी जी ने बड़े हर्ष पूर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानंद व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद जी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामी जी अल्मोड़ा से प्रोत्साहन देकर पत्र लिखने लगे, यहाँ तक कि वे खुद वहाँ जाने के लिए अधीर उठे, परंतु चिकित्सक गण तथा उनके शिष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके।
1: इसी समय एक घटना घटी। मुर्शिदाबाद में राहत कार्य के लिए धन की कमी हो गई। कलकत्ते की महाबोधि सोसाइटी ने उस कार्य के लिए किंचित धन 150 रुपए दिया, पर बाद में उन लोगों ने दावा किया कि ये कार्य सोसाइटी के नाम पर परिचालित हो। इस विषय में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद हुआ और स्वामी जी को इसकी सूचना दी गई। तब इसके समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिख भेजा,
2: हुजूर लोगों के नाम की ज्वाला में क्या गरीब जन सूख कर मरते रहेंगे। सारा नाम महाबोधि लेना चाहती है तो लेने दो, गरीबों का उपकार होने दो। कार्य भली भांति चल रहा है, उत्तम बात है।
0: इसे आखिरकार महाबोधि के नाम पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी रामकृष्णानंद तथा दक्षिण भारत के कुछ भक्तों ने पर्याप्त धन एकत्र करके भेज दिया। अन्य स्थानों से भी पैसे आ गए, अतः रामकृष्ण मिशन के नाम से ही कार्य परिचालित हुआ।
1: कलकत्ता रामकृष्ण मिशन का कार्य भली भांति चल रहा था। स्वामी रामकृष्णानंद जी भी मद्रास में प्रचार कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर रहे थे। स्वामी अभेदानंद जी और शारदानंद जी का इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य भली भांति चल रहा था। ये सब समाचार पाकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारंभ करने के लिए व्यग्र हो उठे।
0: क्रमशः उनका अल्मोड़ा से विदा होने का दिन निकट आ पहुंचा। उनकी विदाई का समय आसन्न जानकर स्थानीय नागरिकों ने उनका व्याख्यान सुनने का आग्रह किया। इधर अल्मोड़ा में रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इंग्लिश क्लब में उन्हें व्याख्यान देने का अनुरोध किया, परंतु छोटे से क्लब भवन में 100 से भी अधिक श्रोताओं के लिए स्थान बना पाना असंभव जानकर ऐसा ठीक हुआ कि सामान्य जनता के लिए स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगण में एक हिंदी तथा दो अंग्रेजी में भाषण हो और क्लब में एक अलग व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो।
1: हिंदी का व्याख्यान सुनने के लिए नगर के अनेक गणमान्य और सुशिक्षित लोग उपस्थित हुए थे। स्वामी जी को हिंदी में भाषण देने का अभ्यास नहीं था और ऐसी शंका भी उठी थी कि सामान्यतः वे जिन गंभीर विषयों पर आवेगपूर्ण पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान दिया करते थे, हिंदी भाषा के माध्यम से भी क्या ऐसा करना संभव हो सकेगा। परंतु स्वामी जी ने मंथर गति से व्याख्यान देना आरंभ किया और शीघ्र ही विषय के गुरुत्व के आकर्षण से भाषा के अक्षमता के ऊपर उठ गए और अपनी सुललित ओजस्विनी शैली में सहज ही बोलते गए।
0: ये व्याख्यान 27 जुलाई को हुआ और विषय था वैदिक उपदेश, तात्विक और व्यवहारिक। जिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि स्वामी जी शायद इस नवीन परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगे, उन्होंने भी उनका ये प्रांजल तथा धारा प्रवाह भाषण सुनकर ये स्वीकार किया कि शक्तिमान पुरुष असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के मन में संदेह था कि हिंदी भाषा गंभीर विषयों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं है, उनका संदेह भी दूर हुआ। इतना ही नहीं, किसी किसी ने तो ऐसा भी कहा था, उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा में भी ऐसी शक्ति है जिनके आधार पर इस भाषा की और उन्नति करके उसे ओजपूर्ण व्याख्यान देने के उपयुक्त बनाया जा सकता है।
1: 28 जुलाई को इंग्लिश क्लब में होने वाले व्याख्यान में वहाँ के समस्त अंग्रेज उपस्थित थे। गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल पुली ने सभापति का आसन अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हैमिल्टन, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर क्रेसी, उनकी पत्नी, कर्नल हैरिसन की पत्नी श्री और श्रीमती हिर्शा, श्री और श्रीमती लार्किन, श्री और श्रीमती मैकफर्सन, मिस्टर स्प्राई, लाला बद्री शाह, चिरंजी लाल शाह, ज्वाला दत्त जोशी तथा स्वामी जी के अन्य अनेक मित्र एवं अल्मोड़ा के प्रमुख नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे।
0: इस व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न जनजातियों में अपने अपने कबीले के देवता की उपासना का प्रचलन हुआ, उन देवताओं की पूजा से आरंभ कर वे लोग कैसे वेदों की उपासना तक जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप और शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर वे आत्म तत्व पर विचार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पाश्चात्य प्रणाली किस प्रकार ब्रह्म जगत से जीवन के समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढती है, जबकि प्राच्य के लोग ब्रह्म जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न पाकर अंतर जगत में उनकी खोज करते हैं।
1: उन्होंने कहा कि हम ही यानी भारत ही इस अंतर जगत की खोज प्रणाली की आविष्कारक है। यही इस जाति की विशेष संपत्ति है और एकमात्र इसी प्रणाली की सहायता से धर्म और आध्यात्मिकता का हमने आविष्कार कर उसे समग्र जगत को सौंप दिया है। और भी अग्रसर होकर स्वामी जी आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध और स्वरूपतः दोनों का एकत्व समझाने लगे। कुमारी हेनरिएटा मूलर उक्त सभा में उपस्थित थीं। उन्होंने बताया था,
3: तब थोड़ी देर के लिए ऐसा बोध हुआ मानो भाषण करता उनकी वाणी श्रोता खान एवं उनमें व्याप भाव राशि सब मिलकर एक हो गए हों, मानो मैं तुम वह यह आदि का भेद लुप्त हो गया था। जो विभिन्न लोग वहां एकत्र हुए थे मानो उन कुछ क्षणों के दौरान आचार्य देव के शरीर से निकलने वाली आत्मा ज्योति के प्रभाव में डूबकर मंत्र मुक्त बैठे रहे। उस समय क्षण भर के लिए मानो समस्त भेद भद्धि तथा व्यक्तिगत वैशिष्ट्य लुप्त हो गया, नाम रूप लुप्त हो गया, एकमात्र चेतना सत्य का ही अस्तित्व रह गया जिसमें वक्ता वाक्य श्रोता मिलकर एक हो गए।
0: तीसरा व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ जिसमें लगभग 400 शिक्षित लोग उपस्थित थे और सभी लोग स्वामी जी के भाषण पर मुग्ध हो गए। दार्जिलिंग तथा अल्मोड़ा में वहां के जलवायु के स्वाभाविक गुण, मित्रों की देखभाल और विश्राम के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। संभव है और भी विश्राम करने से उसका कुछ स्थायी फल होता, परंतु जिन स्वामी जी ने लोक कल्याण को अपना प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य बना लिया था उनके लिए लंबे समय तक चुप बैठना संभव न था। अल्मोड़ा से नीचे उतरने के काफी काल पूर्व ही उन्होंने 14 जून के पत्र में स्वामी अखंडानंद को लिखा था,
2: मैं शीघ्र ही पहाड़ से समतल पर उतर रहा हूँ। मैं वीर हूँ, रण क्षेत्र में ही मरूंगा। यहाँ पर्दा नशीन औरत के समान बैठे रहना क्या मुझे शोभा देता है?
1: वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं था। हमने देखा है कि इस काल में भी वे नव प्रतिष्ठित केंद्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते थे। इन दिनों कौन कौन से कार्य चल रहे थे इसका आभास देते हुए उन्होंने 23 जुलाई को मिस नोबल भगिनी निवेदिता को सूचित किया था,
2: कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय अकाल निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। कई केंद्र स्थापित हो गए हैं और अकाल सेवा प्रचार तथा सामान्य शिक्षा का काम चल रहा है। कार्य यद्यपि अभी तक छोटे स्वरूप में ही चल रहा है, तथापि जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है उन्हें आवश्यकतानुसार काम में लगाया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्य क्षेत्र हैं। एक जन को कोलंबो भी भेजा गया है।
0: उसी पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था,
2: कुछ दिनों बाद ही मैं नीचे मैदानों की ओर जा रहा हूँ और वहां से इसी पर्वत के पश्चिमी खंड की ओर जाऊंगा। जब मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंडक पड़ने लगेगी तब मैं देश भर में व्याख्यान देते हुए दौरा करूंगा, देखूंगा कि कितना काम किया जा सकता है।
0: स्वयं प्रचार कार्य में व्यस्त रहकर भी वे चाहते थे कि साथ में संगठन का कार्य भी चलता रहे। इसीलिए 30 जुलाई को अल्मोड़ा से उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को लिखा था कि वे अनाथ बालकों की सेवा में लग जाएं। इसी पत्र में उन्होंने ये भी सूचित किया था कि आगामी सोमवार 2 अगस्त को वे अल्मोड़ा से चल पड़ेंगे।
2: यहाँ पर साहबों के बीच मैंने अंग्रेजी में एक भाषण तथा स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में मेरा ये प्रथम व्याख्यान था, परंतु सबको बड़ा अच्छा लगा। आगामी शनिवार 31 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए एक और भाषण अंग्रेजी में होगा। यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है। भविष्य में कितना कार्य होता है ये देखना है। सभा का उद्देश्य है विद्या तथा धर्म की शिक्षा देना। सोमवार को बरेली के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद सहारनपुर, फिर अंबाला, वहां से संभवतः कैप्टन सेवियर के साथ मसूरी जाऊंगा। तदुपरांत थोड़ी ठंड पड़ते ही वापस लौटकर राजपूताना आदि स्थानों को जाना है।
1: देवलधारा और अल्मोड़ा से विदा लेने के पूर्व और भी दो एक घटनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी द्वारा स्वयं कथित एक प्रेत अथवा दैवी घटना का विवरण देते हैं। इसका स्थान काल ज्ञात न होने पर भी ये अनुमान है कि ये घटना देवलधारा के ही निकट कहीं घटित हुई है। घटना यूं है, स्वामी जी एक बार हिमालय में भ्रमण करते हुए रात बिताने को एक गांव में ठहरे हुए थे। संध्या के बाद खूब ढोल बजने की आवाज सुनकर गृह स्वामी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव के किसी आदमी पर देवता चढ़ा है।
0: कौतूहलवश वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लाल करने के बाद उसे उस व्यक्ति के अंगों से लगा रहे हैं तथा उसके बालों से भी छुआ रहे हैं, परंतु उसका कोई अंग या बाल जलता न था और न ही चेहरे से किसी पीड़ा का भाव व्यक्त होता था। उसी समय गांव का मुखिया स्वामी जी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए। सबके अनुरोध पर स्वामी जी को उस प्रेताविष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ा। जाते ही उनके मन में उस कुल्हाड़ी की जांच करने की इच्छा हुई। कुल्हाड़ी उस समय तक काली हो चुकी थी, तो भी छूते ही उनका हाथ झुलस गया और असहाय पीड़ा होने लगी। इस पर उनकी तर्क युक्ति सब लुप्त हो गई। उस पीड़ा के साथ ही उन्होंने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखकर थोड़ी देर जाप किया।
1: आश्चर्य की बात है कि इसके 10-12 मिनट के भीतर ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गया। परंतु स्वामी जी स्वयं इस घटना की मीमांसा नहीं कर सके। वे अपने गृह स्वामी के साथ वापस लौटे और रात के 12 बजे बिस्तर पर लेट गए। परंतु हाथ की जलन और इस अद्भुत घटना की कोई व्याख्या न सोच पाने के कारण उन्हें उस रात नींद नहीं आई।
0: अल्मोड़ा की एक अन्य प्रमुख घटना थी सुप्रसिद्ध देशभक्त नेता श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त के साथ उनकी भेंट। काफी काल पूर्व एक बार श्री रामकृष्ण के आदेश पर अश्विनी बाबू श्री रामचंद्र दत्त के घर पर ठाकुर के समक्ष ही नरेंद्र नाथ से बातें की थी, परंतु उस दिन नरेंद्र के सिर में दर्द होने के कारण ज्यादा बातचीत न हो सकी थी। इस पर अश्विनी बाबू ने कहा था, रहने दीजिए, फिर किसी दिन बात होगी। श्री ठाकुर की इच्छा थी कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जुड़े और वो पूरी हुई 12 वर्ष बाद 1897 ईस्वी के मई या जून अल्मोड़ा में। अश्विनी बाबू ने लिखा है,
4: श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होनी थी, इसलिए 12 साल बाद वो पूरी हुई।

0: उनकी खोज में बाहर निकल पड़े। वे मकान के पास पहुंचकर भी समझ नहीं सके कि स्वामी जी ठीक किस मकान में रहते हैं, और लोगों से पूछने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में बंगाली साधु के बारे में पूछने पर एक राहगीर ने बताया, तो आप घुड़सवार साधु के बारे में पूछ रहे हैं, वो देखिए वे घोड़े पर चले आ रहे हैं, उधर के मकान में रहते हैं। अश्विनी बाबू ने दूर से ही देखा कि गैरिकधारी सन्यासी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अंग्रेज द्वार खोलकर बाहर आए और घोड़े की नकेल पकड़कर भीतर चले गए। इसके बाद स्वामी जी घोड़े की पीठ पर से उतरे।
1: थोड़ी देर बाद अश्विनी बाबू ने वहां पहुंचकर एक युवा साधु से पूछा,
2: नरेंद्र दत्त है क्या, उनसे मिलना है।
3: नहीं, यहाँ नरेंद्रनाथ नाम का कोई नहीं रहता।
4: हाँ हाँ आइए, मैं यहाँ हूँ।
2: नमस्कार, आपको शायद याद नहीं, श्री राम कृष्ण देव के आदेश पर मैं आपसे कलकत्ते में मिलने गया था, पर बात नहीं हो पाई थी आपसे।
4: आओ, हाँ आओ, पहले गले तो मिलो। मुझे सब याद है, उस दिन मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाया था।
2: स्वामी जी, इतनी सालों पुरानी बात।
4: ये क्या, आपके लिए मैं स्वामी जी कब से हो गया। मैं तो अब भी वही नरेन हूँ, ठाकुर मुझे जिस नाम से पुकारते थे वही मेरे लिए परम संपदा है, आप भी मुझे उसी नाम से पुकारिए।
0: उस मुलाकात के बाद दोनों में कई विषयों पर बातचीत हुई, धर्म, वेदांत, राजनीति, समाज, सभी विषयों पर दोनों ने चर्चा की।
2: आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके लाखों लोगों के प्राणों में आध्यात्मिक चेतना जगाई है, क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत की मुक्ति कैसे होगी।
4: आपने ठाकुर से जो कुछ सुना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार सर्वस्व है, और सभी प्रकार के सुधारों को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें धर्म के माध्यम से ही लाना होगा। इसके विपरीत कुछ करने का प्रयास मानो गंगा को गोमुख की दिशा में पुनः धक्का देकर एक नवीन मार्ग से प्रवाहित करने के समान अव्यवहारिक होगा।
2: परंतु दूसरे राजनैतिक दल जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी आस्था नहीं है।
4: नहीं, मेरी आस्था नहीं है, पर हाँ बिल्कुल नहीं से थोड़ा अच्छा है। फिर सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए उसे हर तरफ से धक्के देना अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक आम जनता के लिए क्या किया है। आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि मात्र दो चार प्रस्ताव पास कर देने से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी। नहीं, मेरी इसमें आस्था नहीं है। पहले जनसाधारण को जगाना होगा, उन्हें पेट भर भोजन मिले तो वे स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे। यदि राजनीतिक दल उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको मेरी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों में जो गुण हैं उन्हें भी हमें अपनाना होगा।
2: धर्म से आपका तात्पर्य क्या किसी मत विशेष से है।
4: ठाकुर ने क्या किसी सांप्रदायिक मतवाद का प्रचार किया था, बल्कि उन्होंने वेदांत को ही सर्वांगीण धर्म बताया है, इसीलिए मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। परंतु मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वो चाहे उपनिषद का हो या गीता का अथवा भगवत का, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है, तथा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है।
2: अच्छा बताइए, मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा।
4: सुना है कि आप शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, वही सच्चा कार्य है। आपके भीतर एक महान शक्ति कार्य कर रही है, और जो ज्ञान दान हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा कि जन साधारण में मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा का ही प्रसार हो, उसके बाद चाहिए चरित्र निर्माण। वज्र के समान दृढ़ बना डालिए, बंगाली युवकों की अस्थियों से ही वो वज्र तैयार होगा जो भारतीय दास्तां की बेड़ियों को चूर कर डालेगा। क्या आप मुझे कुछ योग्य लड़के दे सकेंगे, तभी तो मैं पृथ्वी को अच्छी तरह हिलाकर जा सकूंगा।
0: उन्हें वज्र के समान युवा शक्ति की तलाश थी, तभी तो वे बोले,
4: और जहां कहीं भी राधा कृष्ण के कीर्तन सुनने को मिले वहां दाएं बाएं अच्छा चाबुक चलाइए। पूरा राष्ट्र सड़कर ध्वंस हुआ जा रहा है, जिनमें जरा सा भी आत्मसंयम नहीं, ऐसे लोग इन सब गानों में मतवाले हो रहे हैं। थोड़ी सी भी अपवित्रता रहते इन सब में निहित उच्च आदर्शों की धारणा नहीं की जा सकती। ये क्या बच्चों का खेल है। हम लोग काफी काल से नाचते कूदते रहे हैं, अब इसे थोड़ा विराम देने में हर्ज नहीं। इसी बीच देश थोड़ा शक्तिशाली बन जाए और फिर सर्वहारा तथा उसी तरह के लोगों के पास जाकर कहिए, तुम ही लोग तो राष्ट्र के प्राण हो, तुम्हारे भीतर ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है जो दुनिया को उलट सकती है, उठो, बंधन को तोड़ फेंको और सारा संसार तुम्हें देखकर विस्मित रह जाएगा। उनके बीच जाकर स्कूल खोलिए और उनके गले में जनेऊ डाल दीजिए।
5: नरेन, आपके जलपान का समय बीत रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये सच है कि जब मद्रास के ब्राह्मणों ने वेद प्रचार का अनाधिकारी बताया था, तब आपने कहा, तो हे मद्रास के ब्राह्मणों, आप लोग भी अधम हैं।
4: हाँ,
5: आपके समान एक धर्म प्रचारक तथा संयमी व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाना क्या उचित था?
4: ऐसा कौन कहता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने उचित किया था। उन लोगों की अभद्रता देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए ऐसी बातें निकल पड़ी। उसके बाद मैं भला कर ही कह सकता था, परंतु अपने पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं।
5: नरेन, एक बार गले लग जाओ भाई, आज आपका मान मेरी दृष्टि में सर्वोच्च हो गया। आज मैं समझ गया कि क्यों आप विश्व विजय हुए हैं और क्यों ठाकुर आपको इतना स्नेह करते थे।
0: अल्मोड़ा से चलकर स्वामी जी भीमताल आए, वहां एक दो दिन रुककर वे 9 अगस्त को बरेली पहुंचे। वहां वे श्री प्रियनाथ बाबू के बंगले पर रुके थे। वहां वे अधिकतर युवकों और छात्र समुदाय के साथ संपर्क स्थापन करते रहते थे।
1: शरीर अस्वस्थ रहने के कारण स्वामी जी को भय था कि वे इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, अतः उन्हें अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की जल्दी हो रही थी।
0: बरेली का कार्य समाप्त करने के बाद 12 अगस्त को रात 11 बजे के ट्रेन से वे अंबाला गए। वहां उनके एक सप्ताह निवास के दौरान श्री तथा श्रीमती सेवियर शिमला से आकर उनसे मिले। यहां पर उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहने के कारण सभी लोग खुश थे और स्वामी जी भी नगर के संभ्रांत लोगों के साथ आनंद पूर्वक विविध विषयों पर चर्चा किया करते थे। आगंतुकों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्म, आर्य समाजी आदि विविध समुदायों के लोग होते और बातचीत भी अध्यात्म तत्व, सामाजिक समस्या, प्राच्य एवं पाश्चात्य की सांस्कृतिक तुलना, स्वदेश की सच्ची उन्नति के उपाय आदि विभिन्न विषयों पर होती थी।
1: आर्य समाजी लोगों के साथ चर्चा के दौरान शास्त्रों के विषय में उनके समक्ष अनेक कूट तर्क उपस्थित किए जाते और स्वामी जी उनके युक्ति युक्त उत्तर देकर उन लोगों को शांत कर देते। ऐसी बैठकों और चर्चाओं में उन्हें स्वयं भी इतना उत्साह मिलता कि 17 अगस्त को दोपहर में भोजन के बाद पेट में दर्द होने के बावजूद संध्या के बाद उन्होंने एक छोटी सी सभा में उपस्थित होकर वहां 1.5 घंटे तक हृदयग्राही भाषण दिए थे। तदुपरांत रात को वे निराहार ही रहे। 16 अगस्त को लाहौर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने एक फोनोग्राफ लाकर स्वामी जी से उसमें व्याख्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने वैसा ही किया।
0: इस व्यस्तता के बीच भी 19 अगस्त को सुबह वे हिंदू मुसलमान सौहार्द के प्रतीक हिंदू मोमेडन स्कूल का परिदर्शन करने गए थे। फिर भोजन उपरांत उन्होंने श्यामाचरण मुखोपाध्याय आदि सज्जनों तथा संध्या के बाद आर्य समाजी वकील द्वारकानाथ के साथ वार्तालाप किया। कुल मिलाकर उनके अंबाला के दिन बड़े ही आनंदमय तथा व्यस्तता से परिपूर्ण थे। वहीं से अंतिम दिन 19 को उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था,
4: इस समय मैं धर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरंजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू तथा अच्युत अमृतसर में रहेंगे।
1: श्रीमती ओलीबुल की भारत आने की इच्छा को जानकर स्वामी जी ने उसी दिन उन्हें भी एक पत्र लिखा। जैसा कि कुमारी मैकलाउड के सम्मुख उन्होंने भारतीय जीवन का वास्तविक रेखांकन करते हुए उन्हें सावधान कर दिया था, तथापि आगमन के लिए सादर आमंत्रण भी भेजा था। यहाँ भी उन्होंने वही करते हुए लिखा,
4: सोच लीजिएगा कि आप लोग मानो अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों में जाने के लिए निकली हैं। उसके बाद यदि देव योग से कुछ उत्कृष्ट मिल जाए तो उसे आशा से अधिक उपलब्धि समझिएगा।
0: 20 अगस्त को सुबह उन्होंने सेवियर दंपत्ति के साथ धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अमृतसर में 4-5 घंटे ठहरकर उन्होंने टोडरमल नामक एक बैरिस्टर के यहाँ विश्राम किया। धर्मशाला में वे सेवियर दंपत्ति के साथ मात्र 7-8 दिन रहे। बाद में वहां से लौटकर उन्होंने अमृतसर में 2 दिन बिताए और 31 अगस्त को मेल ट्रेन से रावलपिंडी की यात्रा की। अमृतसर में दो दिन निवास के दौरान उन्होंने सिखों के मंदिर देखे और मूल राज आदि प्रमुख आर्य समाजी नेताओं के साथ विविध विषयों पर चर्चा की। रावलपिंडी स्टेशन पर डॉक्टर भक्त राम के भाई बग्घी आदि लेकर उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रावलपिंडी में उनका रहना न हो सका। शारीरिक अस्वस्थता बढ़ जाने के कारण वे तत्काल ही सेवियर दंपत्ति के साथ तांगे में मरी के लिए रवाना हो गए। उनके अन्य संगी भी इक्के में सवार होकर यथा समय वहां पहुंचे और वे सभी लोग वकील हंसराज के मकान पर ठहरे। यहाँ के बंगाली निवासियों ने एक दिन उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार करके स्वामी जी उन लोगों के घर गए और भजन एवं उपदेश सुनाकर सबको कृतार्थ किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से। चंपकर मणि पिल्लई की पुण्यतिथि पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा 8 बजे से। बजकर 30 मिनट पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार योग संवाद। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे से।

नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में, इस पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेगा 9:30 से। परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे 10:25 से।

प्रीतिलता वाद्यदार पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद सुनिएगा 10:30 से। दिन में 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। इस विषय पर जानकारी देंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शैलेश मानकर और आपसे बातचीत करी है पूर्वा खली ने। और 11:30 पर सुनेगा युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए ट्यून कीजिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।